0: नहीं आना चाहिए वो अश्योरेंस के बाद, और इसके बाद ही वो तोड़ना चाहते हैं। ये हो गया है, ये एक चीज हो गई है, लेकिन हम दूसरा अश्योरेंस की वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सोनम ने आज ट्वीट भी किया है और उनको लेटर भी लिखा है कि उनको एश्योरेंस चाहिए कि बच्चों, क्योंकि अगर हम ये पूरा आंदोलन बच्चे और उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं तो फिर उनके ऊपर कोई भी आंच ना देना ये हमारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे पहले।
1: नहीं, हम तो उनका हालचाल पूछने गए, उनका वो उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से, हम वो मेदांता में पहुंचे तो एक तो वो आईसीयू में थे तो वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाए, हमारे सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है मुझे, ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे।
2: And moving on, Bollywood superstar Salman Khan has thrown his weight behind the students' protest over the paper leak controversy. In a lengthy social media post, Salman Khan praised students for what he called a peaceful and courageous and determined movement, demanding a better education system. Calling paper leaks a serious issue, he even urged that the protest should not be politicized and said that the credit solely belongs to the students. Salman Khan also expressed hope that the government would support reforms, adding that education should become the country's biggest trend and that India should aspire to become a global education hub.

या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
1: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
2: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
3: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
4: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
5: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
6: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
7: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
8: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
1: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
11: सबका राजा आर प्योर मसाला।
12: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
13: रियली
12: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, art that made it to the gram, and trends that kept us with the program.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस, मोदो एलीट।
2: आर प्योर शाही

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy.

0: नहीं, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है। आप देखिए किस प्रकार दो तीन दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए, सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें, चर्चा करें, अब हम सब भी अंदर जाके देखने वाले हैं।
1: Well, dramatic protest visuals coming from inside the Parliament complex. All of this is happening outside Makar Dwar. Remember, Makar Dwar is the gate that MPs use to enter the Parliament, and this is where a lot of protests also take place. All of this is happening inside the Parliament complex, and it's a clash of protests. It's a clash of agitations today. One being led by the NDA, where the NDA MPs, led by the BJP, are claiming that it's the Congress Party that's deliberately misleading youngsters of the country by stalling discussions, shifting goalposts. It does not want a discussion in the House because it just wants its political agenda to get furthered, while the Congress Party has come out very strongly attacking the government, saying that the government has been too late in engaging with protesters. It has ruined the future of students. It also says that the government has no vision for exam paper leaks. It's not fixed this problem for the last several years. So that's a big claim that the opposition party is making. And remember, at the crux of this is a deadlock, it's a logjam between the opposition MPs and the Treasury benches, because the BJP says that it will not take any political decision based on what political pressure the opposition tries to exert on it. It says that it's not going to make anyone resign, but it will take all corrective measures to ensure that the student community is not harmed, which is why the Prime Minister has also put out a tweet today saying that fast-track courts will be put in place to expedite matters of investigation related to exam paper leaks, while the Congress Party says that it's important for somebody in the cabinet, the education minister, to resign, to be sacked, so that there's a message of reassurance that's sent to the students of the country that the system has some sense of accountability. Now, there's more politics to this than actually policy, than actually the intent to, you know, get things right for students, which is what the protests are now leading to. The NDA protesting outside the Makar Dwar, and also the opposition led by the Congress Party, led by leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, doing the same thing. Clash of narratives here. Teshri joins us with more details on this. Teshri, the visuals are quite dramatic. The houses have been adjourned. It looks like the MPs feel that the solution is not going to come from inside the Parliament, and that's a sad part, right? Because while the protesters want a discussion in the Parliament,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: India.
1: You're watching Breaking Ground. I'm Vedika. This is going to be an action-packed 2 hours with all that's happening inside Parliament and outside. Cameras don't lie, and this act of police excess has been caught on camera. The video is from the 20th of July, and that's the protest at Jantar Mantar that I'm talking about. Additional DCP, Northeast District, Sandeep Lamba is seen slapping a woman protester. There is no visible provocation, as you can see, in the moments captured on camera. The Delhi police have said their personnel were brutally thrashed that day, that antisocial elements were involved in the violence, and several protesters, remember, were detained or arrested. But what happens when the violence is perpetrated by someone in uniform? Sources tell NDTV the officer, additional DCP Lamba, has simply been asked not to report for duty at Jantar Mantar and stick to his regular area of posting. That's it, viewer. A senior police officer caught on camera striking a woman, and this is the action. This is the punishment. If protesters who resorted to violence must face the law, why should the standard be any different for the police? What's of course questionable at this point is if it was even the protesters who were armed and who had taken on the police at that point, or were they just antisocial elements who were trying to foment trouble? That answer remains unanswered, but the focus today is on the man on your screen. The uniform gives you authority. It does not put you above accountability, and that is something every person in uniform must remember. Because the law cannot be enforced on one side of that barricade and diluted on the other. We'll talk more about this in the show. A quick check on the headlines at this hour. NDA versus India bloc showdown escalates in Parliament over neat paper leak row. NDA MP stage protests against opposition. India bloc MPs stage counter protests. Massive sloganeering witnessed. Kargis says discussion in house without resignation of the Education Minister Dharmendra Pradhan. Prime Minister Modi's big move on paper leaks assures students on paper leak. PM vows to protect students' future, says paper leak mafia will not be spared. Leader of opposition, Lok Sabha Rahul Gandhi, hits back. Late night violence near Jantar Mantar, stones pelted at police. Several personnel were beaten up. Delhi ACP inspector injured in the attack.
2: पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है हमको आप पर्सनल लेवल भी बता सकते हैं लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है जिस तारीख को चाहता है जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है हमने आश्वासन दिया प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छा संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है और साथ में यह भी कहा है कि देश के युवाओं का देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो इसके लिए चर्चा होना जरूरी है हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है हम तैयार हैं लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है आप एक्सक्यूज देते हैं इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं प्रदर्शन भी किया मांग किया कि तुरंत
0: सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या छात्रा युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर पोस्टर बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज, आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय तंता जी।
3: महोदय, आपकी अनुमति से मैं संस्कृति कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों को सदन की समक्ष करता हूँ।
0: आइटम नंबर 3 महासचिव जी।
4: A message from Rajya Sabha regarding appointment of 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024.
0: Item number 4, Sri Bala Sariji.
5: I rise to present the Hindi and English versions of the 48, 49 and 50. And 51 reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 4.
0: Item number 5, Sri Biplab Kumar Dev.
6: Sir, I rise to present the third report Hindi or English version of the Committee on Absence member for the sitting of the House as listed against my name as serial number 5.
0: Item number 6, Sri B. Mehtab Ji.
7: Honorable Chair, I rise to present a copy of the report, Hindi and English version, on the bill, the Securities Market Code 2025 of the Standing Committee on Finance, as listed against my name in serial number 6 in today's list of business.
0: Item number 7, Srimati K. Kanemuji Ji.

0: सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए हैं, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका एजुकेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार है डिस्कशन के लिए, इस्तीफा जरूर होना चाहिए।
1: नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है, स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है पीटा है उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इसकी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनकी, इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है, तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं, ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए।
0: आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें चिंता है, हम फास्ट ट्रैक रूट बनाएंगे, लेकिन डेढ़ महीने से प्रधानमंत्री सवाल है धर्मेंद्र प्रधान को, इस्तीफा लो, बच्चों से माफी मांगो और दिल्ली पुलिस के दरिंदों को सजा दो जिन्होंने बच्चों को मारा है।
2: मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया पूरे मामले पर, पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक अदालत की बात कही गठन करने की, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो मूल मांगे हैं छात्रों की उसको तो एड्रेस ही नहीं किया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो, माफी की बात हो, क्या आप जवाब दें?
3: छात्र सल्यूशन चाहते हैं और छात्रों की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनको न्याय दिलाने के लिए जो दोषी है उनको दंडित किया जाए इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मंजूरी दी है, संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। एक बहुत बड़ा कदम छात्रों के हित में, छात्रों की मांगों को देखते हुए, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए यह कदम उठाया गया, इसके लिए छात्रों को मैं बधाई देता हूं, युवाओं को बधाई देता हूं, वहीं पर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। जहां तक विपक्ष की आपने बात कही, आज युवाओं के आंदोलन पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है, वो अपनी राजनीतिक फायदे उठाना चाह रहा है। युवा क्या चाहते हैं? एक क्लीन ट्रांसपेरेंट ये जो एग्जाम प्रोसेस है, तो उसी के लिए एग्जाम्स निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, ये कदम सरकार ने उठाए और नीट का एग्जाम बहुत जल्दी वापस करवाया और सफलता।
2: सर, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन इन पार्लियामेंट, PM हैज ऑल्सो मेड अ स्टेटमेंट ऑन दिस इशू, व्हाई ऑपोजिशन इज नॉट रेडी फॉर
4: डिबेट? इज एब्सोल्युटली हॉलो, टू लिटिल टू लेट। द डिमांड ऑफ द यूथ एंड द डिमांड ऑफ स्टूडेंट इज वेरी क्लियर एंड वी आर एज अ मेन ऑपोजिशन पार्टी आर्टिकुलेटिंग द सेम डिमांड। वी वॉन्ट अ रेजिग्नेशन फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। We want government to apologize to the student and the youth of this country on how they handled and brutal force, police force was applied on these students in Delhi, we all saw. And we want those responsible behind the application of this brutal police force to be punished. It's very clear. Students are also demanding that and we are also demanding that. And he has not said a single word on these demands. And, you know, it is high time that government wakes up and understands the sentiment of the nation now.
2: But how do you react on whatever he has addressed, that government is constituting fast track courts and culprits will not be
4: this is fast track?
5: आप देखिए किस प्रकार दो तीन दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन

0: चिंतन होना चाहिए। सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है।
1: हमारी सरकार एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
2: As the political battle over paper leaks escalates, Prime Minister Modi has announced a major crackdown, promising fast-track courts and stringent punishment for those behind exam paper leaks, calling the future of students the government's top priority. The PM said those trying to destroy the aspirations of India's youth will not be spared and directed authorities to take all necessary steps to protect students' interests. The announcement has now triggered a sharp political face-off, with Rahul Gandhi accusing Prime Minister Modi of harming the future of India's youth, demanding the sacking of Education Minister Dharmendra Pradhan, an apology to students, and action against those accused of assaulting protesters.
3: Modi ji, Bharatiya Rajneet gawah hai ki jab kabhi kisi mantri ke vibhag mein ye naubat aa jaye कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में।
4: If Prime Minister genuinely feels nothing is more important than future of the youth, Dharmendra Pradhan is not more important than future of the youth, Prime Minister should immediately, without wasting 1 minute, should ask Dharmendra Pradhan to step down from his cabinet. That is the first and foremost thing he should do. If he doesn't do that, if he is making all the protection and giving him the opportunity to continue in his cabinet, what he says will not have the value of even a waste paper. Modi will be defined by the students, by the youth, as mockery of democratic Indians.
5: ये पहला लीक था जो अभी हुआ है। इनके कार्यकाल में कितने लीक हुए हैं उसका भी तो व्हाइट पेपर होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने जेल गए, किन की सजाएं हुई, हुआ कोई? Nothing has been done so far.
6: पहले इस्तीफा, उसके बाद चर्चा। हम नीट को लेकर के चर्चा मांग रहे हैं सदन में, पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, ये साफ है। मंत्री प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर क्या इतनी खास बात है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे?
7: मंत्री ने ये कहा है कि युवाओं का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है, नीट चोरी मामले में जो भी दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, कैसे देखती हैं?
8: देखिए, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ दोषी का डेफिनेशन क्या है? छात्र तो नीचे के दो चार लोगों को दोषी सिर्फ नहीं मान रही है, वो तो ऊपर के लोगों को दोषी मान रही है। कई लोगों के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। अब रेजिग्नेशन का पहले एक ही

0: व्यक्ति का मांगा जा रहा था, अब उसका दायरा बड़ा हो गया है। हम लोग लगातार जा रहे हैं वहाँ पर जंतर मंतर पे, मैं कल भी गई, परसों भी गई, तो मैंने देखा कि अब वो लोग और भी कई लोगों के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो ये बताइए कि दोषी के दायरे में कौन कौन आएगा?
1: सदन में भी गतिरोध बना हुआ है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, क्या उससे लगता है कि कुछ डेडलॉक खत्म होगा, चर्चा पर आप लोग हिस्सा लेंगे?
0: देखिए अभी अपोजिशन की एक मीटिंग होगी खड़गे जी के ऑफिस में, और उसमें वो लोग तय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि छात्रों की मांग क्या है, हम लोग छात्रों के साथ हैं।
2: दिस व्हाट इज दिस फॉल्स क्लेम्स नोबडी बिलीव इन हिज वर्ड्स नाउडेज दिस क्रेडिबिलिटी ऑफ हिज वर्ड्स हैज बीन ऑलरेडी डिसअपीयर्ड नोबडी इज गोइंग टू नो एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू टेल रिमूव द धर्मेंद्र प्रधान फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्ट्री देन ही हैज टू टॉक टू द स्टूडेंट्स
3: Sir, government is ready for discussion in parliament. PM has also made a statement on this issue. Why opposition is not ready for debate?
4: That statement is absolutely hollow. Too little, too late. The demand of the youth and the demand of students is very clear. And we are, as a main opposition party, articulating the same demand. We want a resignation from Education Minister, Dharmendra Pradhan. We want government to apologize to the student and the youth of this country on how they handled and brutal force, police force was applied on these students in Delhi, we all saw. And we want those responsible behind the application of this brutal police force to be punished. It's very clear. Students are also demanding that and we are also demanding that. And he has not said a single word on these demands. And, it is high time that government wakes up. And understands the sentiment of the nation now.
3: But how do you react on whatever he has addressed that government is constituting fast track courts and culprits will not be?
4: This is fast track.
5: Slipping to short break on the other side, it's One Last Dance as an actor for Chief Minister of Tamil Nadu Vijay, and the frenzy has been massive. More on that in moments from now after the release of his movie. Jannayagan.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा क्या स्वाद है।
10: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
0: इस बार तो

0: resignation from Education Minister Dharmendra Pradhan. We want government to apologize to the student and the youth of this country on how they handled and brutal force, police force was applied on these students in Delhi, we all saw. And we want those responsible behind the application of this brutal police force to be punished. It's very clear. Students are also demanding that, and we are also demanding that.
1: If Prime Minister genuinely feels nothing is more important than future of the youth, Dharmendra Pradhan is not more important than future of the youth, Prime Minister should immediately, without wasting 1 minute, should ask Dharmendra Pradhan to step down from his cabinet. That is the first and foremost thing he should do. If he doesn't do that, if he is making all the protection and giving him the opportunity to continue in his cabinet, what he says will not have the value of even a waste paper. Modi will be defined by the students, by the youth, as mockery of democratic Indians.
2: ये पहला लीक था जो अभी हुआ है. इनके कार्यकाल में कितने लीक हुए हैं उसका भी तो व्हाइट पेपर होना चाहिए. कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने जेल गए, किन की सजाएं हुई, हुआ कोई? Nothing has been done so far.
3: पहले इस्तीफा, उसके बाद चर्चा. हम नीट को लेकर के चर्चा मांग रहे हैं सदन में, पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा. अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, ये साफ है. प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर क्या इतनी खास बात है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे?
4: मंत्री ने ये कहा है कि युवाओं का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है. नीट चोरी मामले में जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा. कैसे देखती हैं?
5: देखिए, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ दोषी का डेफिनेशन क्या है? छात्र तो नीचे के दो चार लोगों को दोषी सिर्फ नहीं मान रही है, वो तो ऊपर के लोगों को दोषी मान रही है. कई लोगों के रेजिग्नेशन की मांग कर रही है. अब रेजिग्नेशन का पहले एक ही व्यक्ति का मांगा जा रहा था, अब उसका दायरा बड़ा हो गया है. हम लोग लगातार जा रहे हैं वहाँ पर जंतर मंतर पे. मैं कल भी गई, अब परसों भी गई, तो मैंने देखा कि अब वो लोग और भी कई लोगों के इस्तीफे की मांग कर रही है. तो ये बताइए कि दोषी के दायरे में कौन कौन आएगा?
4: सदन में भी गतिरोध बना हुआ है. प्रधानमंत्री ने जिस तरह के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, क्या उससे लगता है कि कुछ डेडलॉक खत्म होगा? आप चर्चा पर आप लोग हिस्सा लेंगे?
5: देखिए, अभी अपोजिशन की एक मीटिंग होगी खड़गे जी के ऑफिस में, और उसमें वो लोग तय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए. लेकिन आप जानते हैं कि छात्रों की मांग क्या है, हम लोग छात्रों के साथ हैं.
6: अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है, जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सजा मिल सके. लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं. पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं. आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है. पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए.
7: In news just coming in, according to sources, the CBI will soon be filing a charge sheet against the 13 accused arrested in the NEET paper leak case. All 13 accused arrested by the CBI in connection with the paper leak case are currently in jail. The CBI has gathered solid evidence, according to sources, against all of them, and the charge sheet will soon be filed in court. My colleague Akhil joins me live. Akhil, what are the details you can share with us? This news coming in after the post by the Prime Minister.
8: Well, that's right. In a fresh development, what we have got to learn that the CBI is soon going to file a charge sheet against all the 13 accused who were arrested earlier by the CBI. Because initially, what we have been witnessing that if you see those arrests, some initial arrests were made by the state police, and then later on the case was transferred to the central agency, which is the CBI in this case, the nodal agency, which is investigating this very case. And after that, what we have seen that all the middlemen who were part of this entire nexus have been arrested. So there are 13 accused who were arrested by the CBI in connection with the paper leak case, who are still in jail right now. And the information that we are getting right now is that CBI is very soon going to file a charge sheet

0: मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
1: तो सोनम का ये, सोनम ने ये लेटर लिखी है जितेंद्र जी को और नाटा जी को कि कोई भी बिना उनके उनको ये अश्योरेंस चाहिए कि बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा, उन पे कोई FIR नहीं दर्ज किया जाएगा। कि जो प्रोटेस्टर्स थे जो भारत पूरे भारत से आए थे जंतर मंतर में कनॉट प्लेस में हर जगह, उन पर कोई नहीं आंच आनी चाहिए, कोई FIR, कोई लीगल, कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं आना चाहिए, वो अश्योरेंस के बाद और इसके बाद ही वो तोड़ना चाहते हैं। ये हो गया है, ये एक चीज हो गई है, लेकिन हम दूसरा अश्योरेंस की वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सोनम ने आज ट्वीट भी किया है और उनको लेटर भी लिखा है कि उनको एश्योरेंस चाहिए कि बच्चों, क्योंकि अगर हम ये पूरा आंदोलन बच्चे और उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं तो फिर उनके ऊपर कोई भी आंच ना देना ये हमारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे पहले।
2: नहीं, हम तो उनका हालचाल पूछने गए, उनका वो उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से, हम वो मेदांता में पहुंचे तो एक तो वो ICU में थे तो वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाए, हमारे सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे।
3: आप देखिए किस प्रकार दो तीन दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए, सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है।
4: Let's talk about Sonam Wangchuk. He appears to say that he will end his anshan, his hunger strike, the moment his revised set of guidelines are met. One of them, of course, is compensation. And what is the other one that he mentioned?
5: Dharmendra Pradhan.
4: That's right. So those are the two key points over there. Do you believe that that you will also call off all your protests the moment he does?
5: No, absolutely not. I mean, we all respect Sonam ji and he has gone through a lot in the past many days. I've lost count of the number of days he's been on hunger strike. I think it's his 26th day. And we want, sir, to break it because, you know, it's getting worse. It's getting worse day by day. So we are very concerned about his health. And we have told, sir, that, you know, he should break his hunger strike and we will take this movement forward. We will continue with our protest here. You know, people from all over the country have joined us.
4: And no, but that's important what you're saying. You are saying that you will continue this even if Sonam Wangchuk ends his hunger strike, right?
5: Absolutely.
4: To what end?
5: Till we get Dharmendra Pradhan's resignation and till our demands are met. Because, you know, the people here have come from all over the country. They have huge hopes. They look up to this movement as their only hope out of, you know, misery and hopelessness that they have been feeling all these years. And we can't let them down.
6: News just coming in. Union Minister Jitendra Singh has arrived at the Prime Minister's office to meet with the Home Minister, Amit Shah. Further strategy discussed in the NEET paper leak case is what is on the agenda. This comes at a time when both Lok Sabha and Rajya Sabha have been adjourned repeatedly and this time till 2 o'clock. Tejshree joining me live. Tejshree, those discussions on, this time you have Jitendra Singh meeting with Amit Shah.
7: Absolutely, Vedika, a very important meeting underway at our Prime Minister's office there, and we see Jitendra Singh, MS, PMO also the part of the meeting, and this meeting is all about the NEET paper leak. Apart from that, we also saw that an important meeting took place yesterday as well at the residence of Union Home Minister Amit Shah, where Jitendra Singh, Nitin Nabin and other leaders were also the part of this meeting. But this meeting is also very important because nobody, no one right now is, you know, in a position to

0: step back. Nobody's ready to listen right now. The opposition is continuing its demand. The protesters are sitting on protest. Sonam Wangchuk continues his hunger strike. And here as well, the NDA MPs are demanding that, you know, the discussions should be held as soon as possible in the parliament so that the parliament could run smooth. So there is no breakthrough as of now from any of the side as far as these all developments are concerned. And hence this important meeting at Prime Minister's office is underway, where Jitendra Singh is briefing about so as to what's happening as far as the protest is concerned and how to strategize the next movement as well, what the government should be doing, because government has made its stance very much clear that, you know, as far as the demand of resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan is concerned, it's politically motivated. However, they are completely ready to overhaul the process of entire NEET examination. Apart from that, the Prime Minister has also assured that accountability will be fixed and a fast track will be set up. Similar kind of statements we have been seeing coming in from Union Home Minister Amit Shah as well, Defence Minister Rajnath Singh and Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju as well.
1: Deepshree, thanks for joining me live there. Moving on now, NDTV's Managing Editor Shiv Arur spoke to NEET students on this huge controversy. Listen into this excerpt.
2: Harsh is also a NEET aspirant. Harsh, do you have a different view from Uma, the way you're looking at the protests that are playing out? Because you are also a student. You've also taken the NEET exam. You've also seen paper leaks and suffered because of them. Is your view different from Uma, Harsh?
3: Sir, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि problems क्या है, but problem के solution पे कोई नहीं जा रहा है। ये protest start हुआ था कि 24 बच्चों ने लगभग suicide कर लिया। Suicide बच्चे करते क्यों हैं? इस topic पे किसी ने बात किया क्या? क्या किसी ने बात किया? Suicide कर क्यों रहे बच्चे? और suicide क्यों कैसे ना हो? इस पे किसी ने बात किया क्या? शायद किसी ने बात नहीं की, ना तो protest करने वाले ने, ना news ने, ना ही पक्ष ने, ना ही विपक्ष ने। सुसाइड करते क्यों, इसका रीज़न पता है क्या? रीज़न ये है कि जो भी बच्चा नीट की तैयारी करता है वो लगभग टॉपर बच्चा होता है क्लास का। मोस्ट ऑफ टॉपर बच्चे तैयारी करते हैं और जब उनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो लगभग बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टॉपर बच्चे हैं वो बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं। मैं 4 बार से बाउंड्री पे रह रहा हूँ, बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं। अब बाउंड्री पे पहुंचने के बाद हम ऑप्शन खगाल रहे हैं, हम 4-5 दिन से सिर्फ यही सर्च कर रहे हैं कि हम कोई और एग्जाम दे सकते हैं क्या, और हमें अभी तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं मिला जिसमें सिलेबस सेम 12th का पूछा जाता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता हो, सिर्फ और सिर्फ नीट और सीयूईटी है।
2: हर्ष, ये प्रोटेस्ट तो ये मुद्दे रेज कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू गेट एग्जाम रिफॉर्म्स, दे आर आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी।
3: सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से क्या होगा? अगर अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना रिजिग्नेशन दे देते उससे होगा क्या? क्या अगली बार पेपर देने वाले बच्चों को सोसाइटी करेंगे? क्या अगली बार पेपर देने वाले बच्चों को उनको सीट मिल जाएंगी क्या? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं पता और राहुल गांधी को भी नहीं पता प्रॉब्लम क्या है। ये रियल बात है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या आ रही। प्रॉब्लम ये आती है, जो बच्चा नीट की तैयारी करता है वो अपना सब कुछ लगा देता है, अपनी सारी सेविंग्स लगा देता है, अपना पूरा दम लगा देता है, अपना पूरा काया पलट कर देता है। मेरा चेहरा देख रहे हो, मेरे बाल झड़ गए हैं, मेरी आंखों पर चश्मा चढ़ चुका है, सिर्फ नीट की तैयारी करते हुए ये सब हुआ है। अब जब तैयारी करने के बाद अब हम पेपर देके आते हैं और शायद उस दिन हमारा पेपर बिगड़ जाता है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम किसी और एग्जाम में भी बैठ सकें। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती हो। क्या कुछ ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम नहीं करने चाहिए जिनमें 12th पास क्राइटेरिया हो और वहाँ गवर्नमेंट एग्जाम में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पूछा जाए? वहाँ पूछा क्या जाता है? जनरल साइंस पूछी जाती है, जीएस पूछा जाता है जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम के काबिल नहीं हम आज, सिर्फ हम नीट ही दे सकते हैं अगले साल। अब अगर पेपर से एक दिन पहले हमारा मोमेंटम बिगड़ जाए तो हमारा पेपर खराब हो जाएगा। मेरा खराब हुआ है, इसी बार जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले मेरे यहाँ लाइट कट हुई और मैं रात के 12 बजे पावर हाउस में बैठा हूँ, रजिस्टर्ड है, मैंने कॉल करा है, मैंने बाकायदा पूरा एप्लीकेशन दिया कि लाइट भेजिए क्योंकि मुझे सुबह पेपर देने जाना और रात के 4 बजे लाइट आई है, 4 बजे लाइट आई है। अगर एक दिन पेपर खराब हो जाता है, क्या पेपर साल में 2 बार नहीं होना चाहिए? अगर पेपर जैसे जेई मेंस में 2 बार होता है, क्या नीट का पेपर 2 बार नहीं हो सकता है क्या? क्या नीट के पेपर को 2 बार नहीं करवाना चाहिए? अगर नीट का पेपर 2 बार हो जाए तो एक बच्चा अगर इस बार नहीं अच्छा कर पाया तो शायद अगली बार अच्छा कर जाएगा। तो प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक तो पेपर में ऐसे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम बनाए जाए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाए और पेपर साल में 2 बार हो। इसके अलावा भी बात करना सर, एक सेकंड।
2: आई कम बैक टू यू हुमा, द बोथ ऑफ यू आर एंग्री एंड अपसेट, ओके? आई हियर द एंगर एंड द एंग्विश इन बोथ योर वॉइसेस, बट बोथ ऑफ यू आर एंग्री फॉर सम सिमिलर रीजंस बट वेरी डिफरेंट रीजंस। व्हाइल यू सपोर्ट द प्रोटेस्ट कंप्लीटली हुमा, यू बिलीव दैट इट्स इंपॉर्टेंट दैट दिस प्रोटेस्ट टेक्स प्लेस, हर्ष सिंह इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, इससे कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा नहीं, इससे समाधान नहीं होगा।
3: समाधान होगा, बट अगर नीट के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो
2: ओके,
3: नीट के प्रोटेस्ट,
2: दैट इज व्हाई द बोथ ऑफ यू आर हियर टुनाइट।
3: नीट के प्रोटेस्ट ने सर नीट

0: नीट के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था लेकिन सुना नहीं गया था। मैंने खुद प्रोटेस्ट जाकर करा था, मैंने परमिशन मांगी थी, 10 दिन बाद परमिशन दी गई। और इन आतंकवादियों को परमिशन एक दिन में मिलती है, क्यों? इन आतंकवादियों को परमिशन आप रातों रात देते हैं, रात भर बैठ सकते वहां, और हमें 4 बजे लाठी मार के भगाया गया था। मुझे ध्यान है वो दिन 2024 में हम प्रोटेस्ट करने गए थे और मुझे लाठी मार के बाहर निकाल दिया जाता था 4 बजे। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है कोई तो कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। मैं शर्ट फाड़ के दिखा सकता हूं कि मैंने फटी बनियान पहनी हुई है, लेकिन मैं यहां आया हूं, मैं अपनी इज्जत बचाना जानता हूं सर। लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है सर। आप सुनिए, रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना अपोजिशन बात करती है, ना पक्ष बात करता है। मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, उनके बच्चों हमसे आधे आधे नंबर लाकर पास हो जा रहे हैं। 4 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? कौन सुन रहा है? रिजर्वेशन पे बात कब करी जाएगी ये बता।
1: हर्ष बैठो, ये
0: गरीबों को रिजर्वेशन दिया
1: जाए। सारे जो पॉइंट्स हैं,
0: रिजर्वेशन कहाँ कहाँ होता है सर? आप सुनिए, रिजर्वेशन आप समझ रहे सिर्फ कास्ट सिस्टम है, रिजर्वेशन स्टेट लेवल पर भी है। एक स्टेट का लेवल, यूपी का बच्चा जो है 560 नंबर पे कॉलेज पाएगा, वही एमपी का बच्चा 540 पे पाता है, वही छत्तीसगढ़ का बच्चा 530 पे पाता है। क्यों? मेरे मार्क्स पे हर बार एमपी में सिलेक्शन हुआ है, मेरे दोस्तों ने स्टेटर लगाया जनरल कैटेगरी से आके। आप कहां कहां पर रिजर्वेशन देंगे? कास्ट लेवल पर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, कास्ट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप कॉलेज लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप स्टेट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। ये एक ऑल इंडिया का एग्जाम है, क्या हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज मिलना चाहिए? लेकिन हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिल रहा है।
1: तो
0: इस बारे में कौन बात कर रहा है प्रोटेस्ट में? इस बारे में धर्मेंद्र प्रधान बात कर रहे हैं, इस बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। कोई बच्चा आज तक सामान्य परिवार का ही सुसाइड करता है, जितने बच्चे हैं उनमें से 90% बच्चे हमें मिलेंगे। नीट पेपर को लेकर सिर्फ सुसाइड सामान्य परिवार का बच्चा करता है, जिसके पीछे कोई बैकअप नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ उसमें लगा दिया है।
1: आपका कहना बेसिकली है कि इस प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल जो इश्यूज है
0: वो ही नहीं,
1: डिमांड नहीं हो रहे,
0: वो पता किसको है, वहां प्रोटेस्ट में कौन है?
1: ठीक है, ओके, सिट डाउन, लेट्स हियर
0: हु अमेरिका से आकर हमारे पास अमेरिका जाने का वीजा बनवाने का पैसा नहीं है।
2: On that note, we're stepping to a short break. I'll be back with more, this time on the big release down south, Janayagan, and the frenzy across the country. Yeah.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
3: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
4: Really?
3: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात.
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
5: अरे मेरे राजा.
7: सबका राजा आर प्योर मसाला.
8: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है. पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ.
9: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों.
10: कुछ तो बात है इस तेल में.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार है डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए।
1: दिस आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेसी? थिंक अबाउट इट। चिल्ड्रन आर प्रोटेस्टिंग, दे आर ऑल यंग। थिंक अबाउट इट। They've cut all the internet. What are they doing? They're not terrorists. Their parents will be worried. Their families will be worried. They can't contact anyone. They're putting tear gas on them. They're beating them. What kind of democracy is
2: this? युवा बच्चों को बुलाकर दो दो घंटे घर में बिठाते हैं, बात नहीं करते हैं, उनको रुसवा करते हैं। आप उनसे तो बात करना सीख लीजिए ना। आप क्या बोल रहे हैं? सब तो आपकी वजह से हो रहा है। सब आपकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है। अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? डिबेट डिबेट क्या डिबेट कराएंगे आप? आपको जो जो गलती आपसे हुई है उसका तो इकरार करिए। आप इकरार ही नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजोरिटी, हम सबको दबा देंगे। आप नहीं दबा पाएंगे। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको।
0: आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें चिंता है, हम फास्ट ट्रैक रूट बनाएंगे, लेकिन डेढ़ महीने से प्रधानमंत्री सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, बच्चों से माफी मांगो और दिल्ली पुलिस के दरिंदों को सजा दो जिन्होंने बच्चों को मारा है।
3: मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया पूरे मामले पर, पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक अदालत की बात कही गठन करने की, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो मूल मांगे हैं छात्रों की उसको तो एड्रेस ही नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो, माफी की बात हो, क्या आप जवाब दें?
4: छात्र सल्यूशन चाहते हैं और छात्रों की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनको न्याय दिलाने के लिए जो दोषी है उनको दंडित किया जाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की मंजूरी दी है, संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। एक बहुत बड़ा कदम छात्रों के हित में, छात्रों की मांगों को देखते हुए, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए यह कदम उठाया गया, इसके लिए छात्रों को मैं बधाई देता हूं, युवाओं को बधाई देता हूं, वहीं पर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। जहां तक विपक्ष की आपने बात कही, आज युवाओं के आंदोलन पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है, वो अपनी राजनीतिक फायदे उठाना चाह रहा है। युवा क्या चाहते हैं? एक क्लीन ट्रांसपेरेंट ये जो एग्जाम प्रोसेस है, तो उसी के लिए एग्जाम्स निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, ये कदम सरकार ने उठाए और नीट का एग्जाम बहुत जल्दी वापस करवाया और सफलता।
5: आप देखिए किस प्रकार दो तीन दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हो माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए, सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है।
6: हमारी सरकार एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोरा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
7: I don't think that you should trivialize the protest of the youth. This is a legitimate protest. They are protesting against the systematic examination paper leaks. The entire integrity of the examination system is called into question. And further, there is no reason to have a centralized admission process for colleges which are administered and staffed by state governments. So there are both legitimate people's issues, and the opposition, the Congress party, is only.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: unscrupulous practices by encouraging paper leaks and initiating paper leaks. And there are also fault lines within the system of the NTA and the agencies which run the examination. The paper leaks happening. This fast track court is only post fact. After an illegal act happens and they apprehend the perpetrators, they can take them to court. But this is not going to stop the leak itself.
1: किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं। वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है। और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वही देना चाहिए। तो उसके बजाय दूसरा और क्या है, मंगल मिलन, उसमें क्या तकरीर करते हो आप? उसमें ये तकरीर करते हो, जाओ युवाओं को उठाओ, समझाओ इसके बारे में। यानी इनडायरेक्टली आप इंस्टिगेट कर रहे हैं कि नौजवानों को कि अपने तुम भी काउंटर करो, यानी एजिटेशन को काउंटर करने के लिए उनके एमपीस को खुल के उन्होंने बोला।
2: पेपर लीक के दोषी थे जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था, आज उनको दंड देने के लिए, इस घोर अपराध के लिए दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करने की निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। इसका हम स्वागत भी करते हैं, युवाओं के हित में लिया है और जल्द से जल्द न्याय मिल पाए, दंड मिल पाए, उस दिशा में कदम है। मेरा केवल विपक्ष इतना कहना है, भागो मत, चर्चा में भाग लो, युवाओं के कंधों पर अपनी राजनीति ना करो, उनके आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेको, अगर हिम्मत है तो चर्चा में भाग लो।
3: दिस व्हाट इज दिस फॉल्स क्लेम्स, नोबडी बिलीव इन हिज वर्ड्स नाउडेज, नोबडी बिलीव इन हिज वर्ड, दिस क्रेडिबिलिटी ऑफ हिज वर्ड्स हैज बीन ऑलरेडी डिसअपीयर्ड, नोबडी इज वर्ड्स बिकॉज़ नो एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू टेल रिमूव द धर्मेंद्र प्रधान फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्ट्री, देन ही हैज टू टॉक टू द स्टूडेंट्स।
4: मोदी जी, भारतीय राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे प्यादों को सजा देने के लिए।
5: इट इज एब्सोल्युटली हॉलो, टू लिटिल टू लेट। द डिमांड ऑफ द यूथ एंड द डिमांड ऑफ स्टूडेंट इज वेरी क्लियर एंड वी आर एज अ मेन ऑपोजिशन पार्टी आर्टिकुलेटिंग द सेम डिमांड। वी वॉन्ट अ रेजिग्नेशन फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। वी वॉन्ट गवर्नमेंट टू अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट एंड द यूथ ऑफ दिस कंट्री ऑन हाउ दे हैंडल्ड एंड ब्रूटल फोर्स, पुलिस फोर्स वॉज applied on these students in Delhi, we all saw, and we want those responsible behind the application of this brutal police force to be punished. It's very clear, students are also demanding that and we are also demanding that.
6: If Prime Minister genuinely feels nothing is more important than future of the youth, Dharmendra Pradhan is not more important than future of the youth, Prime Minister should immediately, without wasting 1 minute, should ask Dharmendra Pradhan to step down of his, from his cabinet. That is the first and foremost thing he should do. If he doesn't do that, if he is making all the protection and giving him the opportunity to continue in his cabinet, what he says will not have the value of even a waste paper. MODI, Modi, will be defined by the students, by the youth, as mockery of democratic Indians.
7: ये पहला लीक था जो अभी हुआ है। इनके कार्यकाल में कितने लीक हुए हैं उसका भी तो व्हाइट पेपर होना चाहिए, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने सजाएं हुई, हुआ कोई? नथिंग हैज बीन डन सो फार।
8: अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सजा मिल सके। लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जो दोषी है ऐसे कारनामों के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके।
1: प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में, इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहे हैं? खुद से पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो।
2: हमने उम्मीद किया था कि नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे, पर उम्मीद था। कल ओपोजिशन पार्टीज के कई नेताओं से हमने बातचीत किया, कांग्रेस पार्टी से भी किया और सबने कहा कि एक रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते फिर से उन्होंने एक कंडीशन लगाना शुरू किया, फिर अलग अलग बहाना बनाना शुरू किया। फिर शाम को भी मैं उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के और भी साथियों से हमारा बातचीत करके एक हम रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे।
3: सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए हैं, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ उनका एजुकेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए, इस्तीफा जरूर होना चाहिए।
4: जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। अहंकार के साथ सरकार चला रहे हैं, डेमोक्रेसी में यही सबसे अच्छा है कि हम लोगों की बात सुने, लोगों की बात जाने, वो क्या चाहते हैं, कम से कम बातचीत तो करें वो और बातचीत से कोई रास्ता निकालें, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अगर अन्याय करती है, दबाव बनाती है, सरकार का दबाव चलने वाला नहीं है।
5: सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से, सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आर यूथ फ्रेंड्स, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं, प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज।
6: युवा बच्चों को बुलाकर दो दो घंटे घर में बिठाते हैं, बात नहीं करते हैं, उनको रुसवा करते हैं, आप उनसे तो बात करना सीख लीजिए ना, आप क्या बोल रहे हैं, सब तो आपकी वजह से हो रहा है, सब आपकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है, अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, डिबेट क्या डिबेट कराएंगे आप? आपको जो गलती आपसे हुई है उसका तो इकरार करिए, आप इकरार ही नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजोरिटी, हम सबको दबा देंगे, आप नहीं दबा पाएंगे, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको।
7: हमारी सरकार एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्द्र मसाला।
9: Front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
10: So many attacks.
9: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
10: It's incredible.
9: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
10: Welcome to Left, Right, and Center.
9: Hard facts.
10: War struck country.
9: Hard questions.
10: In the Ukraine.
9: 30 years of trust.
11: In the Kargil area.
10: North Ukraine.
11: In France. In Italy.
10: At Srinagar.
11: Vishnu Shom for NDTV.
9: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
3: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
4: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. How?
3: The show that sets the prime time agenda.
4: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
3: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
5: This is where the future shows up first. Conversations with the biggest names in tech and AI. Putting tech through its paces. No fancy jargon or spec sheets, just what matters. If it's shaping the future, you'll see it here first. The Tesla Model Y. This is Tech 360.
6: Welcome back. Meanwhile, heavy rains continue to batter several parts of western and northeastern India, triggering floods, waterlogging, traffic disruptions, and even rescue operations. From Gujarat and Maharashtra to Assam, rising water levels have disrupted normal life, with authorities on a high alert as more rainfall is forecast. Let's now take a look at some visuals coming in from the area. First up, these visuals on your screens right now are from Vapi city in Gujarat, where relentless rainfall has submerged the ground floors of several residential buildings. Residents are also seen wading through neck-deep water as flooding continues to affect daily life. In Gujarat's Valsad district, incessant rainfall has severely disrupted normal life. Waterlogging forced the closure of a national highway as well, causing long traffic jams. Several roads in Valsad city remain flooded, and authorities have advised people to avoid unnecessary traffic. Navsari district is witnessing flood-like conditions after 3 days of relentless rainfall. All major rivers are flowing above or near the danger mark, leading to water accumulation in low-lying areas. Authorities remain on a high alert as residents brace for further heavy rain. Heavy rains have pushed water levels close to danger levels in Gujarat's Vansada, raising fears of flooding in the region. Meanwhile, floodwaters have now entered several temples, with devotees seen performing aarti at one such temple in knee-deep water. In Gujarat's Vapi, series of cars have been submerged in water after continuous rainfall. From Gujarat, shifting our focus to Assam, where flood fury has hit the state. At least 41 people have died in the devastating floods as relentless rainfall continues to batter the state. Several districts remain inundated with overflowing rivers, flooding homes, roads, and even farmlands. Thousands of people have now been moved to relief camps, while rescue teams are working to evacuate those stranded in affected areas. Authorities have warned that the flood situation remains extremely critical, with more rain forecast over the coming days.
7: सिर्फ बाढ़ की बात करें तो परिस्थितियां भी कैसी बनी हुई है असम में?
8: देखिए परिस्थितियां बहुत ही दुखद है, इसलिए हमारे जो इलाका है, खास करके सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट यहाँ में बार ऐसे रेगुलर नहीं होता है। इस बार नागालैंड का मन डिस्ट्रिक्ट में क्लाउड ब्लास्ट हुए एंड अचानक पानी पूरा डिस्ट्रिक्ट का हर जगह में घुस गया। अभी भी कोई जगह में आर्मी एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहुंच भी नहीं पा रहा है। कोई सारे पेशेंट पानी का बीच में है, हजारों परिवार अभी भी पानी का बीच में है और इस बार कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और काल भी यहाँ से हमने डेड बॉडी बरामद किया है, तो इसीलिए इस बार का जो अनुमान है कितना लॉस हुआ है कितना डैमेज हुआ है कम से कम एक सप्ताह लगेगा। अभी भी कोई सारा जगह में हम लोग पानी का एक बोतल भी भेज नहीं पा रहा है, तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर है और काफ़ी चिंतनीय है। सरकार आर्मी एनडीआरएफ एसडीआरएफ जनप्रतिनिधि लोकल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सब काम कर रहा है। सार जिला बुरी तरह प्रभावित है, सराइदेव शिवसागर जोरहाट साथ में गोलाघाट।
7: और सर दूसरी बात है कि कुछ इलाकों में हम देख रहे हैं, मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ पे घूम रहा हूँ कि कुछ इलाकों में जब बाढ़ का पानी घट रहा है कुछ इलाकों में नए तौर से इनंडेशन हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है प्रशासन
8: के। ये पहाड़ों से क्लाउड बर्स्ट हुए, कभी कभी क्या होता है पत्थरों का बीच में पहाड़ों का बीच में पानी फंसते रहता है, वहाँ से निकालने का जब भी रास्ता मिलता है पानी तुरंत निकाल के आते हैं। तो इसीलिए पहला वेव का जो पानी है वही अंतिम नहीं है और आते रहता है, और ख़ास करके पहले तो ऊपर का इलाका में पानी रिसीड होगा, फिर वही पानी नीचे का इलाका में जाएगा और ब्रह्मपुत्र भी ऊपर में बह रहा है, तो इसीलिए पानी ब्रह्मपुत्र भी नहीं जा रहा है, तो नया नया एरिया पानी घुसते जा रहा है। तो जब तक ब्रह्मपुत्र का लेवल डाउन नहीं होगा पानी को निकालने का रास्ता नहीं मिलेगा। और काल यहाँ में एक ब्रिज भी हुआ है, एक कलवर्ट है बीच रोड और एम्ब्रेकमेंट का बीच, वो भी टूट गया है, तो उसका कारण भी दिसांग में जो घटना हुए काल उसका कारण भी कोई सारे गांव में पानी घुसा है।
7: और एक मुद्दा है कि आपके जो एमएलए हैं वो लोग भी ग्राउंड जीरो में जा रहे हैं, कुछ बातें ऐसे निकल के आई हैं कि नाजीरा या फिर दूसरे इलाके में बहुत लोग मिसिंग हैं, उसकी
8: मैं वही बोल रहा हूँ। काल भी हमें डेड बॉडी मिला हूँ और यहाँ में मिसिंग का संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए इस बार कैजुअलिटी डेथ टोल काफ़ी बड़ा नंबर होगा।

0: time post the incident, an announcement of the results, and young people are now finding the institutions where they have to go for their higher education. All this is happening.
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के. उन्होंने जैसे सोहे भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इम्पोर्टेंस और महत्व वो देते हैं युवाओं के हितों को, और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो. And this is a part of the series of continuous steps being taken by the government for the safeguard of the welfare of the interest of the students.
2: हमारा कंसर्न है हमारे बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में. तो इसीलिए हमने एक तो पहले तो ये किया, प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है, जो भी इसमें जिम्मेदार थे ऑफिसर्स, जो भी संबंधित लोग, ऑल द 14 हैव बीन अरेस्टेड. वो सब अभी दे आर बिहाइंड द बार. एंड इससे पहले जो कानून था उसके कानून में प्रोविजन बहुत वीक था. प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट इट अमेंडेड इन 2024 जून. कांग्रेस पार्टी जब पावर में है करप्शन, जब अपोजिशन में है तब डिसरप्शन. दिस इज दी कांग्रेस का नीति है.
3: पेपर लीक के दोषी थे जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था, आज उनको दंड देने के लिए, इस घोर अपराध के लिए दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करने की

0: उनके आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेको, अगर हिम्मत है तो चर्चा में भाग लो।
1: किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं। वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है। और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वही देना चाहिए। तो उसके बजाय दूसरा और क्या है, मंगल मिलन, उसमें क्या तकरीर करते हो आप? उसमें ये तकरीर करते हो, जाओ युवाओं को उठाओ, समझाओ इसके बारे में। यानी इनडायरेक्टली आप इंस्टिगेट कर रहे हैं कि नौजवानों को कि अपने तुम भी काउंटर करो, यानी एजिटेशन को काउंटर करने के लिए उनके एमपीस को खुल के उन्होंने बोला।
2: दिस व्हाट इज दिस फॉल्स क्लेम्स, नोबडी बिलीव इन हिज वर्ड्स नाउडेज, नोबडी बिलीव इन हिज वर्ड, दिस क्रेडिबिलिटी ऑफ हिज वर्ड्स हैज बीन ऑलरेडी डिसअपीयर्ड। Nobody is going to be. Because no action from the government. First of all, he has to tell, remove the Dharmendra Pradhan from Education Ministry. Then he has to talk to the students.
3: Modi ji, भारत की राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए।
4: See, merely announcing fast track courts is really not solving a systemic problem. There are systemic reasons why these leaks are happening regularly, because the commercial angle of these coaching centers, there is an incentive for them to show inflated results, and so they are willing to indulge in all kinds of unscrupulous practices by encouraging paper leaks and initiating paper leaks. And there are also fault lines within the system of the NTA and the agencies which run the examination. The paper leaks happening. This fast track court is only post fact. After an illegal act happens and they apprehend the perpetrators, they can take them to court.
5: ये सरकार समझ ही नहीं रही, सरकार completely cut off उन गरीबों से जो अपने बेटा बेटी के लिए नीट की तैयारी के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए खर्चा करती है। उनको आप एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं, स्पेशल कोर्ट क्या होता है, ये कौन सा जादू की छड़ी है? फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा उसमें? यूजीसी एनईटी का एग्जाम लीक हुआ, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी, हुआ ही नहीं। ये सब जो है ना आई वॉश है, आप जो जड़ है, जो तकलीफ है, उस पर आप तवज्जो नहीं ले रहे हैं।
6: ये पहला लीक था जो अभी हुआ है, इनके कार्यकाल में कितने लीक हुए हैं उसका भी तो व्हाइट पेपर होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने जेल गए, किनकी सजाएं हुई, हुआ कोई? नथिंग हैज बीन डन सो फार।
7: पहले इस्तीफा, उसके बाद चर्चा। हम नीट को लेकर के चर्चा मांग रहे हैं सदन में, पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, ये साफ है। प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर क्या इतनी खास बात है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे?
8: अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सजा मिल सके। लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए।
9: Well, we're getting you some breaking news right now. The Delhi police has given out a statement, sources telling us that anyone found involved in rioting will now face legal action. In addition, steps will be taken to cancel their passport.

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
3: From the newsroom. To the studio, to the thick of political action.
1: From watching NDTV 24/7, the hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
3: When stories have impact.
4: Padmasar Joshi, managing editor and prime-time anchor.
3: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
1: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
5: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
6: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
7: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
8: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
9: Be part of jury. And vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
10: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
11: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
12: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
3: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
13: This location from Tel Aviv
3: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
14: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
15: The Ayatollah Khamenei is gone.
16: There has been a missile attack right behind you.
17: And we need to rush into a shelter.
18: Heading there.
19: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
3: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
20: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान.
21: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद. तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई. आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें. vandebharatam.org पर रजिस्टर करें.
3: इंडिया इज एट अ 2030 टर्निंग पॉइंट. ईवीज, हाइब्रिड्स, biofuels or hydrogen, what fuel wins where? Join top auto CEOs, policy experts and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
22: Where do you need charging infrastructure? You need it on highways.
3: Catch the exclusive coverage only on NDTV. India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and bright.
23: Hello, good evening, and welcome to Nationwide at 6. I am Ankit Tyagi. It's once again been the day where a lot of developments are taking place. Governments offered to talk, pressure on the government inside the parliament, and the massive pressure of the young people here in the central Delhi area of Jantar Mantar. In fact, I was there and we had to come out because the internet has completely been snapped in that area. You can't find any signals for us to even do a live broadcast. You have to come out of that area. CP, there is no internet. Central Delhi district, there is no internet. But before I tell you more about that, there is breaking news coming in on the broadcast. There is an India block, opposition block meeting, barring, of course, the Aam Aadmi Party at Rahul Gandhi's residence. This meeting has been called to strategize and up the ante against the government today. Remember, I think after a very, very long time, we would have seen the opposition MPs versus the Treasury benches right inside the parliament. I'm now trying to make my way to Rahul Gandhi's residence as well. And Kanika is joining us from there, where the opposition parties have been invited for a meeting, a joint strategy. Kanika, Rahul Gandhi, for the last few days, 3-4 days, has been quite active as far as this entire meeting is concerned. I just want to understand from you what's on the agenda and, you know, how many, who all are, in fact, coming there.
0: Well, Ankit, absolutely right. If we talk about the whole scenario, we can talk about the NEET examination and paper leak. Now the Rahul Gandhi is frequently active, and also not Rahul Gandhi, even the India Alliance leaders are also active. And you can see behind me, this is the residence of Rahul Gandhi. All the Congress MP and also India Alliance MP have been reached Rahul Gandhi residence. And even before that, on paper leak issue, continuously, whether it's a roadside or in parliament, continuously India Alliance and Rahul Gandhi is attacking on Modi government, and also demanding the Education Minister Dharmendra Pradhan resignation. But right now I'm at Rahul Gandhi residence. You can see behind me in this picture, Congress several MP have been reached here, and also India Alliance Member of Parliament like Kalyan Banerjee, Mahua Moitra, other MPO have also reached here. And as per the sources, Ankit, Congress and India Alliance is planning a whole and wide protest from Rahul Gandhi residence to Rajghat, and for that they have called 3 buses. Even though Rahul Gandhi's residence inside, in you can see the visuals inside Rahul Gandhi residence, then these 3 buses also deploy. And as per the sources, India Alliance and also Rahul Gandhi is planning to hold a march or hold a protest from Rahul Gandhi residence to Rajghat. But on a paper leak, when we talk about the paper leak,
23: Kanika, and ये बहुत interesting होने वाला है, और ये interesting इसलिए होने वाला है कि अब से 2-3 दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरीके से राहुल गांधी अपने घर से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से निकले और प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाके बैठ गए थे. तब हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया, और अगर ये सुनहरी बाग का जो उनका घर है वहां से अगर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं उसको लेकर जरा वो भी दिखाइए कि किसने वहां पर एमपीज आए हैं और किस तरीके से वहां पर पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं.
0: देखिए, बिल्कुल अंकित, साफ तौर पे राहुल गांधी का ये आवास है जिसमें कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पहुंचे हुए हैं. इसके अलावा इंडिया ऑपोजिशन अलायंस के तमाम जो पार्लियामेंट है वो पहुंचे हुए हैं. लेकिन इसके अलावा तमाम, अगर आप रास्तों पर देखेंगे, यहाँ से एंट्रेंस होती है, वहां पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई है. उसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद हैं. यानी कि कहीं ना कहीं दोनों रास्तों को ब्लॉक जो है वो किया गया है. अगर आप एंट्रेंस पे स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको वहां पे दिल्ली पुलिस की गाड़ियां जो है वो नजर आएंगी. इसके अलावा जो है वहां पर लगातार बैरिकेटिंग भी की गई है. यानी कि राहुल गांधी का जो पहला गेट एंट्रेंस है वहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान है वो मौजूद है. और इसके अलावा जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं. इसके अलावा कॉन्टिन्यूसली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं. और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने ये प्लान किया है कि वो यहाँ से मार्च कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं राजघाट की तरफ. फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कांग्रेस सोर्सेज के मुताबिक कि एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी जो है वो की जा सकती है. और इससे पहले भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर जो है प्रदर्शन किया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो मौजूद थे। इसके अलावा अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले वो भी वहाँ पे पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पेपर लीक और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर कांग्रेस काफ़ी एक्टिव है और सड़कों पर नजर आ रही है। और उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भी लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं।
23: So, Kanika, stay on with me. Kanika was telling us how the Congress party is upping the ante as far as the protests are concerned, both inside the parliament and outside the parliament. But interestingly, the Congress leaders have not gone to Jantar Mantar, which more or less became the epicenter, the starting point as far as this protest is concerned. Though Rahul Gandhi, through his Yuva Goonj, Chhatro Ki Goonj program, has been speaking about the paper leak issue and has the Congress has been galvanizing on this issue, but a lot of questions are being asked why Rahul Gandhi is actually not going to Jantar Mantar as well. Kanika, bahut sawal is baat pe bhi uth rahe hain ki dekhiye, Rahul Gandhi chhatron ki baat to kar rahe hain, to unhe Jantar Mantar pe jaakar wahan jo chhatr hain unse baatcheet karne mein, unke saath khade hone mein gurez kyun hai?
0: देखिए, बिल्कुल इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं कि जो सीजीपी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे चल रहा है उसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट क्यों नहीं कर रही। उसके पीछे कारण ये है कि जिस मुद्दे को सीजीपी उठा रही है उसी मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी भी लगातार सड़कों पे है। चाहे एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, ये तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है लगातार जो है छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रम जो है खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। और इससे पहले भी जब सीजीपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी दूरी को बनाए रखा था, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ जुड़ना वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उसको डिटेन कर सकता है, उस पर कहीं ना कहीं बात आ सकती है। और इसीलिए राहुल गांधी लगातार जो स्टूडेंट का मुद्दा है उसको उठा रहे हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो उन स्टूडेंट्स के साथ है जो पेपर लीक के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं। सर, लगातार आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या
1: आने के बाद बात करेंगे,
0: क्या प्रदर्शन करने की कोई तैयारी है सर?
1: देखिए, यहाँ एक बैठक है, उसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं।
0: ठीक है, देखिए मुकुल वासनिक थे, वो कह रहे हैं कि बैठक है इसलिए उनको यहाँ पे बुलाया गया। लेकिन बिल्कुल अंकित, सीजीपी के प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हो रही, राहुल गांधी शामिल नहीं हो रहे, लेकिन जिस तरह से सीजीपी का 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद तमाम जो तस्वीरें निकल के आई उसको लेकर लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी कर रही है। और इसीलिए राहुल गांधी ने जस्ट उसके नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री के घर के बाहर जो है प्रदर्शन किया था, जिसमें तमाम जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो वहां पे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं सीजीपी से कांग्रेस ने अपनी दूरी को बनाए रखा है, लेकिन जो पेपर लीक का मुद्दा है और खास तौर पे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन की बात है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो कलेक्टिवली आगे आकर लगातार सरकार को घेर रहा है। लेकिन इस बात पे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि राहुल गांधी आखिरकार क्यों नहीं सीजीपी के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, जिसका बड़ा कारण ये है कि
23: कांग्रेस with me. Just hold on for a second. Let's also get Jainendra, our colleague who covers the Congress party very, very closely. Jainendra, is there a surprise, you know, protest that Rahul Gandhi, you know, is planning once again with all the India Alliance members reaching his residence? What's on the menu? What's on the agenda? Chunki jo humne pehle dekha tha Jainendra, do din pehle, सबको बिल्कुल चकित कर दिया था राहुल गांधी ने उस प्रोटेस्ट पे जो प्रधानमंत्री के घर के सामने हुआ था। तो आज क्या प्लानिंग है?
2: देखिए, ऑफिशियली तो अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष आए, हम सबने उनसे पूछा कि क्या कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि हम चाय पीने आए हैं और यहाँ पर हाई टी का बंदोबस्त भी है, जिस तरीके के इंतजाम है। तकरीबन 150 से 200 इंडिया गठबंधन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, उन सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम है। लेकिन असली मकसद जो है वो चाय नाश्ता नहीं है, एक फॉर्मल मीटिंग होगी और इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि ये सब लोग यहाँ से मूव करेंगे बसों में राजघाट के लिए और वहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा सकता है। हमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से सोमवार को जो प्रोटेस्टर्स थे उन पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई, बल प्रयोग हुआ, उसके खिलाफ राहुल गांधी तमाम इंडिया अलायंस के सांसदों के साथ राजघाट पर एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट वहाँ पर दर्ज कराना चाहते हैं। और इसी को लेकर के ये सब लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और एक एक करके सभी पार्टियों के सांसद जो है वो पहुँच रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या प्रोग्राम, व्हाट इज द प्रोग्राम?

0: I don't know.
1: What is message?
0: We don't know. Only meeting message.
1: तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो सांसद आ रहे हैं वो खुद बता रहे हैं कि हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया है, लेकिन क्या कार्यक्रम है उसके बारे में नहीं। अनिल यादव सांसद है राज्यसभा के। अनिल भाई क्या प्रोग्राम है?
2: अभी हमारे अभी अंदर हम चाय पे मिलने आए हैं। साहब से आदेश है कि चाय पे आने के लिए सब लोग चाय पे आए।
1: तारिक अनवर जी पहुंचे हैं। तारिक सर, सर सर आप लाइव हैं, जरा बताएंगे क्या है कार्यक्रम? क्या कुछ है सर?
3: कोई कार्यक्रम को अभी जानकारी नहीं है, अंदर जाने के अभी अंदर जा रहे हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने सब सांसदों को बुलाया है।
4: अब क्या
1: सर आप ही बताइए, चाय नाश्ता आप सुन सकते हैं कि सांसद लोग बता रहे हैं कि चाय नाश्ते पर राहुल गांधी ने बुलाया, लेकिन हमें जो सोर्स बता रहे हैं वो ये कि 3 बसों का इंतजाम किया गया है और इन बसों में लगभग 100 से ज़्यादा इंडिया अलायंस के सांसद जो हैं वो मार्च करेंगे। 2 वेन्यू जो है वो माना जा रहा है कि जा सकते हैं, एक राजघाट और दूसरा जंतर मंतर भी जा सकते हैं, हालांकि ज़्यादा संभावना जो है वो राजघाट की है। लेकिन क्या पुलिस इजाजत देगी इन सबको मूव करने की, इसकी संभावना कम लग रही है। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के एमपी। सुमन जी कहाँ क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाएंगे अंदर?
5: क्या होना है वो तो अंदर जाके पता चलेगा, वहाँ से आने के बाद बताएंगे।
1: आप लोगों को संदेश क्या है, मैसेज क्या है अंदर?
5: कुल मिलाकर सिर्फ ये है कि यहाँ बैठक बुलाई है, लोगों को बुलाया है। एमपी
1: क्यों एमपी
5: को कोई गोपनीयता नहीं है, आपके सामने हो रहा है सर।
1: अचानक आप लोग पीएम आवास एक दिन पहुंच गए, इसीलिए तो दिलचस्पी है कि आज कहाँ जाने वाले हैं?
5: नहीं, अंदर जाकर के क्या बात होनी है हम बताएंगे, बाद में बताएंगे बाद में।
1: तो रामजी लाल सुमन है आगरा से, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सारे जो सांसद हैं वो एक किस्म से सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, और देखिए ऐसा नहीं है मिसलीड कर रहे हैं इन्हें, सच में इन लोगों को भी अभी तक कन्वे नहीं किया गया है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है, लेकिन हमें सोर्सेस ये पता चला है कि सभी सांसदों को मीटिंग के बाद बस में बिठाया जाएगा।
6: और कम होता है राजघाट, ऐसा बहुत कम होता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ प्लानिंग करे और वो लोगों को पता ना चले। ये पिछली बार हमने देखा 2 दिन पहले जो हुआ, ना तो कांग्रेस के रिपोर्टर्स को जानकारी मिली उस समय और ना ही बहुत सारे जो एमपीज आए थे उन्हें पता चला। तो कुछ कांग्रेस में एक नए तरीके से इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी बदलाव हुआ है। मतलब बिल्कुल भौचक्का सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को, सरकार को, अपने रिपोर्टर्स को भी जो पार्टी को कवर करते हैं उनको भी अभी तक कुछ खास जानकारी नहीं मिल पा रही है।
1: देखिए मुझे लगता है 12 साल विपक्ष में बैठकर कांग्रेस ने जो कुछ नई बातें सीखी है उसमें एक ये भी है कि कैसे अपने प्लान को आखिरी तक नहीं जाहिर होने देना है। देखिए सांसद हमारे तनुज पुनिया कांग्रेस के यहाँ पर इलाहाबाद से आए। तनुज भाई क्या प्रोग्राम है?
7: मुझे नहीं पता, पता नहीं है भैया, मिलने के लिए बुलाया बस।
1: क्या मार्च निकालेंगे राजघाट
7: तक? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं।
1: देखिए तो हम पूछ जरूर रहे हैं दर्शकों को के लिए, लेकिन जवाब जो है वो सबका एक ही है। बाराबंकी से ये सांसद हैं तनुज पुनिया, और इनका भी यही जवाब है। तो तकरीबन देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो सड़क है यहाँ दोनों तरफ पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है और कर रहे हैं। क्या यहाँ से कांग्रेस के सांसदों को निकलने देंगे बस में बैठ कर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से इस मुद्दे पर प्रदर्शन करे। करमवीर बौद्ध नए राज्यसभा सांसद, करमवीर जी लाइव हैं आप NDTV पर, क्या प्रोग्राम है आज का?
8: नहीं मीटिंग है पार्टी की और जो भी मीटिंग होगा बाहर आके बताएंगे आप लोगों को।
1: कैंडल मार्च वगैरह निकालेंगे?
8: नहीं नहीं नहीं नहीं मीटिंग है।
1: ठीक है, तो पार्टी की मीटिंग में सब लोग आ गए, लगभग मैक्सिमम लोग आ गए हैं और अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि कहां मूव करने वाले हैं। मूव करेंगे, उसके लिए बसों का इंतजाम हो गया है और देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस अलाउ करती है। जी
6: अब बिल्कुल मूव करने देंगे या नहीं करने देंगे, पिछली बार जो पुलिस को एम्बैरेसमेंट हुआ है उसको देखते हुए वो एक बार देखना पड़ेगा वेदर द पुलिस विल अलाउ द कांग्रेस एंड द इंडिया अलायंस लीडर्स टू इनफैक्ट मूव फ्रॉम देयर। जनेंद्र स्टे ऑन विद मी। यू नो व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ न्यू दिस द ऑपोजिशन फील्स दैट द गवर्नमेंट एट दिस मोमेंट इज पुश्ड ऑन द मैट एंड ट्रस्ट मी यू दिस इज नॉट समथिंग दैट द इंटायर मूवमेंट द वॉइसिस ऑफ द इन व्हाटएवर वे any organization can, political organizations, students, everybody is now in fact standing behind as far as this youth movement is concerned. Today inside the parliament also, the opposition in fact took on the government, and surprisingly what Rahul Gandhi and the Congress party did day before, they were also able to, you know, in a way, they were also able to, the opposition, the BJP also tried to counter that protest. It was a site of protest versus protest, not inside the parliament, not in the Lok Sabha, but outside. Both the MPs, the ruling benches, the treasury benches and the opposition almost came face to face. They had to be separated.

0: started when this protest happened. The BJP and the Treasury bench brought protests against the opposition, saying that they put the Prime Minister's security in jeopardy. And on the other hand, the opposition pushing back, saying that the important issue, the dialogue starts with the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. Take a look at what happened inside the parliament today.
1: The Congress party is doing what they are notorious for. Disruption of house, no discussion in the house because the truth will come out, and the action taken by the government will all have to come out in the discussion. So they have no cause for further agitation. They don't want that. And therefore they are disrupting, they don't want a fair discussion, because when the truth comes out, it is they who are politicizing a sensitive issue which relates to young people of the country.
2: Sarkar aage aaye, statement diye ki jo istifa hum pooch rahe hain, aur education minister istifa dena chahiye. विनती करता हूं उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए, इस्तीफा जरूर होना चाहिए।
3: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जो दोषी है ऐसे कारनामों के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी, और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके।
4: प्रधानमंत्री जी आए नहीं है सदन में, इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहे? खुद से पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो।
5: जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। अहंकार के साथ सरकार चला रहे हैं, डेमोक्रेसी में यही सबसे अच्छा है कि हम लोगों की बात सुने, लोगों की बात जाने, वो क्या चाहते हैं, कम से कम बातचीत तो करें वो, और बातचीत से कोई रास्ता निकालें, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अगर अन्याय करती है, दबाव बनाती है, सरकार का दबाव चलने वाला नहीं है।
6: हमने उम्मीद किया था कि नीट एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर के हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे, पर उम्मीद था कल ओपोजिशन पार्टीज़ के कई नेताओं से हमने बातचीत किया, कांग्रेस पार्टी से भी किया, और सबने कहा कि एक रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते फिर से उन्होंने कंडीशन लगाना शुरू किया, फिर अलग अलग बहाना बनाना शुरू किया। फिर शाम को भी मैं उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के और भी साथियों से हमारा बातचीत करके एक हम रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं, और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज़ टॉलरेट नहीं करेंगे।
7: युवा बच्चों को बुलाकर दो दो घंटे घर में बिठाते हैं, बात नहीं करते हैं, उनको रुसवा करते हैं, आप उनसे तो बात करना सीख लीजिए ना, आप क्या बोल रहे हैं, सब तो आपकी वजह से हो रहा है, सब आपकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है, अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? डिबेट क्या डिबेट कराएंगे आप? आपको जो गलती आपसे हुई है उसका तो इकरार करिए, आप इकरार ही नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजोरिटी, हम सबको दबा देंगे, आप नहीं दबा पाएंगे, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको।
8: John Brittas is with us. Sir, the sources in the government is now stating to us that government has made it very clear that they will not go to Jantar Mantar. Either the CJP should come to the Mantralay or at the residence of JP Nadda.
9: See, the government is all powerful. Let them shift the Chandra Mandir to PM house then. What nonsense they are speaking. Are we living in a democracy? Masoom Bechalok,

0: On X, nothing is more important than the welfare and the future of our youth. We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. He have directed the concerned authorities and officials to take necessary steps in this regard. This continues as our series of efforts that we are doing to, in fact, ensure safeguarding the interests of the youth. Well, ladies and gentlemen, this is the Prime Minister reaching out, trying to reach out to the students when there is an absolute boil as far as the anger is concerned among the youth against the government. But the question is, should there have been a more direct approach? Should there have been, in fact, some way directly addressing the students, those who are sitting on protest? Because a lot of people are saying that this is just a band-aid. Does this carry any sort of balm or any sort of, does it dissipate, bring down the tempers? We are yet to see that. But at this moment, this is the, for the BJP, for the government, this is the, as per them, the biggest outreach that has taken place as far as the Prime Minister is concerned. Let's listen in.
1: Today, PM has announced that fast track process will be set roll. And those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. Now, if this response is not come from the government of making sure the arrests are done in time, re-exam happen on time and on time post the incident, an announcement of the results, and young people are now finding the institutions where they have to go for their higher education. All this is happening.
2: किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं. सर, वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है. और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वो ही देना चाहिए. तो उसके बजाय दूसरा और क्या है, मंगल मिलन, उसमें क्या तकरीर करते हो आप? उसमें ये तकरीर करते हो, जाओ युवाओं को उठाओ, समझाओ इसके बारे में. यानी इनडायरेक्टली आप इंस्टिगेट कर रहे हैं कि नौजवानों को कि अपने तुम भी काउंटर करो. यानी एजिटेशन को काउंटर करने के लिए उनके एमपीस को खुल के उन्होंने बोला.
3: हमारा कंसर्न है हमारे बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में. तो इसीलिए हमने एक तो पहले तो ये किया, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, जो भी इसमें जिम्मेदार थे ऑफिसर्स, जो भी संबंधित लोग, ऑल द 14 हैव बीन अरेस्टेड. वो सब अभी दे आर बिहाइंड द बार. एंड इससे पहले जो कानून था उसके कानून में प्रोविजन बहुत वीक था. प्राइम मिनिस्टर मोदी got it amended in 2024 June. Congress party जब power में है corruption, जब opposition में है तब disruption. This is the Congress का नीति है.
4: This, what is this? False claims, false claims. Nobody believe in his words nowadays. Nobody believe in his words. This credibility of his words has been already disappeared. Nobody is going to be. Good, no action from the government. First of all, he has to tell, remove the Dharmendra Pradhan from Education Ministry. Then he has to talk to the students.
5: Paper leak के दोषी थे जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था. आज उनको दंड देने के लिए, इस घोर अपराध के लिए दंड देने के लिए fast track courts का गठन करने की निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है. इसका हम स्वागत भी करते हैं. युवाओं के हित में लिया है और जल्द से जल्द न्याय मिल पाए, दंड मिल पाए, उस दिशा में कदम है. मेरा केवल विपक्ष इतना कहना है, भागो मत, चर्चा में भाग लो. युवाओं के कंधों पर अपनी राजनीति ना करो, उनके आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेको. अगर हिम्मत है तो चर्चा में भाग लो.
6: मोदी जी, भारतीय राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन,

0: तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे प्यादों को सजा देने के लिए।
1: You see, merely announcing fast track courts is really not solving a systemic problem. There are systemic reasons why these leaks are happening regularly, because the commercial angle of these coaching centers, there is an incentive for them to show inflated results, and so they are willing to indulge in all kinds of unscrupulous practices by encouraging paper leaks and initiating paper leaks. And there are also fault lines within the system of the NTA and the agencies which run the examination. The paper leaks happening. This fast track court is only post fact, after an illegal act happens and they apprehend the perpetrators, they can take them to court.
2: ये सरकार समझ ही नहीं है। सरकार completely cut off उन गरीबों से जो अपने बेटा बेटी के लिए नीट की तैयारी के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए खर्चा करती है, उनको आप एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं। स्पेशल कोर्ट क्या होता है? ये कौन सा जादू की छड़ी है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा उसमें? यूजीसी एनईटी का एग्जाम लीक हुआ, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी, हुआ ही नहीं। ये सब जो है ना आई वॉश है। आप जो जड़ है, जो तकलीफ है, उस पर आप तवज्जो नहीं ले रहे हैं।
3: पहले इस्तीफा, उसके बाद चर्चा। हम नीट को लेकर के चर्चा मांग रहे हैं सदन में, पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, ये साफ है। प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर क्या इतनी खास बात है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे?
4: अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है, जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सजा मिल सके। लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए।
5: All right, we'll slip into a very quick break at this moment. We are getting you all the latest developments of what is happening on the streets of the national capital as far as this protest of the young students is concerned. Stay tuned.
6: Only two words matter right now: youth and Sansad. Youth want answers, Sansad needs to give those answers. When the entire protest at Jantar Mantar started, is there something that was lacking? Were the hopes dashed from a movement that saw genuine groundswell of support? That's the dialogue that we are having right here on NDTV, because remember, when it's youth, when it's students, the buck

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्थोर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
11: वी आर ओवर जिमी।
12: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
13: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
14: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
15: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
16: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
17: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
2: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: All right, some breaking news coming in at this moment. Massive security development here at Jantar Mantar. A huge police deployment is taking place, as you can see in these visuals. The visuals are coming in from Central Delhi. This is, remember, has been the epicenter, the heart, as far as this entire protest is concerned. Thousands of students have gathered there. Security has also been beefed up outside Rahul Gandhi's residence, the Five Suneri Bagh area where Rahul Gandhi resides. And of course, the meeting of the India Alliance members is taking place. And you have to see both of these in context. The context is that, like what happened day before, when the Congress suddenly decided that they want to stand in front of the Prime Minister's residence for the protest, today the police is taking no chances. So massive security development bandobast that is taking place at this moment, both outside Jantar Mantar and outside the residence of Congress leader, leader of opposition, Rahul Gandhi, where the India Alliance MPs are meeting at this moment. This is the latest coming in, and as I'm speaking, it started to, in fact, come down rain as well. And today in the evening, you can expect a lot of political development. Let's just move a little bit. You can expect a lot of fast-paced developments. Let me go across at this moment to my colleague Jainendra, who is joining us from outside the residence of the leader of opposition, Rahul Gandhi. Jainendra, suraksha ke kade intizam badha diye gaye hain. Delhi police bhi jo pichle kuch dinon mein hua tha usko dekhte hue koi chance nahi lena chahti hai.
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अंकित. चप्पे चप्पे पर पुलिस है फिलहाल नई दिल्ली इलाके में, तो आसपास के सारे 12 मेट्रो स्टेशन बंद हैं. और मेरे साथ मनोरंजन भारती जी हैं. बाबा लगभग 2 किलोमीटर से पैदल चलकर यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि सड़क पर तिल रखने की जगह नहीं है. पुलिस ने वैसे ही इस रोड को सील किया हुआ है, और वैसे भी अगर सील ना भी करे पुलिस तो भी यहाँ से कोई गाड़ी बढ़ नहीं पाएगी. बाबा क्या हाल है बाहर का, आप 2 किलोमीटर से पैदल चलते?
2: जी हाँ, मैं NMC से पैदल चल के आया हूँ. मुझे लगा कि जब NMC से बाहर निकला तो बहुत गाड़ियों का रेला है, वहाँ पर कोई भी गाड़ी मूव नहीं कर रही है. जब मैं सेंट्रल सेक्रेटरीट के आसपास पहुंचा हूं, प्रेस क्लब के आसपास, वहां पर केवल आदमियों की भीड़ ही दिख रही है, क्योंकि सारे ऑफिस के टाइम खत्म हुए हैं और मेट्रो के सारे गेट बंद हैं. तो हर जगह रोड पे केवल ही केवल लोग हैं, और लोग पैदल चल रहे हैं, लोग गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, लोग बसेज ढूंढ रहे हैं, और उसके वजह से ट्रैफिक जो है मूव नहीं कर रहा है. तो मुझे लगा मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा, तो मैं NMC से पैदल चलते चलते यहाँ तक आया.
1: बहुत बुरा हाल हो रहा है अंकित. देखिए, प्रदर्शन की वजह से पूरा नई दिल्ली का जो इलाका है वहाँ पर ट्रैफिक चरमराई हुई है, सड़क पर जाम लगा हुआ है, मेट्रो जो है उसके सारे दरवाजे बंद हैं, और ऊपर से बारिश हो रही है, तो ऑफिस का खत्म होने का वक्त हुआ है. आम लोगों के लिए काफ़ी कठिनाई होगी. और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बसें जो हैं वो लगी हुई है. ये सुनहरी बाग रोड है, जिसमें कि 5 नंबर बंगला राहुल गांधी का घर है. घर के अंदर इंडिया गठबंधन के तमाम MPs मौजूद हैं. अंदर स्ट्रेटजी बन रही है. 2 लोकेशन हमें पता चले हैं. पहले राजघाट की जानकारी आई थी, अब पता चल रहा है कि इंडिया गेट जाना चाहते हैं. लेकिन क्या जा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है. इंतजार किया जा रहा है मीटिंग के खत्म होने का. औपचारिक तौर पर ये सब सांसद लोग बाहर आए. कैंडल मार्च निकाला जा सकता है, लेकिन पहली बात तो पुलिस जो है मार्च की इजाजत देगी नहीं.
0: और अगर एक मिनट जरा रुकिए, जाइएगा मत. I'm just going to come back to you. What we will do, I want to also show you, ladies and gentlemen, one, of course, what you saw there where Jainendra is, that's Rahul Gandhi's residence. The other one is this human chain being formed between the police and the protesters at Jantar Mantar. Now, this is where the protests have happened. Some clashes have also happened between the protesters and the police. It happened last night as well. At this moment, there are protesters, those who are forming a human chain between the police and the protesters, so that there is no clash. Nobody beats up each other. And then they're trying to ensure that there is some sort of peace that can, you know, despite the deployment, heavy deployment of the police, that can be in fact ensured. So the protesters are standing. There are these volunteers, those who are standing, holding their each other's hand, so that the tempers can be calm. Now, for a moment, ladies and gentlemen, just understand, there are these young people between the age of 17, 18, 21, 22, those who are standing there. At this moment, these visuals that you will be seeing cannot be live, because there is no internet there. I would want to stand there and do this bulletin, but you can't do that for various reasons. There is no internet there. You are seeing these visuals coming in from Jantar Mantar, where there is an attempt once again to ensure that the situation doesn't go out of hands. These visuals that we are putting out on your screens at this moment. लेट मी ऑल्सो वेरी क्विकली ब्रिंग बैक जैनेन्द्र. जैनेन्द्र, दो जगह के विजुअल इस समय दिखाई पड़ रहे हैं. एक जंतर मंतर जहां पर जो बच्चे हैं वो ह्यूमन चेन बना के खड़े हुए हैं. वो नहीं चाहते कि पुलिस और उनके बीच में झगड़ा हो, कोई मारपीट हो, लाठीचार्ज हो, उसका कोई रिएक्शन हो. और दूसरी तरफ राहुल गांधी का घर है, यहाँ पर सारे नेता इकट्ठे हुए हैं, उनको रोकने के लिए भी बंदोबस्त किया जा रहा है.
1: बिल्कुल बंदोबस्त है और पुलिस जो है वो एहतियात बरत रही है, क्योंकि दो दिन पहले मंगलवार को जो है वो अचानक से राहुल गांधी की अगुवाई में तमाम कांग्रेस के सांसद और बाद में इंडिया गठबंधन के दूसरे सांसद भी पहुंच गए थे प्रधानमंत्री आवास के गेट पर, और वहां पर 3 घंटे तक धरना चला था. पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे और फिर जैसे तैसे कार्रवाई की गई, बल प्रयोग किया गया, सभी सांसदों को वहां से हटाया गया और हिरासत में राहुल गांधी 2 घंटे रहे, बस में घूमते रहे और फिर जाकर देर रात उन्हें छोड़ा गया. प्रियंका गांधी हिरासत में ली गई. तो अब जबकि पहले से इस बैठक की सूचना मिल गई थी मीडिया के जरिए, कहीं ना कहीं पुलिस को, सुरक्षा बलों को, तो बैठक जबकि अभी शुरू नहीं हुई थी तभी से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर पहुंच चुकी थी. और जो सुनहरी बाग रोड है दोनों तरफ से उसमें बैरिकेड लगाए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि बसों को जो है वो सड़क के दोनों तरफ लगा दिया गया है. आप देख सकते हैं अंकित, हम जब से हम और आप बात कर रहे हैं बसें जो हैं वो लगी हुई हैं, उसमें कुछ पैसेंजर मुझे नजर आ रहे हैं लेकिन ये बस 1 इंच नहीं हिल पाई है. तो ये स्थिति है इस सड़क की बिल्कुल यहाँ पर.
0: ओके,
1: प्रशासन के द्वारा
0: उसके कारण बिल्कुल आप वहां पर नजर बना के रखिए. जैसे ही कुछ होता है तो यू नो कम बैक एंड वील गेट द लेटेस्ट टू आर व्यूअर्स. सो 2 इंपॉर्टेंट एपिसेंटर्स एट दिस मोमेंट इन द नेशनल कैपिटल, जंतर मंतर वेयर देयर इज मैसिव डेवलपमेंट ऑफ द पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स आर फॉर्मिंग अ ह्यूमन चेन सो दैट नथिंग अनटूवर्ड हैपन, एंड ऑन द अदर हैंड व्हाट्स हैपनिंग एट राहुल गांधीज रेसिडेंस. बट माय कॉलीग शिव अरूर स्पोक टू वन वुमन. She became the picture of the day when yesterday in the rain in Mumbai, she stood in front of a police van which was taking the protesters away. This is what she had to say.
3: And the woman in that picture that has gone explosively viral from Mumbai is 27-year-old Riya Ahir of Mumbai. Riya, welcome. Good to have you here on NDTV. A very, very compelling image of you standing in front of that police van, which was filled with protesters as you stood there. I want to start by asking you, Riya, you know, how that happened? What was going on that you went up there and stopped that van? Tell us about how it happened.
4: Well, as every student and citizen in India who wants to join the movement, I had the opportunity to be on ground. I was there on 21st as well, but 22nd is something that will stay with me and everyone. So I was there at 4:30 at Kohinoor Building, which is near Shiv Sena office and the Shivaji Park. I was waiting for my friends there, and because it's kind of scary to go alone in such a huge crowd, and with what's happening around the world, it's better to be in a group and you know, unite everyone. So I was just waiting for my friends, and then I could hear the slogans and the chanting from afar.

0: Rahul Gandhi's residence. It's the meeting started at 6 p.m. and it's just gotten over. We are learning that the opposition MPs will be holding a candle vigil at Rajghat. Amid all of this, security has also been beefed up outside Rahul Gandhi's residence. This, of course, comes at a time when the opposition, Congress leader Rahul Gandhi, is adamant on the education minister Dharmendra Pradhan's resignation. What we're learning is that crucial meeting of Rahul Gandhi with the Congress MPs at Rahul Gandhi's residence at Lutyens, Delhi, has just gotten over. And the opposition MPs will be holding a candle vigil at Rajghat. I'll go across to my reporter, Kanika. Kanika, what are you learning? We're learning that the opposition MPs will be a candle vigil at Rajghat and the meet is over. Kanika.
1: देखिए बिल्कुल इंडिया टुडे नेताओं की जो बैठक है वो खत्म हो गई है. इस वक्त जो तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे आपको कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे. राहुल गांधी के रेसिडेंस के बाहर जो है ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचे हुए. इसके अलावा जो है बस में तमाम जो नेता है इंडिया गठबंधन के उनको फिलहाल बिठाया गया है. और इसके अलावा जो है गांधी स्मृति की तरफ जो है तमाम इंडिया गठबंधन के जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं. लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता है वापस है वो यहाँ पे लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इस तरह से लगातार पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पे है. बैनर देखिए पोस्टर बैनर के तहत जो है यहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है. तमाम जो यूथ कांग्रेस के वर्कर्स है कांग्रेस के वर्कर्स है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे. इसके अलावा देखिए किस तरह से तमाम वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं. आइए पूछ लेते हैं एक बार इमरान ताबड़ी में सर इस वक्त है. इमरान जी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्या?
2: हमारी सिर्फ एक डिमांड है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक आगे कोई बातचीत नहीं. बच्चों की मौत हुई है उसके गुनहगारों को जब तक सजा नहीं तब तक अपोजिशन चुप नहीं बैठे.
1: लेकिन सरकार बोलने के लिए डिस्कशन करने की तैयार है, वो लोग चर्चा की मांग के लिए तैयार है.
2: पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें उसके बाद डिस्कशन करें.
1: हम डिस्कशन करेंगे, मार्च करेंगे, इंडिया गेट जाएंगे.
2: हम आपके सामने हैं, देखिए क्या करते हैं.
1: देखिए इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन तमाम जो वर्कर्स है वो यहाँ पे लगातार गैदर हो रखे हैं. इसके अलावा जो लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी रेजिग्नेशन की डिमांड जो है वो यहाँ पर की जा रही है. लेकिन तमाम जो कांग्रेस के वर्कर्स है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है. उसके अलावा जो है तीन बसेस जो है देखिए किस तरह से वो तीन बसेस जो है वो आपको दिखाई दे रही होंगी जिसमें तमाम जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. इसके अलावा इंडिया गठबंधन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं. और इसके अलावा जो है कहा जा रहा है कि गांधी स्मृति की तरफ जो है ये तमाम जो नेता है वो आगे जाएंगे. और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अब से दो दिन तीन दिन पहले जो है प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट किया था और आज ये इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ बुलाया गया है. कुमारी शैलजा है, मैम आप लोग क्या प्रोटेस्ट करने वाले हैं?
3: जी बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट है आप देख रहे हैं.
1: मैम एक चीज बताइए, आप लोग क्या गांधी स्मृति जाएंगे, कैंडल मार्च करेंगे? आप कैंडल मार्च करेंगे या बस?
3: आप देखिए, आप देखिए, आप देखिए, हमारा मार्च जारी रहेगा. हमारा मार्च
1: क्या मांगे मैम, जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक लड़ते रहेंगे?
3: बिल्कुल, कई चीजें हैं, कई चीजें.
1: देखिए साफ तौर पे कांग्रेस की सांसद है कुमारी शैलजा, उनका कहना है कि हमारी जो मांग है वो जारी रहेगी. लेकिन फिलहाल देखिए किस तरह से जो तमाम बसेस है वो पहले से यहाँ पर बुलाई गई थी. तीन बसेस जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय हो रखी है. इसके अंदर तमाम जो कांग्रेस के एमपी हैं इसके अलावा इंडिया
0: में ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है. राहुल गांधी हैज जस्ट ट्वीटेड राइट नाउ, आई एम रीडिंग आउट व्हाट ही सेज. MPs and leaders of the INDI alliance are peacefully heading to Gandhi Smriti on Tis Marg. We go to remember the students we lost, the children driven to take their own lives after the NEET paper leak, and we go to stand with the students who lie injured today and beaten for peacefully demanding justice and accountability. Rahul Gandhi goes on to say that the students of India are not alone and the entire opposition stands with them and their demands. This at a time when that NEET with the opposition MPs, the Congress MPs with Rahul Gandhi has gotten over. What we're seeing right now, the live visuals outside Rahul Gandhi's residence. Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi are leading that candle vigil, that march to Gandhi Smriti. Rahul Gandhi says that this march is for the students who killed themselves because of the NEET paper leak and is also after the July 20th protest which turned violent. But Rahul Gandhi says that the opposition is now standing with the students who got injured while the clashes broke out between the police personnel and the students. Remember, we are showing you live visuals outside Rahul Gandhi's residence. The core demand of the opposition right now, of course, remains the resignation of Dharmendra Pradhan. This at a time when the centre has time and again said that we will hold that conversation on the NEET paper leak in Parliament. Multiple outreach to the CJP regarding a dialogue, but the CJP remains adamant. And right now, Rahul Gandhi leading that march, candlelight vigil to Gandhi Smriti on 30 January Marg. I'm going back to my colleague Kanika. Kanika, abhi wahan kya ho raha hai? Hame visuals aa rahe hain ki Rahul Gandhi वो जा रहे हैं गांधी स्मृति अभी कनिका
1: दिल मार्च तो नहीं है लेकिन बसेस में तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पे मौजूद है आप देख सकते हैं तमाम जो तीन बसेस हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय की गई है जिसमें तमाम जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो यहाँ मौजूद है राहुल गांधी इस बस में है यानी कि तीन बसों के जरिए जो है गांधी स्मृति जाया जाएगा और उसके बाद वहां पर एक पैदल मार्च करने की कोशिश जो है वो की जाएगी इस वक्त मेरे साथ किशोरी लाल शर्मा है कांग्रेस पार्टी के सांसद है सर आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर देखिए तमाम जो नेता है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और साफ तौर पर कैंडल मार्च तो नहीं है लेकिन बसेस में तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया ब्लॉक के जो नेता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं आप देख सकते किस तरह से केसी वेणुगोपाल जो है आपको फ्रंट सीट पर दिखाई देंगे इसके अलावा राहुल गांधी प्रियंका गांधी इवन सोनिया गांधी भी इस बस में सवार है और इसके अलावा जो बाकी इंडिया गठबंधन के नेता है उनको भी यहाँ पे बिठाया गया है और इसके अलावा ये कहा जा रहा है जानकारों के मुताबिक कि यहाँ से इन तीन बसेस में गांधी स्मृति जो है वो तमाम सांसद पहुंचेंगे और वहां पर एक मार्च करने की कोशिश जो है वो फिलहाल की जाएगी इसके अलावा देखिए तमाम जो कांग्रेस के सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं लगातार जो है पेपर लीक को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है उसको लेकर तमाम आज कार्यकर्ताओं को यहाँ पर इकट्ठे

0: सांसद है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह की तस्वीरें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। रेणुका चौधरी कांग्रेस की सांसद है वो यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा तमाम जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो यहाँ पे लगातार करते हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। अजय माकन से बात कर लेते हैं, सर आप लोग जो मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही है हम चर्चा के तैयार है, आप चर्चा नहीं चाहते कर?
1: नहीं, मांग क्या, हमारी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जो दिल्ली के अंदर छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार किया, पुलिस की जो ज्ञातियाँ हुई हैं प्रधानमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ऐसा सिर्फ डिस्कशन करके छोड़ दे उसका कोई मतलब नहीं है, जिम्मेवारी भी तो तय होनी चाहिए।
0: सर एक और सवाल, प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस पे पूरी कार्रवाई होगी, अपेक्स कोर बनाने की मांग भी की है, तमाम चीजें बोल रही सरकार।
1: इससे पहले 13 साल में कभी कार्रवाई करी है उन्होंने? कभी उन्होंने जो बोला है वो किया है?
0: तो जब तक ये रेजिग्नेशन नहीं होता तक ये मांग चल
1: बिल्कुल।
0: ठीक है, देखिए अजय माकन कांग्रेस के ट्रेजरार हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक जो डिमांड कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कर रहा है, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की जो डिमांड की जा रही है, जब तक वो फुलफिल नहीं होगी, जब तक उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक जो है कांग्रेस नहीं रुकेगी, ऐसी प्रोटेस्ट करती रहेगी। लेकिन देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, कई जगहों से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, NSUI के कार्यकर्ताओं को संदेश भेजा गया, यहाँ पे बुलाया गया, 3 बसेस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई, यानी कि पूरा जो प्रोटेस्ट है या जो पूरा ये मार्च है इसको प्लान किया गया और प्लान के तहत जो है कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जानकारों के मुताबिक यही जानकारी है और राहुल गांधी ने ट्वीट करके खुद जानकारी दी है कि वो गांधी स्मृति जाएंगे, वहां पर इस प्रदर्शन को, पेपर लीक मामले को उठाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी ने तमाम अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये भी कहा है कि शांतिपूर्वक, यानी कि कोई हिंसा ना हो, किसी तरह का वॉयलेंस ना हो, इस तरह की जानकारी जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, तमाम जो नेता है वो इस वक्त मौजूद है बस में, देख सकते हैं किस तरह से केसी वेणुगोपाल जो है वो आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा फ्रंट सीट पे राहुल गांधी खुद बैठे हुए हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी और तमाम जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इंडिया गठबंधन के नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। 2-3 दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुआ वो कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, लेकिन ये इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट है और इसीलिए गांधी स्मृति को बढ़ने के लिए तमाम जो नेता है वो बस में सवार है और लगातार एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड जो है वो की जा रही है। ओवर टू यू।
2: तो ये जो हम अभी देख रहे हैं नीट पेपर लीक पर डिस्कशन करेंगे, उस सेंटर ने बार बार कहा है, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अश्योरेंस दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, बट ऑपोजिशन की एक ही डिमांड है जिसमें वो बिल्कुल खड़े उतरे हैं कि वो चाहते हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। ये एक साइड है, जबकि सेंटर ने कहा है कि हम डिस्कशन करेंगे और ये पार्लियामेंट में भी लेके आएंगे। जो हम आज देख रहे हैं वो एक दिन बाद हो रहा है, जब राहुल गांधी ने वो धरना किया प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस के बाहर। बट अभी बताइए क्या चल रहा है उधर, हम देख सकते हैं लाइव विजुअल्स, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सारे ऑपोजिशन MPs, इवन KC वेणुगोपाल जा रहे हैं गांधी स्मृति और वहां पे एक मार्च करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि ये उन सब बच्चों के लिए है जिनने अपनी जान ली बिकॉज ऑफ नीट पेपर लीक करने का।
0: देखा जाए तो बिल्कुल सरकार लगातार ये बोल चुकी है कि हम चर्चा करवाने को तैयार हैं, लेकिन लगातार जो है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता बोल रहे हैं कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं होगा तब तक वो इस मांग को जारी रखेंगे। जिस तरह से सरकार ने आज सुबह बोला कि वो संसद के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही हाउस में एग्री करती है डिस्कशन के लिए, बल्कि किरण रिजिजू ने ये भी कहा कि समय और कितना समय होना चाहिए ये सब कुछ फैसले जो है ऑपोजिशन कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और पूरा जो इंडिया ब्लॉक है वो यही डिमांड कर रहा है कि पहले रेजिग्नेशन हो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, वो देखिए बस जो है वो आगे बढ़ रही है जिसमें आपको राहुल गांधी जो है वो दिखाई देंगे। इसके अलावा तमाम, देखिए राहुल गांधी जो है वो आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे, फ्रंट में बैठे हुए हैं, उसके अलावा तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा इंडिया गठबंधन के नेता है वो भी यहाँ पे लगातार मौजूद है और देखिए कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेपर लीक मामले को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड जो है वो यहाँ पे की जा रही है। देखिए राहुल गांधी के बगल में मीसा भारती जो कि RJD की सांसद है वो यहाँ बैठी हुई है, किसी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड कर दिया है। तमाम दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी जो है इस पूरे एरिया में की गई है। इससे पहले तमाम जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद कर दिए गए थे ताकि किसी तरह का प्रोटेस्ट ना हो सके, लेकिन फिलहाल बस आगे बढ़ नहीं पा रही क्योंकि बहुत जाम है। और इसके अलावा आगे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके जो है रास्ता ब्लॉक कर दिया है। दिल्ली पुलिस की तैनाती जो है वो यहाँ पे, इसके अलावा आरएएफ जो है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। किस तरह से देखिए तमाम रास्तों को रोक दिया गया है, लेकिन तस्वीर दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन से बोलूंगी एक बार दिखाए कि किस तरह से राहुल गांधी जो है वो बस में आगे बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। राहुल गांधी के साथ मीसा भारती है, उसके अलावा किसी वेणुगोपाल जो है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। यानी कि पेपर लीक को लेकर पूरा इंडिया गठबंधन कलेक्टिव होके धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उनके रिजिग्नेशन की डिमांड जो है वो कर रहा है, और इसीलिए लगातार प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। बसेस में तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इंडिया गठबंधन नेता है, वो आगे बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि गांधी स्मृति पहुंचने के बाद अंदर जो है निरीक्षण किया जाएगा। ओवर टू यू।
2: जो अभी देख रहे हैं राहुल गांधी और सारे ऑपोजिशन एमपीज एक साथ गांधी मार्च जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वहाँ पे जो हम मार्च करेंगे वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनने अपनी जान ली, एंड ऑल्सो सारे स्टूडेंट्स जो इंजर्ड हुए मंडे के प्रोटेस्ट में। बट कनिका, अब ये भी देखा जा रहा है कि ये इशू नीट पेपर लीक का बहुत पॉलिटिकल हो गया है, क्योंकि सेंटर ने कहा है कि हम चर्चा करेंगे संसद पे, पर अब INDIA ब्लॉक के सारे ऑपोजिशन एमपीज एक ही डिमांड करें रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। क्या अब हमें अब लगता है कि द कोर इशू ऑफ स्टूडेंट्स कहीं बैरियर हो चुका है, कहीं घूम हो चुका है, क्योंकि अब सारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो साथ में आ गए हैं विद द इशू अब बहुत पॉलिटिकल हो रहा है, उसके बारे में बताइए और बताइए कि वहां जाके हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं राहुल गांधी और सारे ऑपोजिशन एमपीज जो अभी गांधी स्मृति की तरफ जा रहे हैं। कनिका,
0: देखिए बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। लगातार इसी बात को लेकर जो है सरकार भी हमलावर है, लगातार गवर्नमेंट की ओर से भी कहा जा रहा है कि अब ऑपोजिशन जो है वो स्टूडेंट्स के मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। सुबह किरण रिजिजू ने यही बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को स्टूडेंट बेस्ड मुद्दा बनाने की बजाय पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी कहना है इस पूरे मामले को लेकर और इंडिया गठबंधन का कि लगातार चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी की बात हो या फिर पेपर लीक का मामला हो, लगातार इसको लेकर जो है सवाल उठाए गए हैं। और इसके अलावा बताऊं मैं आपको, तो लगातार जब पेपर लीक हुआ था नीट का तो उसको लेकर भी ऑपोजिशन ने लगातार सरकार को घेरा था, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एक तरह की राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है और खास तौर पे वो विरोध में और विपक्ष में बैठी होती है तो वो तमाम उन मुद्दों को उठाती है जिसके जरिए वो सरकार को घेर सके, और कहीं ना कहीं पेपर लीक का मुद्दा अब ऑपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि वो सरकार को लगातार घेर रही है। जब से CJP का प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसको लेकर जो मोमेंटम बन रहा है, ताकि 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद जो हमने तस्वीर देखी थी, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को ये लगता है कि इस मुद्दे के जरिए वो लगातार सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो है इस मुद्दे को उठा भी सकते हैं। और इसीलिए देखिए जो बस है वो कहीं ना कहीं फंस गई है क्योंकि यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी है। मैं दिखाना चाहूँगी आपको, यहाँ पे तस्वीर दिखाइए एक बार, दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पे तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी है। इसके अलावा जो है आरएएफ जो है वो यहाँ पे मौजूद है, आरएएफ जो है वो यहाँ पे तैनात हो चुकी है। इसके अलावा देखिए किस तरह से बसेस के जरिए जो है पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है ताकि जो बस आगे बढ़ रही है ऑपोजिशन की उसको रोका जा सके। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी, तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो यहाँ पे आ गए हैं। देखिए बैरिकेड तोड़ने की बात तक की जा रही है ताकि सके, लेकिन फिलहाल देखिए ये बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पे की गई है ताकि ऑपोजिशन की जो बस है उसको रोका जा सके। ये राहुल गांधी के आवास का लेन है जो कि सुनहरी बाग लेन है जहाँ पर दिल्ली पुलिस तैनात है। इसके अलावा जो है देखिए आरएएफ के अलावा जो तमाम जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे तैनात है और कहीं ना कहीं इसीलिए रोका जा रहा है। लेकिन एक बार कहूँगी कैमरा पर्सन को टहल करके दिखाए पूरा जो आपको तस्वीर दिखाई देगी उसमें तमाम वर्कर जो है वो कांग्रेस के यहाँ पे दिखाई देंगे और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो आपको सामने उस ऑरेंज कलर की बस में दिखाई देंगे। राहुल गांधी बैठे हुए हैं, उनके बगल में
2: Right. Let's also tell our viewers what is happening at this point of time. The political action has, of course, shifted to the LOP Rahul Gandhi's residence right now, where the IMDIA block MPs have finished a meeting, which lasted for an hour. It started at 6 p.m. and they are now in three buses, which is now going to the Gandhi Marg, where Rahul Gandhi has said there will be a march for all the students who lost their lives because of the NEET paper leak, and also for the injured students on the July 20th protest, where even police personnel were also injured. Their core demand of all the opposition MPs, of the Congress leaders, is the resignation of Dharmendra Pradhan, the Union Education Minister. They're saying that we will only have discussion in the Parliament after Dharmendra Pradhan's resignation. There seems to be a chock-a-block right now between the centre and the opposition, with the opposition also trying to politicise the whole issue of the NEET paper leaks, with somehow the core issue of the students somehow being buried, with Congress politicizing this issue, showing you live visuals right now of the Congress leaders getting inside the three buses there and going to Gandhi Marg, where they're saying they will hold a march for the students who killed themselves because of NEET paper leak, and also for the students who got injured. Remember, security has been beefed up. There have been barricades there outside Rahul Gandhi's residence, because this, of course, comes one day after the unauthorized dharna and the sit-in that the Congress leaders and Rahul Gandhi did outside the PM's residence. But right now, showing you how the paper leak politics has completely peaked, with Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, K.C. Venugopal, and other leaders going to Gandhi Marg. My colleague Vasudha now joining me live. Vasudha, over to you.
3: Rahisha, thank you so much. The march to Gandhi Smriti, like my colleague Rahisha pointed out, is going to be hugely symbolic, because this is probably the Congress party trying to say that the students had just organized a peaceful protest on the 20th of July, but the brutalities, the alleged brutalities that happened, that occurred on them, was not fair and cannot be justified at any level, and there needs to be accountability for that, which is why Rahul Gandhi held this meeting with opposition MPs today. This is a reminder. This is also a repeat of what we saw day before yesterday on the 21st of July. That was a Congress MPs march to the residence of Prime Minister Narendra Modi. They had an agitation outside Prime Minister Narendra Modi's house. They demanded two things. One, resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. The second big demand was they needed action on all those police personnel who took action against protesters on the 20th July protest. Today, it's going to be different. It's also the India bloc reflecting a sense of unity. Opposition MPs are taking part in this march at Gandhi Smriti. Hugely symbolic place, because this is where Mahatma Gandhi was assassinated. It also shows that the Congress party wants to make this a symbolic issue. It also wants to be seen as the party that is also bringing along every other opposition party that wants to raise the voice of the youth of the country. A hugely symbolic move, also important because it comes on the day Prime Minister Modi assured students of the country that fast-track courts will be put in place to expedite all matters of investigation related to paper leaks. The action has already begun. What we understand from government sources is that these fast-track courts will be put in place very soon, and that there'll be strict action taken against all those people who have been accused of participating in paper leaks. But that's not something that the opposition is satisfied with. The Cockroach Janata Party obviously has also called for a countrywide march tomorrow. The government has also appealed to CJP protesters, saying that it wants a second round of talks. The first round of talks took place on the 20th of July. The second round of talks is yet to begin. The government says that it's ready for talks wherever they want, whichever place they choose, whenever the CJP protesters want. But the CJP says that it has not received any formal invitation from the government. So it's very difficult to understand why are these two entities talking at each other, not really talking to each other, if they are really keen on solving the problem. The opposition has also made it very clear that discussion is not going to happen. They're not going to participate in this discussion till Dharmendra Pradhan, the education minister,

0: that we need to talk about, I guess, over the course of the coming weeks and months.
1: Right. Also, if somebody can tell me who are the guests who are joining us, we'll be joined by a panel of voices very soon before they join us. One more question for you, Sanjay Jha. I mean, I also think, I know this can be a problematic opinion, but I do feel that, you know, Parliament, is it losing the kind of importance that it deserves? Because nobody wants a discussion now. If students are facing these kind of problems, if there have been suicides because of an exam paper leak, a three-day discussion is not going to solve anything, right? Because we are only going to come up with policies. It's going to take some time for implementation. Even the fast-track courts will only expedite matters so much, right? So this need for cold, calculated action to be, you know, taken spontaneously, is that something that's also putting the BJP in a state of fix? Because that's not something that the ruling party is used to.
0: You know, Vasudha, let me tell you a very pertinent question, really. Whether it is the protest on the streets on the issue of the examination scam, the NET, etc., or whether it is currently, as you rightly mentioned, that the sacrosanct, the sacred parliament status becoming so diluted or dissipated, it has been happening over a period of time. I can tell you that right now, when I'm watching what's going on in the country across the states, the matter has gone beyond examination, beyond Dharmendra Pradhan's resignation, into jobs, into the kind of corruption, into the
1: yes.
0: institutional takeover, etc., etc. Because a lot of frustration, you know, because everyone's felt suppressed. There's been so much fear in this country over the last 12 years that I think people are finding a platform to express themselves, whether through rhetoric, whether through posters, whether through placards,
1: Absolutely.
0: Or whether through just
1: I think
0: protesting.
1: Sanjay Jha, that's exactly what is happening here. Let me get in Mohan Kumaramangalam. Yeah, Mohan, you know, when I was, you know, covering the protest the other day, when I spoke to students, I do feel that this issue has also moved beyond NEET. Yes, exam paper leaks are a very important complaint that students have, but this has also gone beyond NEET. You know, a lot of students that I saw belong to deprived families. They come from poor families. They come from, you know, low middle class families. And they're also looking for jobs, any jobs. And there's also a problem of skillability. And this has been a problem in this country for several years. Would you say that the Congress party in the past has actually put forward models that can be replicated? Or is it just rhetoric that we're talking about?
2: I think the Congress party has been talking about problems in our education system since two parliament elections ago. If I remember, Mr. Gandhi has brought this to the fore multiple times. And in fact, even before this particular protest started, he had already begun to lay out the contours of what he believes would be a new education system that we could follow. Now, Vasudha, let's not make this about the Congress party, frankly. This is an organic movement by our citizens. I've actually spent most of the day watching first-person accounts from the protest and, you know, being filled with a range of emotions. Frankly, and I do agree with you, there are people in the protest. This has moved beyond the exam leaks. But for the large part, it is the young people of our country coming out and saying, why can't a government take accountability? Why can't we ask questions of our government? And to going to what Sanjay said earlier, a lot of that is, I hear again and again, in a number of things that are said, but I have immense pride for the clarity of thought, the determination and purpose, and frankly, the fearlessness with which our next generation has been speaking truth to power and showing that to the world. And it's horrific to see a police that has acted with impunity in plain clothes, without name tags, attacked, abused, thrashed these students who just came out asking for their rights. And frankly, it should anger every citizen. The long silence, the inaction, the abdication of responsibility, and frankly, the cowardice of those in power. What kind of prime minister who's been quiet for like the last almost a month now will come out and just give one platitude-like statement talking about setting up fast-track courts? Have you even looked at the success rate of fast-track courts that have been set up in the past? It's a completely mixed bag. For the POXO courts that we set up after Nirbhaya, Delhi averages nearly 5 years to dispose of a POXO case against the one-year statutory timeline. And just announcing that there will be fast-track courts means nothing. You have to allocate the budget. Most fast-track courts actually don't follow fast-track all the way through appeals. And you're talking about convicting people who've been charging 30, 40 lakhs in exam for the leak, for the papers they're leaking. You don't think they'll go appeal to High Court and Supreme Court? Nonsensical one-line, you know, one-tweet statements in response to an actual movement by students of our country. How, you know, how much of a coward can you be not to parliament today after what's happened today?
1: Yeah.
2: And as far as the statements are concerned, do you think this is the first time the Prime Minister
1: also
2: has made statements about NEET? October 2nd, 2023, the paper leak mafia will be held accountable and punished, he said. November 9, 2023, issues such as paper leaks, which right. worried the country's youth, have been dealt with very strictly. April 21, 2024, government has now begun taking action against the paper leak mafia. July 2nd, 2024, government is extremely right. serious about stopping paper leaks. So enough, enough talk. As the idiom goes, talk is cheap. And the fish rots from the head down. We
1: right.
2: need Mr.
1: Mohan Kumar Mangalam, I also want to show our viewers what is happening in that march. So if our team can help us get across to Kanika, who's covering that important march that's taking place. This is by opposition leaders. Today's an important day. It's almost... Kanika, over to you. You know, ye bataiye ki wahan pe ho kya raha hai. Okay, we'll try connecting with Kanika in just a bit. Remember, viewers, that we are in central Delhi. There are jammers everywhere. There's a problem connecting to our offices. And it is getting a little difficult to operate because, you know, there have been several protocols that have been put in place. Sanjay Jha, you know, before we get in those visuals, let me ask you this one question that has been going around since morning. It's becoming a narrative battle now. It's becoming a political flashpoint now. Do you fear that this will reduce itself to just being a political issue with, you know, very little action on ground in terms of policy?
0: Vasudha, let me tell you, it is very relevant and important that the suffering of the students becomes a political issue. Because these are solutions that need to be amplified. You know, what the Kokro Janata Party and Sonam and many other people and the activists are doing across the country is to actually mobilize support for a very genuine, legitimate suffering and cause. Now, the role of the Congress and the others, and you know, the Congress has its own frontal organizations as well, which are dedicated for the young. This is a time to reactivate all of it because it's a question of telling the government, are you accountable for the shenanigans, the malfeasance, and the incompetence you have demonstrated? You are playing with people's lives. You know, Vasudha, was something that
1: Sanjay Jha,
0: we don't talk about in this country.
1: You. Let's also... Yes, Sanjay Jha, we have some action on the ground here. I'm sorry to interrupt you. Kanika joins us again. Kanika, what is happening on ground? Because whatever we are seeing, witnessing right now is something that we saw day before yesterday as well. Ye bataiye ki abhi march kaise chal raha hai thoda. Hame ye bhi bataiye ki who are all participating in this march?
3: देखिए बिल्कुल इस वक्त जो है गृह मंत्री अमित शाह का ये घर है इसके बाहर तमाम जो दिल्ली पुलिस की तमाम जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे तैनात है दिल्ली पुलिस लगातार जो है ये अलर्ट कर रही है अनाउंसमेंट कर रही है कि 163 यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको इसके अलावा जो बस जिसमें राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद है उस बस में देखिए तस्वीर दिखाना चाहूंगी जब बसों में आपको राहुल गांधी फ्रंट में बैठे हैं उनके साथ जो है किसी भी गोपाल और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के नेता है वो यहाँ पे मौजूद है अमित शाह के घर के बाहर सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर रखी है दिल्ली पुलिस लगातार जो है ये अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ पर 163 लागू है किसी व्यक्ति को आने की आज़ादी नहीं है लेकिन देखिए बस जो है वो लगातार यहाँ तक पहुँच गई है और तमाम जो वर्कर्स है कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ पर इकट्ठा है चाहे और लगातार जो है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रिलेक्शन की डिमांड जो है वो की जा रही है लेकिन फिलहाल बहुत सारा एक्शन जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा ये बस है जिसमें राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल प्रियंका गांधी और तमाम जो ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार ये बस आगे बढ़ रही है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है देखिए किस तरह से प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कहा जा रहा है कि ये पूरा काफिला जो है वो गांधी स्मृति जाएगा और वहां पर बाहर उतर कर अंदर पैदल मार्च किया जाएगा लेकिन फिलहाल हमने कुछ दिन पहले यानी कि 3 दिन पहले देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रोटेस्ट किया था वो एक अनप्लान्ड अनइन्फॉर्म प्रोटेस्ट था लेकिन यहाँ पर प्लानिंग के तहत पूरा प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें तमाम अपने वॉकर्स को कांग्रेस पार्टी ने पहले ही बुला लिया, लेकिन देखिए किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता है वो अब आगे बढ़ रहे हैं गांधी स्मृति की तरफ, और लगातार यही मांग की जा रही है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन हो लिया जाए। लेकिन फिलहाल तीन लेयर में दिल्ली पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट रखा था, तीनों लेयर को तमाम कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने पार कर लिया है, आगे भी बैरिकेडिंग जो है वो लगी है, दिल्ली पुलिस जो है वो तैनात है, इसके अलावा जो है आरएएफ के लोग जो है वो तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पे तैनात है, लगातार रोका जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, नेता हैं, इंडिया गठबंधन सांसद जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीर दिखाना चाहूँगी मैं आपको, वो जो ऑरेंज कलर की बस है उसमें राहुल गांधी और पूरा ऑपोजिशन जो है वो एक साथ बैठा हुआ है, और इसीलिए तमाम जो वर्कर्स हैं ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, और यही प्रोटेस्ट जो है वो आगे लीड हो रहा है, तमाम जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार सरकार को लेकर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार पेपर लीक क्यों हो रहा है और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। यस सुधा,
1: राइट कनिका, ये बताइए कि इसके आगे प्लान क्या रहेगा, गांधी स्मृति जाने का जो प्लान इनका बना हुआ था वो कहाँ बना, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत यू नो डिफरेंट तरीके से काम कर रही है। परसों ऐसा हुआ था कि खड़गे जी के घर पे सबको बुलाया गया था और वहाँ से स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिया गया कि प्रधानमंत्री के घर मार्च करेंगे, और आज दे हैव डिसाइडेड टू गो टू गांधी स्मृति। सो ये डिसीजन, ये फैसला क्यों लिया गया और इसके आगे क्या करेंगे ये लोग?
3: देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पार्लियामेंट में आज सरकार की ओर से कहा गया कि हम चर्चा के लिए रेडी हैं, उसके बाद भी ऑपोजिशन ने कहा कि नहीं पहले आप इस्तीफा करवाइए फिर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद ऑल ऑफ सडन ये प्लान किया गया कि तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मैसेज किया गया, इंडिया ब्लॉक नेताओं को मैसेज किया गया कि आप राहुल गांधी के घर पर आइए, और इसके अलावा जो है जब राहुल गांधी के घर पर 6 बजे नेता पहुंचे तो उसके बाद 3 बसेस जो है वो पहले से वहां पे खड़ी थी, यानी कि ये कोई स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट नहीं है, कांग्रेस ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस प्रोटेस्ट को करने का प्लान किया था, यानी कि करीबन दोपहर के 3 बजे के आसपास ये प्लानिंग हो चुकी थी कि इस तरह का प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। 3 बसेस जो है वो यहाँ पे बुलाई गई थी, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उस बस में शिफ्ट किया गया, उस बस की भी तमाम जो नेता है वो आगे बढ़ रहे हैं, उसके अलावा कांग्रेस ने जब नेता वहाँ पहुँचना शुरू हुए तो अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSUI और IYC को भी ये सूचना दी कि वो लोग यहाँ पे आए, तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग थी। 3 दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको प्लान नहीं किया गया था, उसके बारे में जानकारी ना ही मीडिया के पास थी ना ही नेताओं के पास थी, लेकिन जो आज का ये प्रदर्शन है इसकी जानकारी जो है तमाम नेताओं के पास दी गई थी, और इसीलिए तमाम जो वर्कर्स है, देखिए किस तरह से आपको दिखाई देंगे, तमाम जो वर्कर्स है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बसेस जो है वो आगे बढ़ी हुई है, लगातार उसी बसेस में राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के MP हैं वो बैठे हुए हैं, और इसके अलावा जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ये कह रहे हैं कि हम पहले एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन मांगेंगे। प्रणव जहाँ मेरे साथ हैं, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि आप लोग पॉलिटिकल साइज करने का मुद्दा उठा रहे हैं, इस मुद्दे को
4: सरकार मुद्दा क्यों दे रही है? सर मुद्दा किसका है? मुद्दा तो बच्चों का है, राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है ये, और मुद्दा क्या है? बच्चों के भविष्य का है, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पूरे का पूरा एक जनरेशन जो है वो खराब हो गया, वो उसको मालूम नहीं कि उसके भविष्य में क्या है। आपने देखा होगा कि बच्चे अपने माँ पिताजी के साथ आने को मजबूर हैं, जिन्होंने जो प्रभावित नहीं, जिन्होंने परीक्षाएं नहीं भी दी वो भी शामिल हुए हैं इस प्रदर्शन में, क्यों? क्योंकि उनको चिंतित है अपने भविष्य को लेके।
3: आपको लग रहा है ये प्रोटेस्ट करने के बाद आप सरकार पे प्रेशर बना पाएंगे रिजर्वेशन के लिए?
4: हमारी कोशिश यही है कि सरकार को संवेदनशीलता जागेगी, मोदी जी का दिल पसीजेगा, हम उनके दरवाजे पर गए, विपक्ष के नेता, दोनों प्रतिपक्ष के नेता उनके दरवाजे, विपक्ष के सांसद गए, सभी नेता गए, पूर्व मंत्री गए, और बस छोटी सी गुहार है कि हमारी बात सुन लीजिए, बच्चों की बात सुनिए, उनके साथ दुर्व्यवहार हिंसा बंद करिए।
3: प्रणव झा है कांग्रेस पार्टी के नेता है, उसके अलावा जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिस में अटैच सेक्रेटरी भी है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो मांग वो लोग कर रहे हैं उस मांग को हम पूरा करवाने में पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके जरिए वो सरकार को घेर सकती है, और इसीलिए लगातार जो है वसुधा कांग्रेस जो है वो अटैकिंग प्रोटेस्ट करके दबाव बनाया जा सके, और यही दबाव बनाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। देखिए बस

0: क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आर्टिकल मसाला।
3: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
4: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
5: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
6: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
9: देश का टायर जेके टायर।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
11: We are over, Jimmy.
12: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
13: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
14: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम ही हो भारत का स्वाभिमान।
15: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
16: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
17: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस। व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी। योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट। Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
18: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, R pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
19: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
3: This location from Tel Aviv
19: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
8: Prime Minister Narendra Modi.

0: has been done.
1: Hmm.
0: Now Mr. Anand can set up another tent. And then he can do that, or
2: your tent is only to demand.
1: But यही है ना agenda BJP का, तो NCRA से डर रहे क्या? Okay, let's
0: just as Anand said, I said that I demand the resignation of all.
1: Okay, and what is lady? And what is the hidden agenda?
2: डर के मारे बोल रहे हो?
0: No, डर किसे?
2: केजरीवाल से क्यों डर रहे थे भाई?
0: Why would I be afraid of anyone? बोलो ना. विजेता is an independent guy. विजेता is not afraid of anyone.
2: Answer the question.
1: बताइए.
0: Even after this authority, ask the people.
2: This lady. Just 10 seconds. This lady, wonderful lady, was following CJP.
1: Hmm.
2: Do you want the resignation of Harjot Singh and Bangarappa?
3: Yes.
2: There you go.
0: So I am also saying it. One
2: second. Do you think, is there any bite of CJP, any leader, including Vijeta,
0: no,
2: that demands the resignation of Bangarappa?
1: Sir, yes, my problem is there it is, honestly, it is not second. About CJP. It is about the issue of education.
0: Yes, exactly.
1: And as a government, as a student, we expect the government to start from the top.
2: Yes.
1: We expect the leadership, we expect the current government will start from the
2: current
1: top. And
2: Karnataka
1: that will
2: government.
0: It is
1: any current
2: government.
1: Current
2: central government.
1: Any current government.
2: Why are you sparing some people? That's the only simple question.
0: Anand, people are tired of this BJP Congress.
1: Just a second.
0: People, no, people are tired of me. People are tired of this rhetoric.
1: Ma'am, tell me.
0: Let things get to somewhere.
1: I am Twinkle and I graduated MBA from IIM Raipur and did my bachelor's in economics from Symbiosis Pune.
3: Okay.
4: So, you know, I think what Twinkle is trying to say, what she is saying, Harshvardhan ji, ki सरकार केंद्र सरकार से शुरुआत कीजिए ना पहले धर्मेंद्र प्रधान लेट हिम सेट एन एग्जाम्पल एंड से आई टेक अकाउंटेबिलिटी एंड टुमारो देन ट्विंकल विल गो बैक टू जंतर मंतर एंड से कि हरजोत जी अब आप भी लीजिए अकाउंटेबिलिटी क्या ये मांगना गलत है
0: ट्विंकल आज कह रही है
4: शुरुआत केंद्र से कीजिए देन द डोमिनोस विल स्टार्ट
1: फॉलोइंग
4: ओके ओके one question at a time
0: I'm saying again let all three resign what more do you want to hear
4: one at a time please just a second Harshvardhan ji
0: Dharmendra
4: Pradhan shuruaat kare Harshvardhan ji
5: ट्विंकल आपने नाम बताया ना बिल्कुल जो ट्विंकल कह रही है मैं उनके साथ खड़ा हूँ
1: डेफिनेटली थैंक यू सर
5: इनके ऊपर सवाल नहीं है ना सवाल उस मूवमेंट पर है जो कॉकरोचेज के नाम पर वहां इकट्ठा किया गया
1: exactly.
5: जो तंबू लगाया गया है उस पर सवाल है
1: सर
5: और एक एक मिनट मैंने आपकी बात सुनी लेट मी कंप्लीट जब इस मूवमेंट की शुरुआत हुई तो सीजीआई की एक टिप्पणी एक कमेंट ऐसा था जिस पर लोगों को लगा कि ये यूथ के ऊपर है उन्होंने तो क्लैरिफाई कर दिया तो ये नीट पर गए अगर नीट पर गए तो रीट पर क्यों नहीं गए अगर रीट पर गए तो पंजाब पर क्यों नहीं गए अगर पंजाब पर गए तो ये कहीं नहीं गए क्योंकि ये मूवमेंट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का मुखौटा आंदोलन है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की साख पूरी तरह से दिल्ली में खत्म थी उनको समझ में नहीं आ रहा था दिल्ली कैसे आए मुंह छिपाकर पंजाब में थे ये रास्ता अपना बच्चों को बदलाया गया
1: I'll clarify.
3: I think a very important point is now being raised by that lady.
0: Twinkle said something. That paper leaks must be stopped.
4: Just a second. Yeah, Twinkle said something.
6: Sir, as you mentioned, my name is Sanskriti Singh. I am a political science graduate and I am pursuing political science in my master's. Sir, अभी आपने ये बोला कि आप उस स्टेज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते थे. Sir, ये पूरा issue student से हट के पॉलिटिसाइज हो चुका है. No one is talking about the student issues. कहाँ पे आपने बात करी? एक भी आपने बात करी कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दे देना चाहिए. सर, पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात आपने कहाँ करी थी? पहले दिन से आपने ये बात नहीं. सर, मैंने एक बात नहीं देखी. सर, पंजाब सर इतने दिन से प्रोटेस्ट हुआ, एक दिन भी मैंने ये नहीं देखा कि पंजाब में जब हुआ किसी ने एक बाइट दी हो. किसी ने नहीं बोला उस प्रोटेस्ट में बैठे हुए कि पंजाब में भी पेपर लिखे हुए हैं, महाराष्ट्र टेट के पेपर लिखे हुए हैं, सिर्फ नीट के नहीं.
5: पंजाब पुलिस ने बच्चों पर लाठी चार्ज किया. पंजाब
6: किसी ने बात नहीं करी. सर, ये बात सिर्फ नीट की
0: नहीं,
6: किसी ने सबने साइडलाइन कर दिया.
2: नेता बनना तो बनो ना
6: जी.
2: किसने रोका है?
6: नेता बनने का प्लेटफॉर्म बन गया.
2: बना था दैया बन गया.
0: न्यूज़ 18 इंटरव्यू यू कैन चेक इट.
4: I want to ask a direct question to Tehseen Poonawala also. In addition to the examples being given here of how no mention was made of Punjab or Karnataka, the other issue also is ki aap kabhi kisi solution ki baat nahi kar rahe. This is, you know what happens is, just second, the question is to Tehseen.

0: What happens is, sir, I'm gaye. I'll be very honest with you. Every time, and now I have no hesitation in saying this. And I will ask that question. I will ask that question to Tehseen, but I want to make an unequivocal statement. Since the beginning of this agitation, everyone on that stage has said mainstream media is not covering us. When we went there, my young colleagues went there. They were heckled. They were harassed. They were called names. They were pushed around. When you keep blaming us for not coming there, sir, we went there in good faith. We stayed there despite you calling us names. But you then went ahead. I'm not saying you in particular or well-meaning students. Some people who were there, they harassed my colleagues, sir. And I will not make my colleagues cannon fodder. Just a second. But that is for Tehseen Poonawalla. Where are the solutions? Just a second. Where are the solutions? Tehseen.
1: I'll give you the solutions. But first of all, thank you guys for coming here. It really means a lot. You guys here, irrespective of which side of the fence you all are, we are all here for Team India. Now the point is, I'll give you the solution. I don't know if you all will carry the solution. Number one, ask Padmaja, ask this question. Not you, journalists. Why the F do Netas' kids study abroad and in private schools? Why not in government schools? They are running the system. Why do Babu's kids study abroad and in private schools, not in government schools, if they are running the system? That is the question that it starts from. Number two, why does this great country of ours, where we have professors like Anand, I really respect him, in JNU, and he's actually a very good professor, he's doing some phenomenal work in a great government institution, the JNU, why do we have coaching classes? Where did this start from? From the coaching classes. Who was Joshi? Who were those people? They were all scamsters associated with coaching classes. Why do each one of you and your families have to send you to coaching classes? It starts from there. Whether this is about Punjab, whether this is about Karnataka, whether it is about Dharmendra Pradhan, the fact is all three names that he took are Nepo kids, whose kids studied abroad. By the way, the kids are studying abroad. You guys are left to rot here. That is where the problem is. Bro, one second. Just give me 10 seconds.
2: And let me, why can every college not be wonderful like IIT and IIM?
3: Sir?
2: Why are the all the kids, they are made to fight just for a few seats?
3: No.
2: Why can every college not be
0: amazing? Vijayta ji, bachchon ko to baat karne dijiye. Ye jantar mantar banta ja raha hai, jahan par sare neta hi bol rahe hain. Bachche wahan bas mook darshak ban karke sunte rehte hain ki manch se aap log kya aa karke chale jate hain. Let them answer. Yes.
3: Sir, sunne ki kshamta rakhi. Theek hai, pehli baat ye. Dusri baat ye, I am an advocate. I work in Delhi High Court and Supreme Court.
0: What's your name?
3: My name is Advocate Aditya Sharma. To add to that, I was in jantar mantar, main 3-4 बारी गया भी क्योंकि पास में ही है कोर्ट, सारी जगह पास में ही है, तो मैं जाता था, मैं जरूर देखता था क्या क्या चल रहा होता था. जिस दिन जो 20 तारीख की बात थी और उसके पहले भी जो आप सब बातें कर रहे हैं, ये अस्पष्ट है कि ये गवर्नमेंट इशू नहीं, ये गवर्नेंस इशू है. राइट, हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एजुकेशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. यहाँ पे हम गवर्नमेंट्स, डिफरेंट गवर्नमेंट्स की बात कर सकते हैं, आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन एट द एंड स्ट्रक्चरली चेंजेस क्या क्या ज़रूरी हैं. NTA को क्यों नहीं स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया? राइट, एक वो सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट है, वो होना चाहिए था, उससे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई कम टू दी प्रोटेस्ट, सर उस दिन कोई लीडरशिप नहीं थी सर हमें बताने के लिए. 20 तारीख को मैं वहाँ था, बच्चे भाग रहे हैं, पता नहीं, इतनी भीड़, अनप्रेसिडेंटेड भीड़ थी. पहली बात, इतने लोग, मैं तो 24 साल का हूँ, मैं दिल्ली ही रहा हूँ. राइट, यहाँ पे सारी मूवमेंट्स यहीं उजागर होती हैं, लेकिन हमने ये देखा कि इतने बच्चे आज तक नहीं आए यार, कहाँ से आएंगे? और फिर मेट्रो बंद होना, और जो सारी हवा थी, डर का जो माहौल था पूरा, वो दिख रहा था. बट एट दी एंड सारे बच्चे आए, रिस्पेक्ट टू दैट, अपनी आवाज़ उठाने आए. बट एट दी एंड कब जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये किसी को पता ही नहीं चला. राइट, फिर अगेन पुलिस वालों ने बहुत बर्बरता करी. देर वॉज नो बैचेज, नथिंग, क्योंकि मैंने तो आंखों देखी देखा. राइट, सो दैट शुड नॉट हैपन. DK बारसू वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल का एक केस है जिसमें गाइडलाइंस दी गई है कि पुलिस वाले को किस तरीके से बिहेव करना है. वो बिहेवियर नहीं था और वो गलत था, मैं कहता हूँ. कल दिल्ली कोर्ट में इस बारे में बात भी हुई है. राइट, टू ऐड टू दैट, गवर्नेंस रिफॉर्म्स हम किस तरीके से लाएंगे? जो रीनीट हुआ, मैम, रीनीट में भी एक क्वेश्चन गलत था. मेरी छोटी बहन ने नीट दिया, रीनीट दिया, तो मैं वो देख रहा था कि वो किस फेज में थी. राइट, रीनीट में भी NTA ने एक क्वेश्चन गलत डाला. राइट, सर आप बायोकेमिस्ट्री के हैं, मैंने पूरा आपके काफी टाइम से देख रहा हूं. बट एट द एंड अगर उस बॉडी से ही जो रीनीट ले रहा है वो भी क्वेश्चन गलत डाल रहा है, तो यार वो तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है.
0: व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट हाउ डू वी सॉल्व दिस?
3: स्टैट्यूटरी बॉडी, लाइक राइट प्लस द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज विच आर देर इन द एनटी आर वेरी लेस राइट अगर आप सीयूटी ले रहे हो यूजी पीजी सारे बीएचयू के एग्जाम सारे एक साथ ले रहे हो तो कम से कम लोग तो बढ़ाओ
0: टेल मी समथिंग यू हैव गॉट सच क्लियर हेडेड आइडियाज अबाउट दिस डिड यू फाइंड एनी ऑफ दिस इन द कन्वर्सेशन एट जंतर मंतर व्हेन यू वेंट देयर इज एनी ऑफ दैट बीइंग
3: द क्वेश्चन इज टू मी गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल
0: चीफ
1: जस्टिस पद्मजा
0: प्लीज
1: तुम सब
3: बोल देना

0: एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट जंतर मंतर पे ही एजिटेशन काफी है?
1: वोट शुड गो, व्हाई शुड बी ईदर और?
2: हाउ मेनी?
1: नो नो, वन सेकंड, दिस बिजनेस,
2: धर्मेंद्र प्रधान एंड एवरीवन मस्ट
0: गो,
1: ऑल थ्री, दिस बिजनेस ऑफ ओनली वन स्टॉप हैज टू स्टॉप. दिस कंट्री वाज बिल्ट ऑन 3S: सड़क, संसद एंड सुप्रीम कोर्ट. एवरीवेयर देयर शुड बी अ डिस्कशन. व्हाई शुड इट बी ईदर और? व्हाई शुड इट बी ईदर और? एंड वन मोर थिंग ब्रो, विद एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट टू यू, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट एवरी मर्डर इज रॉन्ग. There is no doubt. But these kids felt out here that this was wrong because no other nut job said that we will use the Indian Air Force to do papers. The Indian Air Force was used.
2: And Ben,
1: let's be clear. One second. The Indian Air Force, which smashed Pakistan, was used as courier service. That is humiliating to each one of us.
0: Okay.
1: That is
0: Harsh
1: not
0: Vardhan
1: how it works.
0: Please allow me. 30 seconds more.
1: The idea of stopping paper leaks was not the solution he gave, that make it a registered organization, get accountability, put it on a blockchain, let's have a GPS tracking, let's have ziplocks that open with GPS, where you can use this. You are in AI, where you could use technology. You know what his idea was? Let's ban Telegram, because sure, if you leak it on Telegram, you can't send it on WhatsApp or Signal. That was the problem. You guys are laughing. Therefore, somebody who's incompetent to be an education minister must go. And I'm talking about the babus.
0: Aur ye kaun faisla karega ki kaun competent hai education minister ke liye?
2: The babus.
0: Kaun faisla karega? Harshvardhan ji.
2: 22 people died by suicide due to paper leak.
1: And once again, 22 people died.
0: Just
1: one second. 22 people died. The principal, the head of NTA, is principal secretary Chhattisgarh today. What are you going to go and tell the parents that the punishment given by the government is principal secretary Chhattisgarh, the third most highest post? End this. What about it? Please kick out Madhu. What's
0: Bangarappa?
1: Please kick him out. I think he should be kicked out. You must ask Rahul Gandhi questions. Why the hell aren't you doing it? But let's ask questions of everybody. But don't say why one movement is not happening. Ask the parents why they're not protesting.
0: Okay, Harshvardhan ji.
3: लेकिन प्रियंका गांधी नहीं कह सकती है. प्रियंका गांधी ने कहा, अशोक गहलोत जी ने बड़ी कोशिश की.
1: आई थिंक अशोक
3: गहलोत
1: गांधी
3: ने कहा बहुत मुश्किल है पेपर लीक रोकना, बहुत मुश्किल है. अशोक गहलोत जी बहुत कोशिश करके नहीं रोक पाए. राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर कहता है, अच्छा पेपर लीक हो गया तो मैं क्या करूं, उसको तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बनाया हुआ.
4: सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन कर पाए. कितने यूथ हैं जो उसके लिए खड़े हुए?
1: ऑल स्टैंडिंग फॉर इट.
3: जो
1: डोंट यू वांट व्यवस्था?
3: तहसीन
1: प्लीज. डोंट यू वांट दिस? सब चाहिए
3: तहसीन. ऐसे नहीं करते.
1: क्यों कह रहे आप?
3: आप फैक्ट आने दीजिए. ये जो एनटीए बनी है क्योंकि मेडिकल के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा घपले, घोटाले, सीटें बिकना, इसके लिए एनटीए बनी. एनटीए में ये गड़बड़ाई तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा. और मैं फिर कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र इसलिए नहीं देना चाहिए. आपके बीच में नहीं बोला, इशू है एग्जाम कैसे ठीक से होंगे, पेपर लीक कैसे नहीं होगा, एक बच्चा इतनी तैयारी करके एक बार पेपर लीक आए,
1: प्रमोशन है या पनिशमेंट है?
3: फिर मैं कह रहा हूं,
1: प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल, इज इट पनिशमेंट और प्रिंसिपल प्रमोशन? आस्क देम.
0: Transfer is not a punishment. This into a fish market. Not good.
1: No, but this is not fair.
0: Not good. Let him finish. I will give you a chance.
3: इस देश का नौजवान कॉकरोच नहीं है. एक कमेंट की वजह से कोई एक मीम पेज बन जाए, कोई हो सकता है, उनके मुद्दे कुछ ठीक हो सकते हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर देश के यूथ को उसी ब्रैकेट में करना, ये इससे अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं होगा. और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का यूथ, इस देश को जो डेमोक्रेसी है, जो वाइब्रेंसी है, उसने बरकरार रखी है. वरना कोई भी नेता तानाशाह हो जाता, इंदिरा गांधी की बात किसी ने हिम्मत नहीं की. और ये मूवमेंट सीजेपी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल स्पॉन्सर्ड, प्लांड, मैनेज्ड.
0: ओके, दिस यंग लेडी हियर, लेट मी गिव यू अ स्मॉल स्टैटिस्टिक. टुडे यू आर सेइंग तहसीन दैट अशोक गहलोत, यू नो दैट मधु बंगारप्पा शुड गो. डू यू नो दैट 14 आउट ऑफ 26 पेपर लीक्स दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट हैपेंड अंडर द वॉच ऑफ अशोक गहलोत?
1: यस इट डिड,
0: बट यू नेवर ब्रॉट दिस अप.
1: आई डिड
0: नीदर बिफोर टुडे, नीदर बिफोर दिस प्लेटफॉर्म, नीदर
1: जस्ट वन सेकंड.
4: प्रियंका डिड.
0: नोबडी.
1: वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड. सिंस यू आस्क्ड मी, आई
0: एंड जस्ट बाय द वे,
1: आई मस्ट बी अलाउड टू आंसर.
0: बाय द वे, लेट मी फिनिश दिस पॉइंट, बिकॉज़ दिस विल बी टेकन आउट out of context. Yes, paper leaks, those 14 have happened on his watch. And yes, some changes have been made. Laws have been brought in various states to try and combat paper leaks. But it is not a foolproof, bulletproof method despite all of those changes. And which is why we should have this conversation.
1: One second. Just one second. No. One second.
3: Either way, Rahul Gandhi ko.
1: Don't allow me to respond.
0: Only take 10 seconds.
1: Only 10 seconds. I think I don't speak either for the Congress or I don't care about it. My limited point is, if the BJP thinks that Congress has done something wrong, nobody stopped the BJP from protesting. They must protest. It is their duty to protest. Don't come here and do whataboutry on these kids and call them up. These are not our kids.
5: Why aren't you? Why are the apolitical people not protesting? So why is apolitical?
1: Did the apolitical people go and say, "Apki bar hamari sarkar"? Did they go and say?
0: What do you mean? Hamari apolitical people.
1: Say them for votes.
5: Karnataka ka puchho. Karnataka ke bachcho ke liye rote kyun nahi ho?
1: And I think
5: Punjab ke bachche nahi hai bachche.
1: I think bachche hai.
5: Punjab ke bachche nahi hai. Unke liye kyun nahi rote?
0: One at a time.
5: Bhaiya kyun bane hue Punjab ke bachcho ke liye?
0: One at a time.
5: Wo bachche nahi hai.
3: Sare bachche.
5: Sharam nahi aa rahi.
3: Ek second. Sare bachchon ke liye parliament mein debate kara lo.
5: Sare bachchon ke
3: liye parliament mein debate kara lo.
0: Let me come in here and say one thing. You know, when you say...
5: हाँ और से भी कमाई हो सकती है
1: क्या हो गया अगर वो बारहवीं पास है यार तो
5: मैं क्या रहा हूँ
1: तो क्या हुआ बारहवीं पास है बेईमान नहीं है
0: ये
1: तो है
0: This young lady will speak, sir please.
1: उसमें कोई गलत
0: नहीं This young lady will speak, but before that, I want to take 10 seconds to say when it is said. Just a second. When you say कि सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए विजेता one second. When you say that you know all of these should be discussed and BJP should do it, but you started by saying that we are here for Team India. So that is why you should speak for all of India, including what happened under Ashok Gehlot, because ये Team India होता है. अब बोलिए अपना नाम बताइए. बताइए.
6: Myself Arpita Menaria. I am an assistant professor. I am an assistant professor and a research scholar. अभी हम लोग सभी डिबेट कर रहे हैं छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं उनके अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं क्या हम में से कोई देश की बात कर रहा है ये वही छात्र हैं जो इस देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं सड़कें तोड़ रहे हैं गाड़ियां फोड़ रहे हैं हमारे जो पुलिस है जो कानून को रक्षक जो वहाँ खड़े हो उनकी रक्षा के लिए भी खड़े हैं वहाँ पर ताकि प्रोटेस्ट में कहीं उनकी जान हानि को कोई नुकसान ना पहुँचे उन लोगों को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है हर राजनीतिक दल से कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचा है वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम लोग छात्रों के साथ खड़े इनके अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं जब वो छात्र लाठियां

0: तो सर ने अभी एक बात
1: भगत सिंह वॉज अ लेफ्टिस्ट
0: लिसन फर्स्ट
1: भगत सिंह
0: सर ने बोला कि बीजेपी के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करना चाहिए था व्हिच इज वेरी वैलिड बिकॉज इट इज फॉर द नेशन टू द नेशन बट द थिंग द बेसिक क्वेश्चन व्हिच राइजेस हियर इज कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट से लेके आप पीएम रेजिग्नेशन तक कैसे पहुंचे और अगर आप पहुंचे तो क्या एफसीआरए से डर रहे हैं आप इज इट द हिडन एजेंडा यू आर टॉकिंग अबाउट
1: लिसन इफ धर्मेंद्र प्रधान डिजर्ट रिजाइन
0: लेट हिम आंसर
1: इफ धर्मेंद्र प्रधान
2: रिजाइन जो है ना वो वापस लिया है बिकॉज उनको पता चला कि योगी आने वाले हैं इसलिए वो वी डोंट
0: ओके लेट हिम आंसर
2: मोदी को रहने दो
0: विजेता
1: इफ धर्मेंद्र प्रधान डजंट रिजाइन देन द प्राइम मिनिस्टर हैज टू सैक हिम It's simple.
0: I think what this lady is referring to is that the day that Sonam Gangaji was picked up from Jantar Mantar,
1: the police hit their nameplate, there were goons along with the police.
0: Abhijit Dipke, when he started his hunger strike, just a second, Vijeta.
1: Who beat the police?
0: On the day,
2: Anand, just a second.
1: Why did it come to this? Who beat it? Why did renowned scientists have to do hunger strike?
2: Who beat the police?
1: Arre,
2: answer karo, don't be a loudspeaker.
0: Okay, hold on a second.
1: You are not asking this question.
2: Achha, ye toh hunger strike mein tha
1: hi nahi. Why do we have to do a march?
2: Jo hunger strike.
1: Why are they not listening? Why are they so arrogant? Mr. PM Modi, why is he so arrogant? He is distributing melody there. He is not listening to the students.
0: Vijeta, you know, I think the very clear...
1: Your people,
0: you have sidestepped, you have sidestepped...
1: Stop this arrogance.
0: You have sidestepped a very important point that this young lady raised, that are there, yes, there are a group of genuine, well-meaning, law-abiding students who came there in good faith. And we've got people here who were there at Jantar Mantar. But... have some other vested interests also joined in and one word that she mentioned I think is hanging in the air and nobody is addressing it FCRA
1: exactly.
0: That this law is coming in and suddenly people are worried
1: what to do with CJP
3: we have
1: the CJP is just no like the RSS it is
2: He's been sacked
0: okay
1: CJP right now is like RSS it is unregistered So what are you even talking about? It's just a
0: I mean, I don't know if you are helping the cause by calling CJP like the RSS. I really want to give a voice to this young man.
1: All these conspiracy theories, you are trying to put...
4: Sir, my name is Siddhant. I'm pursuing my PGDM from James Kalka ji. मैं एक student के perspective से इतना बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी भी competitive exam की तैयारी करते हैं, सिर्फ वहाँ पर हमारा hard work नहीं रहता, हमारे parents के भी पूरे effort रहते हैं इंडिया में, है ना? कई बार कई घरों में ये भी होता है कि उनको पैसे लेने पड़ते हैं उधारी पे, कहीं पर ज्वेलरी रखवानी पड़ती है और कहीं एसेट बेचने पड़ते हैं तो अगर जब नीट पेपर जैसे लीक का ये चीज होगी तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कंपनसेट करने चाहिए और रेजिग्नेशन
1: हैव मेड दिस डिमांड
4: यस वन मोर थिंग पर रेजिग्नेशन इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है सर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1956 में रेलवे मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया क्यों और एक ओवर अ ट्रेन एक्सीडेंट जो कि उनका डायरेक्टली फॉल्ट भी नहीं था उन्होंने बोला कि उनकी मिनिस्ट्री के अंदर ये फॉल्ट हुआ है तो इसलिए उनको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन्होंने रिजाइन कर दिया फॉर द ईज ऑफ पीपल्स माइंड तो यहाँ पर रेजिग्नेशन इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है It just should be a person's responsibility.
0: जहाँ पे भी कुछ लीक हुआ है वहाँ पे accountability होनी
4: Yes, ma'am.
0: Okay. I think we're out of time. I think the point of this discussion was the point of this discussion. Just a second. The point of this discussion was to show that a dialogue can take place when people want that dialogue to happen. If you can have young people sit here. And have such a clear-headed idea about what is needed to show the way ahead. Why can't we have that dialogue, that debate, not on the streets, but in the Parliament of India? Because remember, that is where the policy is going to be formed. Hold your leaders accountable. Start the conversation. For having joined us, thank you very much. It's been a pleasure. A round of applause for our wonderful audience and our guests. Thank you.

0: chair won't be safe.
1: You know, there are pictures that have come out, Abhijit, of Dharmendra Pradhan from 30 years ago protesting against paper leaks in Orissa, and those pictures of him getting injured there. What did you think when you saw those pictures? The same minister all those years ago protesting against paper leaks.
0: I think then he should join us at Jantar Mantar.
1: If Dharmendra Pradhan decides to come here, would you welcome him?
0: Of course, we would welcome him. We will also prepare his resignation letter. All he will need to do is sign it.
1: Okay. Thanks, Abhijit. Abhijit Dipke, who was apparently unwell, so he missed most of today, and he's here finally once again. There is a person looking like Gandhiji who has also appeared, and I saw a meme earlier on the internet today saying that if even Gandhi has come here, then you know that these people are here are serious. But the energy is only rising here at Jantar Mantar, and the crowds that both Mehbooba Mufti and Abhijit Dipke were referring to are these crowds. These are the people that they're actually talking about. So you can choose to dismiss it. You can say these are not real crowds and this is not organic. But in speech after speech that's going on stage, and the reactions from the people off stage is not something that you can puppeteer. At a time when people are cynical, people wonder about stage-managed events, etc., I'll let you hear it first. Last night on India Matters, a young student who has taken NEET multiple times has become one of our most viewed segments all year. Harsh Dubey is a student who's taken NEET. And yesterday, you've seen it on the show because it's got millions of views and gone completely viral. Harsh, aap aa gaye ho aaj hamare saath is protest mein. Kya kehna chahenge? What do you think of the protest here? You raised the issue of reservation yesterday, which everybody is now talking about.
2: देखो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी माँ बाप के चार बच्चे हैं, अगर उसके दो बच्चे मर गए तो वो क्या चाहेगा कि मेरे दो बच्चे सुरक्षित रहें। हर आदमी किस बात पे बात कर रहा है कि 20 बच्चों के साथ न्याय हो, लेकिन जो आज जिंदा बच गया उनके साथ न्याय की किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। जो जिंदा बच गया उसको भी तो न्याय दिलाओ ना। आप गवर्नमेंट के पास कितनी सीटें हैं कि हमने 10,000 सीटें बढ़ाई, लेकिन गवर्नमेंट सीटें कितनी बढ़ाई? सिर्फ 2,000। आपने सिर्फ 5% गवर्नमेंट सीटें इंक्रीज करी और आप कह रहे हैं मैंने 10,000 सीटें बढ़ाई हैं। वो बाकी तो 10,000 सीटों पे 25 लाख पर ईयर फीस है। 25 लाख देने की मेरी औकात नहीं है, मैं 25 लाख कैसे दे पाऊंगा? आप कह रहे हैं कि 20 बच्चों के साथ न्याय करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, मुझे क्या फायदा होगा इससे? मेरा क्या होगा? मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या? मेरी सीट जो जा रही है मुझे मिल जाएगी क्या? धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे दे, मोदी इस्तीफा दे दे, ट्रंप दे दे, क्या मुझे सीट मिल जाएगी? मैं मर रहा हूँ, ये मर चुके हैं, उनको सिर्फ न्याय दिलाने की बात चली है। जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे न्याय दिलाने के लिए बैठ जाएंगे धरने पे? ये मेरे दिमाग में तब आता है क्योंकि मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ चुके हैं। जब लाख बच्चों के दिमाग में सुसाइड का थॉट आता है तब एक बच्चा कर पाता है उसको अटेम्प्ट, लेकिन इस चीज को कोई नहीं देख रहा है। इस चीज को कौन देख रहा है? सिर्फ क्या देख रहे हैं कि मोदी इस्तीफा दो, धन में क्यों दे इस्तीफा? उसका रीजन बताएं आप लोग बैठ के यहाँ। रीजन ये है कि वहां पर सीटें नहीं है। रीजन ये है कि जो बच्चे मरे हैं वो इसलिए मरे हैं क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते दिन रात और क्लास के टॉपर होते हैं, पूरी लाइफ टॉप रहते हैं अपने क्लास में, लेकिन आज जो बच्चे एसएससी में चले गए उनके पास सैकड़ों ऑप्शन है लेकिन हमारे पास सिर्फ एक नीट। क्या कुछ ऐसे एग्जाम नहीं होने चाहिए जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ का सिलेबस हो? सारे एग्जाम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उनमें सिर्फ नीट छोड़ दे तो किसी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं आता है? क्या कुछ हमारे पास और ऑप्शन नहीं होने चाहिए?
1: क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट तैयार है रिजर्वेशंस और जो मुद्दे आपने उठाए अभी उसको लेकर चर्चा करे, डिसीजन ले रिजर्वेशन को लेकर?
2: सब लोग कोई चर्चा कर कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये चिल्लाने से क्या ये चर्चा हो रही है? क्या इस पर चर्चा करो कि भाई क्यों इतना सारा है? हर स्टेट को, हर कॉलेज को आप रिजर्व कर रखी है क्यों? जिसके पास मर्सिडीज है वो गरीब है और मेरे पापा किसान है, मैं अमीर हूँ। मेरे पापा खेती में काम कर

0: कहते हैं मैं अमीर हूँ, जिसके पास मर्सिडीज अगर उसके आगे 80 लिख गया तो वो गरीब है। इस बात पर कौन बात कर रहा है यहाँ? मैं आधे घंटे से आया हूँ, सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया
1: जो बदतमीजी
0: क्यों हो रही है,
1: क्यों हो रही है,
0: गलत काम कर रही है, यही तो गलत काम कर रहे हैं।
1: सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम?
0: ये इन सभी पॉइंट्स को उठाया जाए, गलत मुद्दों, हमें जो बच्चे बच गए हैं, जिन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए कम से कम उन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। उन बच्चों के न्याय की मांग कौन कर रहा है?
2: कल के वीडियो के बाद हर्ष आपको बहुत सपोर्ट मिला है, आपने जो बोला है वो सेगमेंट पूरा का पूरा अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स वायरल हो चुका है एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म से। उसके बाद क्या क्या कॉन्वर्सेशन शुरू हुए हैं, क्या लोग आपके पास आ रहे हैं बोल रहे हैं कि इसको लेकर एक मोर्चा खड़ा कर दो, इसको लेकर प्रोटेस्ट करो?
0: हाँ, लोग कह रहे कि भाई आप इसको लेकर प्रोटेस्ट करो, रियल मुद्दों पर बात करें, हम हमारे पास सारे रियल मुद्दे होने चाहिए।
2: लेकिन ये भी एक मुद्दा है, ये आप नहीं मानते जो यहाँ पे हो रहा है?
0: हाँ बिल्कुल, रिजाइन दे, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर एक बाप के दो बच्चे मर गए तो वो क्या चाहेगा, मेरे दो बच्चे सुरक्षित बचे रहे? वो ये नहीं चाहेगा कि इन दो बच्चों के पीछे पूरी जान फूंक देगा, वो चाहेगा मेरे दो बच्चे बच गए हैं, पहले इनको देखूंगा मैं। उस पर बात करो, आप पॉइंट्स उठाओ। भाई अभी कौन आया था, कोई मुख्यमंत्री आई थी? भाई मुझे बोलने का मौका दो, प्रॉब्लम्स मेरी हैं, मुख्यमंत्री से मुझे क्या मतलब है, मोदी से मुझे क्या मतलब है, क्या मतलब है मुझे?
2: लोग,
0: मुझे
2: जो लोग
0: दिलाओ
2: हर्ष, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं इस मुद्दे को लेकर, उनका कहना है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो भी है, उनमें हिम्मत नहीं है इस मुद्दे को उठाकर थोड़ा डिसीजन मेकिंग करें।
0: प्रॉब्लम ये है ना गवर्नमेंट,
2: वो कहते हैं ये, क्या आप अग्री करते हैं उसको लेकर?
0: हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है प्रॉब्लम्स क्या है रियल।
2: उनको तो पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट को कैसे पता नहीं होगा?
0: तो आप सीटी डबल करो, कैसे कर सकते हैं? सुनो, क्या एक बच्चा जो आज 4 साल बाद कॉलेज से निकलेगा कि नाइट में शिफ्ट में ड्यूटी करेगा, नाइट में भी ड्यूटी करेगा, तो क्या वो नाइट शिफ्ट के ड्यूटी में पढ़ नहीं सकता है? सारे कॉलेज अगर 2 शिफ्ट में कर दी जाएगा, डायरेक्ट डबल सीट हो गई गवर्नमेंट की, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। सिर्फ हॉस्टल बनवाने उसी क्लास में, उसी बेंच में, उसी लाइब्रेरी में, उसी बॉडी पे, वही बच्चा सुबह प्रैक्टिस कर रहा है, वही बच्चा शाम को कर रहा है, क्या डबल सीटें हो जाएंगी तुरंत? जो बच्चा आज के 4 साल बाद 24 घंटे की ड्यूटी देगा, 24 घंटे हॉस्पिटल में काम कर लेगा, वो क्या 4 साल पहले अपनी MBBS डिग्री कंप्लीट करने के लिए दिन और रात में नहीं पढ़ाई कर पाएगा?
2: तो आप क्या बोलेंगे जो डिसीजन मेकर्स हैं अभी, उनका ध्यान अभी जंतर मंतर पर है, जहां पर
0: इसीलिए तो जंतर मंतर
2: धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा 2 को लेकर वो है डोमिनेंट नारा यहाँ पर, नीट पेपर लीक को लेकर। आप एक नीट स्टूडेंट है, तो ये जो आप जो रेज कर रहे हैं वो मुद्दा, वो सामने कैसे आएगा? नहीं, आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, गवर्नमेंट को तो बिल्कुल पता है कि ये क्या है, ऑपोजिशन को भी पता है कि ये मुद्दा क्या है, ये तो सालों से पता है कि ये एग्जैक्टली रिजर्वेशन का मुद्दा क्या है, वो नहीं उठाएंगे तो आप क्या करेंगे फिर?
0: तो मुझे भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, मैं तभी साथ दूंगा जब रियल मुद्दों पर बात होगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा है कि वो उसका बहुत छोटा पॉइंट है, हम इसको सबसे बड़ा पॉइंट बना रहे हैं और रियल मुद्दों को छोटा बना रहे हैं।
3: रियल मुद्दा है क्या?
0: रियल मुद्दा ये है कि बच्चों को सीटें मिले, गवर्नमेंट की डबल सीटें, बच्चों की रियल मुद्दा है, नीट में डबल सीटें हो जाए, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है?
2: तो आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? अगर आप आपका जो वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, क्योंकि समवेयर इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड, जो इंग्लिश में बोलते हैं इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड, लोग उससे रेजोनेट कर रहे हैं। तो अगर सरकार आपकी आवाज सुन रही है, अभी आप बोल रहे हैं कि अगर कोई सुनता नहीं है तो मैं मोर्चा खड़ा कर दूंगा, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन आपने पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, है ना, आपने प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, तो अब आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे?
0: मैं कहना चाहूंगा कि एक तो अगर आपको रिजर्वेशन देना है, आप स्टेट वाइज दे रहे हैं, आप कॉलेज वाइज दे रहे हैं, कास्ट वाइज दे रहे हैं, गरीबों को रिजर्वेशन दो। भाई एक बच्चा जो जिसका पापा किसान है, दिन रात खेत में मेहनत कर रहा है, अगर वो जनरल कैटेगरी से, क्या उसका पापा, क्या उसको भी तो कॉलेज मिलना चाहिए? आप AWS से मुझे नहीं मिलता
2: भाई, मैं इंटरव्यू कर रहा हूं,
3: won't do this. Yeah, continue. I will do this interview. Yes.
0: आप गवर्नमेंट की डबल सीटें करो. अगर आप बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कि जैसे एमपी में प्राइवेट सीटों पे प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस पे करती है 50%. क्या ये ऑल इंडिया में नहीं हो सकता? ये काम ऑल इंडिया में हो सकता है 50% प्राइवेट सीटों को गवर्नमेंट कर दिया जाए ताकि उन बच्चों को भी जो गरीब बच्चे भी हैं वो भी उस कॉलेज में जा सकें.
2: अभी अभी रिसेंटली वो UGC गाइडलाइन सामने आए थे, उसको लेकर काफ़ी गुस्सा था पब्लिक में, उसको लेकर कुछ नहीं हुआ. तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसको लेकर? आपको आपको क्या मैसेज आता है कि गवर्नमेंट का माइंडसेट, गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग किस दिशा में जा रही है?
0: गवर्नमेंट जो है रियल मुद्दों पर बात नहीं करती, वो बहकाती है. जैसे भाई साहब हमारे ये है कि हमारे ऊपर चढ़ जा रहा है, नीट का पेपर हमने दिया, इन्होंने दिया नहीं. आपको क्या प्रॉब्लम पता नीट में? क्या प्रॉब्लम है जरा पूछिए आप.
4: नहीं, आप जैसे कह रहे थे कि बच्चों, गरीब किसान के बच्चों को या गरीब मजदूर के बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो चीज़ के लिए
0: किसी को नहीं, मतलब सबके साथ बराबर होना चाहिए. जो गरीब है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए.
4: और EWS इसके लिए सरकार ने बनाया तो है.
0: EWS हमें नहीं मिलता, हमारे लिए नहीं मिलता.
4: आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते नहीं हो अभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग.
5: मुद्दा ही नहीं है ना यहाँ पे, मुद्दा तो इस्तीफा है ना.
4: और पेपर है,
5: क्यों है मैं बताता हूँ. कितने साल से पेपर लीक हो रहा है?
4: रेस्पॉन्सिबल
5: धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि पहले की सरकार में होती थी जब हमने आपको लाया ना.
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं.
5: वही चीज कहोगे तो उसमें कोई अंतर नहीं रहा ना.
0: अब यही बात आप समझ नहीं रहे हो. एक सेकंड,
5: मैं आपको बता रही हूं आपके रिजर्वेशन के बारे में. एक टाइम तक ना, जो मैं बताता हूँ, एक टाइम को जब लोगों को ना कैसे कैसे हालत में रखते थे, उनको मिलना चाहिए भाई, प्रॉपर मिलना चाहिए.
4: अगर नीट का पेपर लीक हुआ है, अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो उस चीज के
5: उनके साथ कैसा भेदभाव होता है ना. कभी आप गांव में जाओ, आप गांव के नहीं हो, मैं गांव का हूँ, ठीक है, मैं किसान में बैठा हूँ, मुझे पता है वो चीजें कैसे उनके साथ भेदभाव होता है, कैसे उनको नीचे बैठाया जाता है कि चाय आप वहाँ पियो या कप में पियो, ऐसे ऐसी चीजें होती है. हम इस्तीफा होता हूँ, ऐसे क्या सरकार में वो है कि ईगो पे आ रखा है कि हम इस्तीफा नहीं दे सकते?
0: इस्तीफा दे, आप ये मुद्दा छोटा मुद्दा है, इस्तीफा तो दे, वो छोटा मुद्दा है. आप ये बताओ, आपके गांव में बहुत सारे गरीब है, ठीक है, कितने 80-80 MBBS है आप बताओ?
5: बहुत सारे हैं भाई
0: आपके गांव में.
5: बहुत सारे हैं
0: आपके गांव में 80-80 MBBS है.
5: आप कभी
0: मेरे गांव में एक भी नहीं है.
5: क्या चीज MBBS की बात?
0: एक भी 80-80 MBBS नहीं है
5: भाई. है हमारे गाँव में बहुत है, हमने देखा भाई
2: भेदभाव.
5: और ऐसे नहीं है सर, एक मिनट में, ऐसा नहीं है भाई. देखो अकाउंटेबिलिटी इसलिए मांगा जा रहा है ना, अकाउंटेबिलिटी सुनो, अकाउंटेबिलिटी इसलिए मांगा जा रहा
4: है. पता चलेगा कि सरकार ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है.
0: मैं कह रहा हूँ इस्तीफा दे.
2: ओके
5: भाई, मैं आपको बता, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाहिए?
2: लास्ट वर्ड हर्ष, फाइनल वर्ड जो आप गवर्नमेंट को भाई एक सेकंड, लास्ट वर्ड आप गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पर?
0: मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो जो भी प्राइवेट सीटें हैं वो 50% गवर्नमेंट फीस पर पे करी जाए, और ऑल इंडिया काउंसिलिंग हो, स्टेट वाइज काउंसिलिंग ना हो, ताकि हर स्टेट का अलग अलग रैंक ना उठे. तो 50% सीटें गवर्नमेंट प्राइवेट गवर्नमेंट करी जाए, और बाकी जो स्टेट वाइज काउंसिलिंग होती है उसको बंद करके ऑल इंडिया काउंसिलिंग करी जाए, ताकि हर बच्चे को, डिजर्विंग बच्चे को कॉलेज मिल सके.
2: और NDTV, वी डू नॉट शाय अवे from uncomfortable topics, uncomfortable conversations, because these are conversations that are very much flowing into the larger youth anger that you're seeing here on Jantar Mantar. Young Harsh Dubey, who has become a bit of a viral sensation since his appearance on my show last night, has struck an incredible chord with thousands, I would say millions of people all across the country. Does the fact that he isn't here demanding the specific issue of NEET leaks as a NEET aspirant himself mean that he isn't part of this anger? Well, you've seen his anger and it speaks for itself.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: राजा प्योर मसाला।
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: further reaffirmed its support for their demand for justice. The government, meanwhile, has accused the opposition of politicizing the issue and perhaps burying the core issue of the students, what they're demanding right now, even as protests, demonstrations continue at Jantar Mantar.
1: What's happening? In solidarity with the students, we wanted to take the opposition MPs to India Gate. But then they refused. So then we wanted to take them to 30 January, Gandhiji's assassination spot. And now what they've done is they put this bus in front of us there, right? And they put the barricade and they put a bus on the side here. So we can't see it, we can't go. And they're doing a drama. Obviously, they're scared. We felt, all the MPs felt that if the students are on the street, we should also be on the street.
2: आप देख रहे हैं क्या हो रहा है. हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारी देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है. महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे. जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा. आज उसी देश में, उसी देश में, उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं. तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं.
0: Joining me live is now Kanika Katyar. She's joining me live from Delhi. Kanika, aap wahan the jab LOP Rahul Gandhi aur Priyanka Gandhi unke ghar se unne ye march nikala Gandhi Smriti tak. Bataiye aapne kya kya dekha, kyunki ek side se humne dekha hai ki center ne kaha hai ki paper leak ke mudde pe hum sansad mein baat karenge, but dusri side hum dekh rahe hain ki opposition ko bas the education minister ka istifa chahiye.
3: बिल्कुल साफ तौर पर राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, करीबन 120 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं, उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया. राहुल गांधी का जो आवास है सुनहरी बाग, वहां से लेकर करीबन जो है 2 किलोमीटर तक जो है गांधी स्मृति तक जो है ऑपोजिशन ने आज प्रोटेस्ट किया और बस में तमाम जो सांसद हैं वो पहुंचे थे. एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक में आज करने की कोशिश की, जिसके पीछे जो है एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है. लगातार पेपर लीक को लेकर जो है ऑपोजिशन एक ही डिमांड कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो की एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन पहले होना चाहिए, उसके बाद जो है फर्दर डिस्कशन और बाकी चीजें होंगी. हालांकि गवर्नमेंट अग्री कर चुकी है इस बात पर कि वो डिस्कशन के लिए तैयार है. लगातार जो है सरकार ये बोल रही है कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही हाउस में चर्चा के लिए तैयार है. लेकिन ऑपोजिशन की सिंपल डिमांड है कि फिलहाल अभी उनको एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए और इसीलिए आज कांग्रेस और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के सांसद थे उन्होंने राहुल गांधी के आवास से लेकर जो है गांधी स्मृति तक प्रोटेस्ट भी किया. राहुल गांधी ने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशनल बुक जो है वो थमी हुई थी, इसके अलावा जो है नेशनल फ्लैग को कैरी किया हुआ था. तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है स्टूडेंट्स को, उन तमाम लोगों को, कि वो पेपर लीक में उन स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है और लगातार जो है इस मामले को लेकर जो है सरकार को घेरा जा रहा है. लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होगा कांग्रेस इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो करती रहेगी. आज जो प्रोटेस्ट हुआ इसमें लगातार जो है एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई, एक सिम्बॉलिक मैसेज देने की कोशिश की गई और आने वाले समय में कहा जा रहा है, जो
0: Dr. Jitendra Singh has said that the government has sent four formal proposals for discussions since yesterday afternoon and described the invitation as open and unconditional. He said that the government is ready to discuss all issues at any time and at any venue convenient to the protesters. According to Dr. Jitendra Singh, both the Union Health Minister J.P. Nadda and he himself, they both are prepared to participate in the discussions, adding that dialogue is the only way forward, and perhaps urging student representatives

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा प्योर मसाला।
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Match.

0: up, we have some breaking news on top of the show. 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns were identified and blocked. Delhi police appeals to students and youth to be wary of such foreign accounts spreading rumours to mislead the situation. Well, government sources tell us that multiple social media and X handles allegedly operated from Pakistan are now seen actively supporting the ongoing student protest in India. Based on available digital tracking, more than 400 such handles have now been identified, along with approximately 100 Instagram handles as well. Initial analysis also indicates that several of these same accounts were previously active during Operation Sindoor as well in online campaigns involving anti-India narratives, misinformation and propaganda against Indian security forces. Take a listen to the reactions coming in and what the Delhi police has to say.
1: हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है. अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं. उनको ब्लॉक कराया जा रहा है. ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे. उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना. मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए. किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने इमोशंस का कंट्रोल मत लेने दो. याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है.
0: All right, my colleague Anushka is now joining me on the phone line. Anushka, you know, there were a lot of miscreants, unknown people against which FIRs were also filed. But now, Delhi police telling us that there's been a huge crackdown on misinformation, especially from Pakistan's social media handles.
2: Well, that's right, Rahisha. Delhi police on Thursday have gone on to say that it has identified more than 400 Pakistan-linked former, ex-handles and around 100 Instagram accounts that are allegedly attempting to amplify the ongoing student protests in India by spreading misinformation and misleading content. According to Delhi police, preliminary digital analysis indicates that several of these accounts were also active during Operation Sindoor, where they were allegedly involved in online campaigns pushing anti-India narratives, misinformation and propaganda targeting Indian security forces. Now, police have also said that the identified accounts are being blocked and urged the police public not to rely on unverified information circulating on social media. Authorities have also appealed to citizens to verify information through official sources and avoid sharing misleading or unconfirmed content. We've also seen how the protest has been going on. Several of the miscreants who had entered the very protest area, we have seen several of the videos that have been surfaced where it can be seen that these kind of protests have been going on, and also how the protesters were involved in stone pelting, and several of the police officials and the protesters also who got injured because of this confrontation and the violent clashes that had in fact broken out.
0: Absolutely,
2: earlier.
0: Anushka, because there's a lot of misinformation also doing the rounds on Instagram and various social media handles, and that's the huge message for the Delhi police, saying that they should be wary of anti-India social elements online. Well, we have other news coming in. Violence has now erupted near Delhi's Jantar Mantar late night of July 22nd as protests spiraled into clashes with the police. Demonstrators pelted stones at security personnel, leaving a Delhi ACP with a head injury, and another police inspector was assaulted during the violence as well. The police has now responded with a lathi charge to disperse the crowd. Several vehicles were also vandalized in the chaos. Heavy police deployment remains in place around the protest site to prevent any fresh flare-up, and authorities are now monitoring the situation closely. Meanwhile, Sandeep Lamba, who's a senior Delhi police officer who has now come under fire after slapping a woman protester during the July 20th Sansad Chalo march, has now been removed from all security-related duties at Jantar Mantar.
3: हमारा स्टाफ था, उनको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें से तीन चार लोग भाग गए थे, बट एक जो स्टाफ था हमारा फंस गया था और उसको वो सभी लोग मिलके मार रहे थे. तभी मैं और विवेक सर अंदर भीड़ में घुसे उन्हें बचाने के लिए. तो तभी उन्होंने विवेक सर और मुझे भी मारना स्टार्ट कर दिया। पर हम तितर बितर करके थोड़ी ही दूर भग पाए, पर हमें वापस से पकड़ लिया।
4: जैसे ही आगे आगे चल रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि आगे वाले स्टाफ्स पे पानी की बॉटल्स फेंकी जा रही है और हूटिंग्स और एंटी सोशल स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ। तो जैसे ही थोड़ी सी वहाँ पे हमारी पुलिस की स्टाफ आगे पीछे हुए, कुछ ने अपनी जान बचा के आगे हो गए और उनमें से एक को भीड़ ने ओवर पावर कर लिया। उसके सिर से खून निकल रहा था और पूरा मुँह खून से सन गया था। तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की, उसको एक दो मीटर आगे भी लाए हम, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उग्र थी, उन्होंने मेरे को भी ओवर पावर कर लिया। जब तक मैं खड़ा था तब तक सिचुएशन फिर भी ओके थी, भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी उन्होंने मुझे गिरा दिया और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इंपैक्ट्स चालू हो गए। इसमें लात थी, घूसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी।
5: किशोर जी, जब ये आप पर हमला हुआ आप कहाँ से आ रहे थे, क्या कुछ हुआ?
6: सर, मैं हनुमान रोड पर, हनुमान मंदिर के बाहर जो रोड है, मैं वहाँ पर गाड़ी लगाकर वहाँ से मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जंतर मंतर पर आ रहा था जहाँ धरना प्रदर्शन है। संसद मार्ग की तरफ जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर 2,500 की भीड़ होगी या उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से मैं अपना ड्यूटी करने जा रहा हूँ, मुझे तो इनसे कोई मतलब नहीं था। मैं वर्दी में था तो मैं वहाँ से निकल के जा रहा था, तो वो स्लोगन्स बोल रहे थे, एंटी पुलिस एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स बोल रहे थे। तो मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। तो उसके बाद फिर एकदम से पीछे से किसी ने मेरे पे अटैक किया, मुझे लात मारी, कोई डंडा टाइप से मारा।
0: And your breaking news coming in, the education secretary has now been removed. This of course comes at a time when there's huge protest going on in Delhi over the resignation of the education minister Dharmendra Pradhan. But what we are learning right now is that the education secretary has been removed. Well, India's Ministry of Education is divided into two departments. Each is divided by its own secretary. But the latest coming in is that amid all the protests that's happening in New Delhi over the resignation of the Union Education Minister Dharmendra Pradhan, this is perhaps a neat leak fallout that the education secretary has been changed. Perhaps a first step this direction. While the students are demanding accountability and the resignation of the Union Education Minister, but what we are learning is that the Education Secretary has been changed. This is a fallout of the NEET paper leak. The centre has taken an action, like the centre has clearly said that accountability will be taken care of, and that we will have discussion and dialogue on all the issues that the students of India are now facing. But the latest coming in is that the Education Secretary of India has now been changed. This at a time when a slew of protests are taking place in India over the NEET paper leak, and the students are demanding accountability from the

0: People wonder about stage-managed events, etc. I'll let you hear it first. Last night on India Matters, a young student who has taken NEET multiple times has become one of our most viewed segments all year. Harsh Dubey is a student who's taken NEET. And yesterday, you've seen it on the show because it's got millions of views and gone completely viral. Harsh, aap aa gaye ho aaj hamare saath is protest mein. Kya kehna chahenge? What do you think of the protest here? You raised the issue of reservation yesterday. Which everybody is now talking about.
1: देखो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी माँ बाप के चार बच्चे हैं, अगर उसके दो बच्चे मर गए तो वो क्या चाहेगा कि मेरे दो बच्चे सुरक्षित रहें। हर आदमी किस बात पे बात कर रहा है कि 20 बच्चों के साथ न्याय हो, लेकिन जो आज जिंदा बच गया उनके साथ न्याय की किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। जो जिंदा बच गया उसको भी तो न्याय दिलाओ ना। आप गवर्नमेंट के पास कितनी सीटें हैं कि हमने 10,000 सीटें बढ़ाई, लेकिन गवर्नमेंट सीटें कितनी बढ़ाई? सिर्फ 2,000। आपने सिर्फ 5% गवर्नमेंट सीटें इंक्रीज करी और आप कह रहे हैं मैंने 10,000 सीटें बढ़ाई हैं। वो बाकी तो 10,000 सीटों पे 25 लाख पर ईयर फीस है। 25 लाख देने की मेरी औकात नहीं है, मैं 25 लाख कैसे दे पाऊंगा? आप कह रहे हैं कि 20 बच्चों के साथ न्याय करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, मुझे क्या फायदा होगा इससे? मेरा क्या होगा? मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या? मेरी सीट जो जा रही है मुझे मिल जाएगी क्या? धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे दे, मोदी इस्तीफा दे दे, ट्रंप दे दे, क्या मुझे सीट मिल जाएगी? मैं मर रहा हूँ, ये मर चुके हैं, उनको सिर्फ न्याय दिलाने की बात चली है। जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे न्याय दिलाने के लिए बैठ जाएंगे धरने पे? ये मेरे दिमाग में तब आता है क्योंकि मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ चुके हैं। जब लाख बच्चों के दिमाग में सुसाइड का थॉट आता है तब एक बच्चा कर पाता है उसको अटेम्प्ट, लेकिन इस चीज को कोई नहीं देख रहा है। इस चीज को कौन देख रहा है? सिर्फ क्या देख रहे हैं कि मोदी इस्तीफा दो, धन में क्यों दे इस्तीफा? उसका रीजन बताएं आप लोग बैठ के यहाँ। रीजन ये है कि वहां पर सीटें नहीं है। रीजन ये है कि जो बच्चे मरे हैं वो इसलिए मरे हैं क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं दिन रात और क्लास के टॉपर होते हैं, पूरी लाइफ टॉप रहते हैं अपने क्लास में। लेकिन आज जो बच्चे एसएससी में चले गए उनके पास सैकड़ों ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक नीट। क्या कुछ ऐसे एग्जाम नहीं होने चाहिए जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ का सिलेबस हो? सारे एग्जाम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उनमें सिर्फ नीट छोड़ दे तो किसी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं आता है? क्या कुछ हमारे पास और ऑप्शन नहीं होने
0: चाहिए? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट तैयार है रिजर्वेशंस और जो मुद्दे आपने उठाए अभी उसको लेकर चर्चा करे, डिसीजन ले रिजर्वेशन को लेकर?
1: सब लोग कोई चर्चा कर कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये चिल्लाने से क्या ये चर्चा हो रही है? क्या इस पर चर्चा करो कि भाई क्यों इतना सारा है? हर स्टेट को, हर कॉलेज को आप रिजर्व कर रखिए क्यों? जिसके पास मर्सिडीज है वो गरीब है और मेरे पापा किसान है, मैं अमीर हूँ। मेरे पापा खेती में काम करते हैं, मैं अमीर हूँ। जिसके पास मर्सिडीज अगर उसके आगे 80 लिख गया तो वो गरीब है। इस बात पर कौन बात कर रहा है यहाँ? मैं आधे घंटे से आया हूँ, सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ।
2: बदतमीजी
1: क्यों हो रही है? गलत काम कर रही है, यही तो गलत काम कर रहे हैं।
2: सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम?
1: इन सभी पॉइंट्स को उठाया जाए, गलत मुद्दों। हमें जो बच्चे बच गए हैं, जिन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए कम से कम उन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। उन बच्चों के न्याय की मांग कौन कर रहा है?
0: कल के वीडियो के बाद हर्ष आपको बहुत सपोर्ट मिला है, आपने जो बोला है वो सेगमेंट पूरा का पूरा अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स वायरल हो चुका है एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म से। उसके बाद क्या क्या कॉन्वर्सेशन शुरू हुए हैं? क्या लोग आपके पास आ रहे हैं बोल रहे हैं कि इसको लेकर एक मोर्चा खड़ा कर दो, इसको लेकर प्रोटेस्ट करो?
1: हाँ, लोग कह रहे हैं कि भाई आप इसको लेकर प्रोटेस्ट करो, रियल मुद्दों पर बात करें। हमारे पास सारे रियल मुद्दे होने चाहिए।
0: लेकिन ये भी एक मुद्दा है, ये आप नहीं मानते हैं जो यहाँ पे हो रहा है?
1: हाँ बिल्कुल, रिजाइन दें, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर एक बाप के दो बच्चे मर गए तो वो क्या चाहेगा? मेरे दो बच्चे सुरक्षित बचे रहे। वो ये नहीं चाहेगा कि इन दो बच्चों के पीछे पूरी जान फूंक देगा। वो चाहेगा हमारे दो बच्चे बच गए, पहले इनको देखूंगा मैं। उस पर बात करो, आप पॉइंट्स उठाओ भाई। अभी कौन कौन आया था?

0: कोई मुख्यमंत्री आई थी, भाई मुझे बोलने का मौका दो, प्रॉब्लम्स मेरी हैं, मुख्यमंत्री से मुझे क्या मतलब है, मोदी से मुझे क्या मतलब है, क्या मतलब है मुझे, मुझे
1: जो लोग
0: दिलाओ
1: हर्ष, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं इस मुद्दे को लेकर, उनका कहना है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो भी है, उनमें हिम्मत नहीं है इस मुद्दे को उठाकर थोड़ा डिसीजन मेकिंग करें।
0: प्रॉब्लम ये है ना गवर्नमेंट,
1: वो कहते हैं ये, क्या आप अग्री करते हैं उसको लेकर?
0: हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है प्रॉब्लम्स क्या है रियल।
1: उनको तो पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट को कैसे पता नहीं होगा?
0: तो आप सीटी डबल करो, कैसे कर सकते हैं? सुनो, क्या एक बच्चा जो आज 4 साल बाद कॉलेज से निकलेगा कि नाइट में शिफ्ट में ड्यूटी करेगा, नाइट में भी ड्यूटी करेगा, तो क्या वो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी में पढ़ नहीं सकता है? सारे कॉलेज अगर 2 शिफ्ट में कर दी जाएगा, डायरेक्ट डबल सीट हो गई गवर्नमेंट की, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। सिर्फ हॉस्टल बनवाने हैं, सिर्फ हॉस्टल बनवाने, उसी क्लास में, उसी बेंच में, उसी लाइब्रेरी में, उसी बॉडी पे वही बच्चा सुबह प्रैक्टिस कर रहा है, वही बच्चा शाम को कर रहा है, क्या डबल सीटें हो जाएंगी तुरंत? जो बच्चा आज के 4 साल बाद 24 घंटे की ड्यूटी देगा, 24 घंटे हॉस्पिटल में काम कर लेगा, वो क्या 4 साल पहले अपनी MBBS डिग्री कंप्लीट करने के लिए दिन और रात में नहीं पढ़ाई कर पाएगा?
1: तो आप क्या बोलेंगे जो डिसीजन मेकर्स हैं अभी, उनका ध्यान अभी जंतर मंतर पर है, जहां पर
0: इसीलिए तो जंतर मंतर
1: धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा 2 को लेकर वो है डोमिनेंट नारा यहाँ पर, नीट पेपर लीक को लेकर। आप एक नीट स्टूडेंट है, तो ये जो आप जो रेज कर रहे हैं वो मुद्दा, वो सामने कैसे आएगा? नहीं, आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, गवर्नमेंट को तो बिल्कुल पता है कि ये क्या है, ऑपोजिशन को भी पता है कि ये मुद्दा क्या है, ये तो सालों से पता है कि ये एग्जैक्टली रिजर्वेशन का मुद्दा क्या है, वो नहीं उठाएंगे तो आप क्या करेंगे फिर?
0: तो मुझे भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बट मैं तभी साथ दूंगा जब रियल मुद्दों पर बात होगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा है कि वो उसका बहुत छोटा पॉइंट है, हम इसको सबसे बड़ा पॉइंट बना रहे हैं और रियल मुद्दों को छोटा बना रहे हैं।
2: रियल मुद्दा है क्या?
0: रियल मुद्दा ये है कि बच्चों को सीटें मिले, गवर्नमेंट की डबल
2: सीटें,
0: नीट बच्चों लेके रियल मुद्दा है भाई, नीट में डबल सीटें हो जाए उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है?
1: तो आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? अगर आप आपका जो वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, क्योंकि समवेयर इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड, जो इंग्लिश में बोलते हैं इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड, लोग उससे रेजोनेट कर रहे हैं। तो अगर सरकार आपकी आवाज सुन रही है, अभी आप बोल रहे हैं कि अगर कोई सुनता नहीं है तो मैं मोर्चा खड़ा कर दूंगा, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन आपने पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, है ना, आपने प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, तो अब आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे?
0: मैं कहना चाहूंगा कि एक तो अगर आपको रिजर्वेशन देना है, आप स्टेट वाइज दे रहे हैं, आप कॉलेज वाइज दे रहे हैं, कास्ट वाइज दे रहे हैं, गरीबों को रिजर्वेशन दो भाई। एक बच्चा जो जिसका पापा किसान है, दिन रात खेत में मेहनत कर रहा है, अगर वो जनरल कैटेगरी से, क्या उसका पापा है क्या? उसको भी तो कॉलेज मिलना चाहिए। आप गवर्नमेंट की डबल सीटें करो। अगर आप बहुत सारे स्टेट में ऐसा है, जैसे MP में प्राइवेट सीटों पे, प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस पे करती है 50%, क्या ये ऑल इंडिया में नहीं हो सकता? ये काम ऑल इंडिया में हो सकता है, 50% प्राइवेट सीटों को गवर्नमेंट कर दिया जाए, ताकि उन बच्चों को भी, जो गरीब बच्चे भी हैं, जो वो भी उस कॉलेज में जा सके।
1: अभी रिसेंटली वो UGC गाइडलाइन सामने आए थे, उसको लेकर काफी गुस्सा था पब्लिक में, उसको लेकर कुछ नहीं हुआ, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसको लेकर? आपको क्या मैसेज आता है कि गवर्नमेंट का माइंडसेट, गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग किस दिशा में जा रही है?
0: गवर्नमेंट जो है रियल मुद्दों पर बात नहीं करती, वो बहकाती है। जैसे भाई साहब हमारे ये है कि हमारे ऊपर चढ़ जा रहा है, नीट का पेपर हमने दिया, इन्होंने दिया नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम पता है नीट में, क्या प्रॉब्लम है जरा पूछिए आप।
3: नहीं, आप जैसे कह रहे थे कि बच्चों, गरीब किसान के बच्चों को या गरीब मजदूर के बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो चीज के लिए
0: किसी को नहीं, मतलब सबके साथ बराबर होना चाहिए, जो गरीब है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
3: और EWS इसके लिए सरकार ने बनाया तो है,
0: EWS हमें नहीं मिलता, हमारे लिए नहीं मिलता।
3: आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते नहीं हो, अभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग
4: मुद्दा ही नहीं है ना यहाँ पे, मुद्दा तो
3: पेपर है।
4: कितने साल से पेपर लीक हो रहा है?
3: रेस्पॉन्सिबल
4: धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि पहले की सरकार में होती थी जब हमने आपको लाया ना।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: वही चीज कहोगे तो उसमें कोई अंतर नहीं रहा ना,
0: अब यही बात आप समझ नहीं रहे हो। एक सेकंड,
4: मैं आपको बता रहा हूं आपके रिजर्वेशन के बारे में। एक टाइम तक ना, जो मैं बताता हूँ, एक टाइम को जब लोगों को ना

0: कैसे कैसे हालत में रखते थे ना, उनको मिलना चाहिए भाई, प्रॉपर मिलना चाहिए।
1: अगर नीट का पेपर लीक हुआ है, अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो उस चीज के
0: उनके साथ कैसा भेदभाव होता है ना। कभी आप गांव में जाओ, आप गांव के नहीं हो, मैं गांव का हूँ, ठीक है, मैं किसान में बैठा हूँ, मुझे पता है वो चीजें कैसे उनके साथ भेदभाव होता है, कैसे उनको नीचे बैठाया जाता है कि चाय चाय आप वहाँ पियो या कप में पियो, ऐसे ऐसी चीजें होती है। ऐसे क्या सरकार में वो है की ईगो पे आ रखा है की हम इस्तीफा नहीं दे सकते।
2: इस्तीफा दे, आप ये मुद्दा छोटा मुद्दा है, इस्तीफा तो दे, वो छोटा मुद्दा है। आप ये बताओ, आपके गांव में बहुत सारे गरीब है, ठीक है, कितने एससी एसटी एमबीबीएस है आप बताओ?
0: बहुत सारे हैं भाई
2: आपके गांव में,
0: बहुत सारे हैं
2: आपके गांव में एससी एसटी
0: एमबीबीएस
2: है।
0: आप कभी
2: मेरे गांव में एक भी नहीं है,
0: क्या चीज एमबीबीएस की बात,
2: एक भी एससी एसटी एमबीबीएस नहीं है
0: भाई, है हमारे गांव में बहुत है, हमने देखा भाई भेदभाव, ठीक है, हमने और ऐसे नहीं है सर, एक मिनट में बोल, ऐसा नहीं है भाई, देखो अकाउंटेबिलिटी इसलिए मांगा जा रहा है ना, अकाउंटेबिलिटी सुनो, अकाउंटेबिलिटी इसलिए मांगा जा रहा
1: है, पता चलेगा कि सरकार ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है।
2: मैं कह रहा हूँ इस्तीफा दे,
3: ओके
0: भाई, मैं आपको बता, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाहिए?
3: लास्ट वर्ड हर्ष, हर्ष फाइनल वर्ड जो आप गवर्नमेंट को बोल, भाई भाई एक सेकंड, लास्ट वर्ड आप गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पर?
2: मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो जो भी प्राइवेट सीटें हैं वो 50% गवर्नमेंट फीस पर पे करी जाए, और ऑल इंडिया काउंसिलिंग हो, स्टेट वाइज काउंसिलिंग ना हो, ताकि ताकि हर स्टेट का अलग अलग अलग अलग रैंक ना उठे, तो 50% सीटें गवर्नमेंट प्राइवेट गवर्नमेंट करी जाए, और बाकी जो जो स्टेट वाइज काउंसिलिंग होती है उसको बंद करके ऑल इंडिया काउंसिलिंग करी जाए, ताकि हर बच्चे को, डिजर्विंग बच्चे को कॉलेज मिल सके।
3: ऑन एनडीटीवी वी डू नॉट शाय अवे from uncomfortable topics, uncomfortable conversations, because these are conversations that are very much flowing into the larger youth anger that you're seeing here on Jantar Mantar. Young Harsh Dubey, who has become a bit of a viral sensation since his appearance on my show last night, has struck an incredible chord with thousands, I would say millions of people all across the country. Does the fact that he isn't here demanding the specific issue of NEET leaks as a NEET aspirant himself mean that he isn't part of this anger? Well, you've seen his anger and it speaks for itself.

0: people, they are looking at you with hope. This lady here said, उन्होंने जब join किया, जब CJP को follow किया, जब वो जंतर मंतर गए, इस उम्मीद से गए that it's a non-political platform, and I think a large number of them still hope for it to remain non-political. The problem is when you start having politicians on that platform every day, politicians come and have lunch with you over there.
1: Ma'am, who made these?
0: Then why don't you ask them those questions?
1: No, no. Who made these rules? And from where does this cultural hegemony come from? Right from the first press conference, which was on the 3rd, even at that point we had said that yeah, any political party can come, but with the Indian flag, not with their party flag. Because it is my utter belief that the role of political parties is not to, you know, play some snakes and ladders. Of course, they are supposed to do politics. That's why they are political parties.
2: No, but people are not just campaign. Come on.
1: No, they are coming. Just ask the students.
0: Let the young lady ask.
2: You tell me one thing.
1: All
2: what
1: parties
2: is
1: have come here. TMC, be it NCP or be it Aam Aadmi Party or be it Congress.
0: Basically, the opposition.
1: Yeah, the opposition and even the BJP.
0: That opposition is in government in other states. When Arvind Kejriwal came to meet you, when Congress leaders came and sat with you, did you say that paper leak to sir, aapke bhi states mein ho rahe hain? Aap apne paper leak ki bhi baat kijiye na sir, kyunki student to Punjab ka bhi student hai, Delhi ka bhi student hai,
3: Neet ka bhi student hai.
1: See, the thing is, that if we just start with finding faults, we get nowhere. See, our picnic has been done. Now Mr. Anand can set up another tent. And then he can do that, or
3: your tent is only to demand.
1: Just as Anand said, I demand the resignation of all.
2: Okay, and what is lady? And what is the hidden agenda?
3: डर के मारे बोल रहे हो?
1: No, no. डर किसे?
3: केजरीवाल से क्यों डर रहे थे भाई?
1: Why would I be afraid of anyone?
3: Did you tell केजरीवाल?
1: Vijayda is not afraid of anyone.
3: Answer the question.
0: बताइए.
1: Even after this authority, I'm not afraid of anyone.
3: This lady. Just 10 seconds. This lady, wonderful lady, was following CJP. Do you want the resignation of Harjot Singh and Bangarappa?
4: Yes.
3: There you go.
1: So I am also saying it.
3: Do you think, is there any bite of CJP, any leader, including Vijeta,
1: no,
3: that demands the resignation of Bangarappa?
1: Sir, my problem is, honestly, it is not about CJP.
2: It is about the issue of education.
1: Yes, exactly.
2: And as a government, as a student, we expect the government to start from the top.
3: Yes.
2: We expect the leadership, we expect the current government will do start from the
3: current
2: top.
3: Current Karnataka government. Why are you sparing some people? That's the only simple question.
1: Anand, people are tired of this BJP, Congress.
2: People are tired of this rhetoric. Ma'am, tell me.
1: Let things get to somewhere.
2: I am Twinkle and I graduated MBA from IIM Raipur and did my bachelor's in economics from Symbiosis Pune.
0: So, you know, I think what Twinkle is trying to say, what she is saying, Harshvardhan ji, ki सरकार केंद्र सरकार से शुरुआत कीजिए ना पहले धर्मेंद्र प्रधान लेट हिम सेट एन एग्जाम्पल एंड से आई टेक अकाउंटेबिलिटी एंड टुमारो देन ट्विंकल विल गो बैक टू जंतर मंतर एंड से कि हरजोत जी अब आप भी लीजिए अकाउंटेबिलिटी क्या ये मांगना गलत है
1: ट्विंकल आज कह रही है
0: शुरुआत केंद्र से कीजिए देन द डोमिनोज विल स्टार्ट ओके ओके वन क्वेश्चन एट अ टाइम
1: What more do you want to hear?
0: One at a time, please. Just a second. Harshvardhan ji. Dharmendra Pradhan shuruaat kare. Harshvardhan ji.
5: ट्विंकल आपने नाम बताया ना बिल्कुल जो ट्विंकल कह रही है मैं उनके साथ खड़ा हूँ
2: डेफिनेटली थैंक यू सर
5: इनके ऊपर सवाल नहीं है ना सवाल उस मूवमेंट पर है जो कॉकरोचेज के नाम पर वहां इकट्ठा किया गया जो तंबू लगाया गया है उस पर सवाल है और एक मिनट मैंने आपकी बात सुनी लेट मी कंप्लीट जब इस मूवमेंट की शुरुआत हुई तो सीजीआई की एक टिप्पणी एक कमेंट ऐसा था जिस पर लोगों को लगा कि ये यूथ के ऊपर है उन्होंने तो क्लैरिफाई कर दिया तो ये नीट पर गए अगर नीट पर गए तो रीट पर क्यों नहीं गए अगर रीट पर गए तो पंजाब पर क्यों नहीं गए अगर पंजाब पर गए तो ये कहीं नहीं गए, क्योंकि ये मूवमेंट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का मुखौटा आंदोलन है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की साख पूरी तरह से दिल्ली में खत्म थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था दिल्ली कैसे आए, मुंह छिपाकर पंजाब में थे, ये रास्ता अपना बच्चों को बदलाया गया।
4: संस्कृति सिंह, आई एम अ पोलिटिकल साइंस ग्रेजुएट एंड आई एम परसुइंग पोलिटिकल साइंस इन माई मास्टर्स। सर अभी अभी आपने ये बोला कि आप उस स्टेज को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते थे, सर ये पूरा इशू स्टूडेंट से हट के पोलिटिसाइज हो चुका है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट इशूज। कहाँ पे आपने बात करी, एक भी आपने बात करी कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दे देना चाहिए। सर पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात आपने कहाँ करी थी, पहले दिन से आपने ये बात नहीं सर मैंने एक बात नहीं देखी सर, पंजाब सर इतने दिन से प्रोटेस्ट हुआ, एक दिन भी मैंने ये नहीं देखा कि पंजाब में जब हुआ किसी ने एक बाइट दी हो, किसी ने नहीं बोला उस प्रोटेस्ट में बैठे हुए कि पंजाब में भी पेपर लिखे हुए हैं, महाराष्ट्र टेट के पेपर लिखे हुए हैं, सिर्फ नीट के नहीं।
5: पंजाब पुलिस ने बच्चों पर लाठी चार्ज किया, पंजाब पुलिस ने बात नहीं करी सर,
4: ये बात सिर्फ नीट की नहीं,
1: स्टूडेंट्स
4: को किसी ने सबने साइडलाइन कर दिया।
3: नेता बनना तो बनो ना
4: जी,
3: किसने रोका है,
4: नेता बनने का प्लेटफॉर्म बन गया
3: था, दैया बन गया
1: है। न्यूज़ 18 इंटरव्यू
0: लालू था। डायरेक्ट क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू तहसीन पूनावाला आल्सो, इन एडिशन टू द एग्जांपल्स बीइंग गिवन हियर ऑफ हाउ नो मेंशन वाज मेड ऑफ पंजाब और कर्नाटका, द अदर इशू आल्सो इज कि आप कभी किसी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे। दिस इज यू नो what happens is just second, the question is to Tehsin, sir, hum gaye hai, I'll be very honest with you, every time, and now I have no hesitation in saying this, I have no hesitation in saying this, and I will ask that question to Tehsin, but I want to make an unequivocal statement. Since the beginning of this agitation, everyone on that stage has said mainstream media is not covering us. When we went there, my young colleagues went there. They were heckled. They were harassed. They were called names. They were pushed around. When you keep blaming us for not coming there, sir, we went there in good faith. We stayed there despite you calling us names. But you then went ahead. I'm not saying you in particular or well-meaning students. Some people who were there, they harassed my colleagues, sir. And I will not make my colleagues cannon fodder. Just a second. But that is for Tehsin Poonawala. Where are the solutions? Just a second. Where are the solutions? Tehsin.
6: I'll give you the solutions. But first of all, thank you guys for coming here. It really means a lot. You guys here, irrespective of which side of the fence you all are, we are all here for Team India. Now the point is, I'll give you the solution. I don't know if you all will carry the solution. Number one, ask Padmaja, ask this question. Not you, journalists. Why the F do Netas' kids study abroad and in private schools? Why not in government schools? They are running the system. Why do Babu's kids study abroad and in private schools, not in government schools, if they are running the system? That is the question that it starts from. Number two, why does this great country of ours, where we have professors like Anand, I really respect him, in JNU, and he's actually a very good professor. He's doing some phenomenal work in a great government institution, the JNU. Why do we have coaching classes? Where did this start from? From the coaching classes. Who was Joshi? Who were those people? They were all scamsters associated with coaching classes. Why do each one of you and your families have to send you to coaching classes? It starts from there. Whether this is about Punjab, whether this is about Karnataka, whether it is about Dharmendra Pradhan, the fact is all three names that he took are Nepo kids, whose kids studied abroad. By the way, the kids are studying abroad. You guys are left to rot here. That is where the problem is. Bro, one second. Just give me 10 seconds.
1: And let me, why can every college not be wonderful like IIT and IIM?
7: Sir?
1: Why are the all the you know kids, they are made to fight just for a few seats?
7: No.
1: Why can every college not be?
0: Vijayta ji, बच्चों को तो बात करने दीजिए, ये जंतर मंतर बनता जा रहा है जहाँ पर सारे नेता ही बोल रहे हैं, बच्चे वहाँ बस मूक दर्शक बन करके सुनते रहते हैं कि मंच से आप लोग क्या आ करके चले जाते हैं। यस
7: सर, सुनने की क्षमता रखिए, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है, आई एम एन एडवोकेट, आई वर्क इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट।
0: व्हाट्स योर नेम?
7: माय नेम इज एडवोकेट आदित्य शर्मा। टू ऐड टू दैट, आई वाज इन जंतर मंतर, मैं तीन चार बारी गया भी, क्योंकि पास में ही है कोर्ट, सारी जगह पास में ही है, तो मैं जाता था, मैं जरूर देखता था क्या क्या चल रहा होता था। जिस दिन जो 20 तारीख की बात थी और उसके पहले भी जो आप सब बातें कर रहे हैं, ये अस्पष्ट है कि ये गवर्नमेंट इशू नहीं, ये गवर्नेंस इशू है, राइट? हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एजुकेशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यहाँ पे हम गवर्नमेंट्स, डिफरेंट गवर्नमेंट्स की बात कर सकते हैं, आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन एट दी एंड स्ट्रक्चरली चेंजेस क्या क्या ज़रूरी हैं। एनटीए को क्यों

0: स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया राइट एक वो सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है वो होना चाहिए था उससे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है अपार्ट फ्रॉम दैट कम इफ आई कम टू दी प्रोटेस्ट सर उस दिन कोई लीडरशिप नहीं थी सर हमें बताने के लिए 20 तारीख को मैं वहाँ था बच्चे भाग रहे हैं पता नहीं इतनी भीड़ अनप्रेसिडेंटेड भीड़ थी पहली बात इतने लोग मैं तो 24 साल का हूँ मैं दिल्ली ही रहा हूँ राइट यहाँ पे सारी मूवमेंट्स यहीं उजागर होती हैं लेकिन हमने ये देखा कि इतने बच्चे आज तक नहीं आए यार कहाँ से आएंगे और फिर मेट्रो बंद होना और जो सारी हवा थी डर का जो माहौल था पूरा वो दिख रहा था बट एट दी एंड सारे बच्चे आए रिस्पेक्ट टू दैट अपनी आवाज़ उठाने आए बट एट दी एंड कब जाना है कहाँ जाना है क्या करना है क्या नहीं करना है ये किसी को पता ही नहीं चला राइट फिर अगेन पुलिस वालों ने बहुत बर्बरता करी देर वॉज नो बैचेज नथिंग एंड क्योंकि मैंने तो आंखों देखी ही देखा राइट सो दैट शुड नॉट हैपन डी के बारसू वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल का एक केस है जिसमें गाइडलाइंस दी गई है कि पुलिस वाले को किस तरीके से बिहेव करना है वो बिहेवियर नहीं था और वो गलत था मैं कहता हूँ कल दिल्ली हाई कोर्ट में इस बारे में बात भी हुई है राइट टू ऐड टू दैट गवर्नेंस रिफॉर्म्स हम किस तरीके से लाएंगे जो रीनीट हुआ मैम रीनीट में भी एक क्वेश्चन गलत था मेरी छोटी बहन ने नीट दिया रीनीट दिया तो मैं वो देख रहा था कि वो किस फेज में थी राइट रीनीट में भी एनटीए ने एक क्वेश्चन गलत डाला राइट सर आप बायोकेमिस्ट्री के हैं मैंने पूरा आपके काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ बट एट द एंड अगर उस बॉडी से ही जो रीनीट ले रहा है वो भी क्वेश्चन गलत डाल रहा है तो यार वो तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है
1: व्हाट इज द सॉल्यूशन व्हाट हाउ डू वी सॉल्व दिस
0: स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक प्लस द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज व्हिच आर देयर इन द एनटीए आर वेरी लेस राइट अगर आप सीयूटी ले रहे हो यूजी पीजी सारे बीएचयू के एग्जाम सारे एक साथ ले रहे हो तो कम से कम लोग तो बढ़ाओ
1: सो टेल मी समथिंग यू हैव गॉट सच क्लियर हेडेड आइडियाज अबाउट दिस डिड यू फाइंड एनी ऑफ दिस इन द कन्वर्सेशन एट जंतर मंतर व्हेन यू वेंट देयर इज एनी ऑफ दैट बीइंग
0: रिफ्लेक्टेड द क्वेश्चन इज टू मी गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल
1: लॉयर्स आपसे पंगा मत लो भाई
0: आई डिड नॉट फ्रैंकली स्पीकिंग
1: ओह माय गॉड लेडी लॉयर
0: स्ले क्वीन
1: गो ऑन यस
0: कांग्रेचुलेशंस
1: I like this dynamic, but go on.
0: Yeah. It's fine.
2: Judge
1: कौन बनेगा ये बात? मैं
3: Chief Justice पद्मजा.
1: Please.
3: तुम सब को कुछ मेरे पास समय नहीं.
0: बोल देना मैं.
1: बताइए. Did you find it reflected?
0: No, sir. Frankly speaking, नहीं था. वहाँ पे लोग थे. सोनू मांगचुक जी थे. Respect करते हैं कि हम जो वहाँ पे चल रहे
4: हैं. Initiative.
1: मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी स्पीकर है नो वन वॉन्ट टू टेक अकाउंटेबिलिटी आनंद अपनी पार्टी को बचाना चाह रहे हैं दे आर प्रिवेंटिंग देयर पार्टी और मुझे लगता है Sir, let me speak. और मुझे लगता है जब no one is ready to take accountability, इसीलिए CJP जैसे कोई चीज erupt हुई which hold no sense. But this is what is the eruption or frustration of the youth.
4: Okay. The accountability is demanded.
1: But they don't give up the accountability. That is why CJP erupts.
4: A bunch of friends.
1: Young man here.
4: All the accountability is demanded from them and no accountability from the government.
5: My name is Manas. I was just listening to the number of questions which have been popped up. We chose a government. I voted thrice. Okay, I chose BJP in my state assembly and then we chose BJP in the central assembly as well. The number of questions that we are asking Vijayta right now or the CJP, this is basically a pressure group which arises on its own. If the same set of questions we would have asked the government in the last 20 days, somebody sitting on hunger strike for 20 days, no MOS. MOS goes for a ribbon cutting ceremony anywhere in Delhi. But nobody could show it up. Nobody, even MP of BJP could show up to just have a dialogue or conversation. Hence the opposition did. And somebody came and then you guys having this conversation right now. Yeah.
1: Dr. Anand Ranganathan. Yeah, Dr. Anand.
4: Accountability
1: should be fixed and demanded from everyone. You cannot say that we decide who gets to be accountable and everyone else gets a free run. But answer, but just a second. But answer on the specific question.
6: Because it's very important.
1: One. Dr. Ranganathan, the question of this young boy here, yeah. When Manas says, all the questions are for
7: Manas.
1: So Manas is saying all the questions are for CJP. Yes, they had some slip-ups. Yes, there are some questions they need to answer. But government also needs to do a little bit of talking, right? You cannot be like, we are going to sit here and do what we want. These guys need to be put in the dock, Dr. Ranganathan.
6: So first of all, the lady from Aam Aadmi Party. When she so if you are not from Aam Aadmi Party, why did you presuppose that I am defending my party?
1: Because we have seen you speaking that way, sir.
6: Did I demand Pradhan's resignation?

0: आशीष
1: आई थिंक अशोक गहलोत वाज अ फेलियर
2: एक मिनट तहसीन वन एट अ टाइम प्लीज
1: नो नो आई विल नॉट अलाउ व्हाट अबाउट यू ऑन माय नेम
0: व्हाट अबाउट मी
1: आई थिंक अशोक गहलोत फेल्ड
3: तहसीन यू गॉट अ फ्री रन टू स्पीक फॉर अ गुड 2 मिनट्स नाउ लेट हिम
2: प्रियंका गांधी ने कहा बहुत मुश्किल है पेपर लीक रोकना तो बहुत मुश्किल है अशोक गहलोत जी बहुत कोशिश करके नहीं रोक पाए राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर कहता है अच्छा पेपर लीक हो गया तो मैं क्या करूं उसको तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बनाया हुआ
4: सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन करता है कितने यूथ हैं जो उसके लिए खड़े हुए
1: ऑल स्टैंडिंग फॉर इट जो ऑल डोंट यू वांट व्यवस्था
2: तहसीन
1: डोंट यू वांट दिस सब चाहिए
2: तहसीन ऐसे नहीं करते
1: क्यों कह रहे
2: हैं आप फैक्ट आने दीजिए ये जो एनटीए बनी है क्योंकि मेडिकल के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा घपले घोटाले सीटें बिकना इसके लिए एनटीए बनी एनटीए में ये गड़बड़ आई तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा और मैं फिर कह रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र इसलिए नहीं देना चाहिए आपके बीच में नहीं बोला इशू है एग्जाम कैसे ठीक से होंगे पेपर लीक कैसे नहीं होगा एक बच्चा इतनी तैयारी एक बार पेपर लीक
1: है प्रमोशन है या पनिशमेंट है
2: फिर मैं कह रहा हूँ
1: प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल इज इट पनिशमेंट और प्रिंसिपल प्रमोशन
2: एक कमेंट की वजह से कोई एक मीम पेज बन जाए कोई हो सकता है उनके मुद्दे कुछ ठीक हो सकते हैं लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर देश के यूथ को उसी ब्रैकेट में करना ये इससे अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं होगा और मैं फिर कह रहा हूँ इस देश का यूथ इस देश को जो डेमोक्रेसी है जो वाइब्रेंसी है उसने बरकरार रखी है वरना कोई भी नेता तानाशाह हो जाता इंदिरा गांधी की बात किसी ने हिम्मत नहीं की और ये मूवमेंट सीजेपी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल स्पॉन्सर्ड प्लांट मैनेज्ड
3: ओके दिस यंग लेडी हियर लेट मी गिव यू अ स्मॉल स्टैटिस्टिक टुडे यू आर सेइंग तहसीन दैट अशोक गहलोत यू नो दैट मधु बंगरप्पा शुड गो डू यू नो दैट 14 आउट ऑफ 26 पेपर लीक्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट हैपेंड अंडर द वॉच ऑफ अशोक गहलोत
1: यस इट डिड
3: बट यू नेवर ब्रॉट दिस अप
1: आई डिड
3: नीदर बिफोर टुडे नीदर बिफोर दिस प्लेटफॉर्म नीदर
1: जस्ट वन सेकंड
4: प्रियंका डिड
3: नोबडी
1: वन सेकंड जस्ट वन सेकंड आई सिंस यू आस्क्ड मी आई
3: एंड जस्ट बाय द वे
1: आई मस्ट बी अलाउड टू आंसर
3: बाय द वे लेट मी फिनिश दिस पॉइंट बिकॉज़ दिस विल बी टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट Yes, paper leaks, those 14 have happened on his watch. And yes, some changes have been made. Laws have been brought in various states to try and combat paper leaks. But it is not a foolproof, bulletproof method, despite all of those changes. And which is why we should have this conversation.
1: One second.
2: Neither do I
3: debate.
2: Rahul Gandhi ko.
1: I don't speak either for the Congress or I don't care about it. My limited point is, if the BJP thinks that Congress has done something wrong, nobody stopped the BJP from protesting. They must protest. It is their duty to protest. Don't come here and do whataboutry on these kids and call them up. These are not up kids.
4: Why are the apolitical people not protesting? So why is apolitical?
1: Did the apolitical people go and say, "Apki bar hamari sarkar"? Did they go and say?
4: What do you mean? Hamari apolitical people.
1: Congress for votes.
4: Karnataka ke bachon ke liye rote kyun nahi ho?
1: And I think
4: Punjab ke bachche nahi hai bachche.
1: I think bachche hai.
4: Punjab ke bachche nahi hai. Unke liye kyun nahi rote?
3: One at a time.
4: Bhaiya kyun bane hue Punjab ke bachon ke liye?
3: One at a time. Bachche nahi hai.
2: Aare
4: bachche. Sharam nahi aa rahi.
2: Aare bachon ke liye parliament mein debate kara lo.
3: Let me come in here and say one thing. You know, when you say, हाँ,
4: और से भी कमाई हो सकती है।
1: क्या हो गया अगर वो बारहवीं पास है यार तो?
4: मैं क्या रहूँ?
1: तो क्या हुआ बारहवीं पास है? बेईमान नहीं है।
3: Just a second.
1: ये तो है।
3: This young lady will speak. Sir, please.
1: उसमें कोई गलत
3: नहीं। This young lady will speak, but before that, I want to take 10 seconds to say, when it is said. Just a second. When you say कि सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए विजेता, one second. When you say that you know all of these should be discussed and BJP should do it. But you started by saying that we are here for Team India. So that is why you should speak for all of India, including what happened under Ashok Gehlot, because ये Team India होता है. अब बोलिए, अपना नाम बताइए. बताइए.
5: Myself Arpita Menaria.
3: Arpita,
5: I'm an assistant professor. I'm an assistant professor and a research scholar. अभी हम लोग सभी डिबेट कर रहे हैं छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं उनके अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं क्या हम में से कोई देश की बात कर रहा है ये वही छात्र है जो इस देश की गरिमा को नुकसान

0: जा रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, गाड़ियां फोड़ रहे हैं, हमारे जो पुलिस है, जो कानून को रक्षक जो वहां खड़े हो उनकी रक्षा के लिए भी खड़े हैं वहां पर, ताकि प्रोटेस्ट में कहीं उनकी जान हानि को कोई नुकसान ना पहुंचे, उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राजनीतिक दल से, हर राजनीतिक दल से कोई ना कोई व्यक्ति वहां पहुंचा है। वहां पर उन्होंने कहा है कि हम लोग छात्रों के साथ खड़े, इनके अधिकारों के लिए हम लड़ रहे। जब वो छात्र लाठियां खा रहे थे तब वो उनके अधिकारों के लिए क्यों नहीं खड़े थे? वो जब मंत्री बनते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का नेता जब मंत्री बनता है वो शपथ लेता है कि वो देश की गरिमा को बनाए रखेगा, वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेगा। तो जब आज संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जब सड़कें टूट रही है, तो आप वहां पे जाकर जंतर मंतर पे जाकर आप क्यों उन छात्रों को नहीं समझा रहे हो कि इस देश की जनता को नुकसान, मतलब
1: जब आप नेता हैं तो वो सारे प्रिंसिपल्स का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। दिस इज अ यंग जनरेशन एंड दिस बिहेवियर शुड नॉट बी कंडोन्ड बाय सम।
2: पदमजा या
1: विजेता,
2: सी ever since the beginning, I at least repeated hundreds of times, even Sonam sir, Abhijit, everyone, that you know India cannot be like Nepal or Bangladesh. We have to show the way to the world that change can be brought through peaceful resistance. Now, see, the problem what happens is that whenever someone tries to do something, you put such a big scanner, such a big magnifying lens that nobody will even dare to do anything. Of course, it is some
1: this
2: people.
1: This is a legitimate. magnifying.
2: Not a political party with thousands or.
0: Listen to me. अगर आप leader हैं तो लोग आपको follow करेंगे. जितने लोग आप
2: सर
0: CJP को इतने लोग Instagram पर follow कर रहे हैं, क्या उनकी एक बात अगर वो लोगों से ये गुहार कर रहे हैं कि आप आओ हम नीट के लिए आपके साथ खड़े, पेपर लीक के मामले में आपके साथ खड़े, सब लोग पीछे हो गए। जब उन्होंने कहा कि इस देश की संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, अहिंसा मत फैलाओ, तब उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? फिर आप लीडर किस बात के हैं? आप कैसे पॉलिटिकल पार्टी
2: कैसे आपकी बात सुनेंगे? Like in what world?
3: हर्षवर्धन
1: जी जवाब देंगे अर्पिता को।
3: इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एक्टिविस्ट थे, छात्र पिटे, पुलिस पिटी, मीडिया पिटा, लेकिन कोई भी अनशन पर नहीं बैठा। इतने ये सेंसिटिव एक्टिविस्ट हैं, छात्र पिटे, पुलिस पिटी, मीडिया पिटा, लेकिन इनमें से कोई अनशन पर नहीं बैठा। बर्गर खाना बुरी बात नहीं है,
2: नेहा बेटी,
3: बर्गर खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई नहीं बैठा। और फिर मैं कह रहा हूं जब आप कह रहे हैं कि लाखों लोग आए, हम उनको कम्युनिकेट कैसे करेंगे? पद्मजा ये कह रहे हैं लाखों लोग आए, हम उनको कम्युनिकेट कैसे? कहते हैं ना भैया, चद्दर पांव उतने ही पसारो जितनी चद्दर है। अगर ये नहीं थी, औकात नहीं थी इतनी, तो इस तरह से एनआरकी के लिए क्यों बुलाया?
1: लेकिन हर्षवर्धन जी,
3: हर्षवर्धन
1: जी, this young lady is saying प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी को आप एक ही पैमाने से नहीं नाप सकते।
3: They should not behave like a political party. They are behaving like a political party.
2: They are behaving like a political party.
3: Cockroach जनता पार्टी from the day one. They are behaving like a political party. They are saying जंतर मंतर. We are not going to you.
1: Okay, Dr. Rangan.
2: It's a meme, a satire.
4: There is absolutely nothing wrong with any pressure cooker, I was going to say pressure group, yeah, becoming a political party or carrying political nothing wrong with it.
5: Definitely.
4: Okay, I would walk with Rahul Gandhi, I would even vote for him, I'm a nota vote, I vote for him, if he were to say that any minister under whose watch these things have happened should resign. Well, please let me finish. The problem is the double standards. The problem is that in some states, there are children who are not cared for by the same people. And the paper leaks, the OSM ghapla, the beatings of teachers and students happened much before Pradhan came into the bullseye. प्रॉब्लम इज व्हाई नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट दोज एजुकेशन. अब बोल रहे हो क्योंकि कल से जब मैं बोल रहा हूँ बंगारप्पा का नाम भी नहीं पता था इनको, इसको तो राधा कृष्णन का नाम नहीं पता.
1: वन मोर यंग पर्सन हियर,
4: डोंट इंटरप्ट यार, यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन येट. रुक जाओ, सुन जाओ, राघव चड्ढा बन गया राज्यसभा एमपी, सुनो बात सुनो. द प्रॉब्लम इज नॉट कि कोई लोग नाच गाना करते हैं, बर्गर खाते हैं, प्रॉब्लम

0: Operation Sindoor as well in online campaigns involving anti-India narratives, misinformation and propaganda against Indian security forces. Take a listen to the reactions coming in and what the Delhi police has to say.
1: हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है. अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं. उनको ब्लॉक कराया जा रहा है. ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे. उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना. मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए. किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने इमोशंस का कंट्रोल मत लेने दो. याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है.
0: All right, my colleague Anushka is now joining me on the phone line. Anushka, you know, there were a lot of miscreants, unknown people against which FIRs were also filed. But now, Delhi police telling us that there's been a huge crackdown on misinformation, especially from Pakistan's social media handles.
2: Well, that's right, Rahisha. Delhi police on Thursday have gone on to say that it has identified more than 400 Pakistan-linked former ex-handles and around 100 Instagram accounts that are allegedly attempting to amplify the ongoing student protests in India by spreading misinformation and misleading content. According to Delhi Police, preliminary digital analysis indicates that several of these accounts were also active during Operation Sindoor, where they were allegedly involved in online campaigns pushing anti-India narratives, misinformation and propaganda targeting Indian security forces. Now, police have also said that the identified accounts are being blocked and urged the public not to rely on unverified information circulating on social media. Authorities have also appealed to citizens to verify information through official sources and avoid sharing misleading or unconfirmed content. We've also seen how the protest has been going on. Several of the miscreants who had entered the very protest area, we have seen several of the videos that have been surfaced where it can be seen these kind of protests have been going on, and also how the protesters were involved in stone pelting, and several of the police officials and the protesters also who got injured because of this confrontation and the violent clashes that had in fact broken out.
0: Absolutely,
2: earlier.
0: Anushka, because there's a lot of misinformation also doing the rounds on Instagram and various social media handles, and that's the huge message by the Delhi police saying that they should be wary of anti-India social elements online. Well, we have other news coming in. Violence has now erupted near Delhi's Jantar Mantar late night of July 22nd as protests spiraled into clashes with the police. Demonstrators pelted stones at security personnel, leaving a Delhi ACP with a head injury, and another police inspector was assaulted during the violence as well. The police has now responded with a lathi charge to disperse the crowd. Several vehicles were also vandalized in the kiosk. Heavy police deployment remains in place around the protest site to prevent any fresh flare-up, and authorities are now monitoring the situation closely. Meanwhile, Sandeep Lamba, who's a senior Delhi police officer who has now come under fire after slapping a woman protester during the July 20th Sansad Chalo march, has now been removed from all security-related duties at Jantar Mantar.
3: हमारा स्टाफ था, उनको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें से तीन चार लोग भाग गए थे, बट एक जो स्टाफ था हमारा फंस गया था और उसको वो सभी लोग मिलके मार रहे थे. तभी मैं और विवेक सर अंदर भीड़ में घुसे उन्हें बचाने के लिए, तो तभी उन्होंने विवेक सर और मुझे भी मारना स्टार्ट कर दिया. पर हम तितर बितर करके थोड़ी ही दूर भाग पाए, पर हमें वापस से पकड़ लिया.
4: जैसे ही आगे आगे चल रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि आगे वाले स्टाफ पे पानी की बॉटल्स फेंकी जा रही हैं और हूटिंग्स और एंटी सोशल स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ. तो जैसे ही थोड़ी सी वहाँ पे हमारी पुलिस की स्टाफ आगे पीछे हुए, कुछ ने अपनी जान बचा के आगे हो गए और उनमें से एक को भीड़ ने ओवर पावर कर लिया. उसके सिर से खून निकल रहा था, पूरा मुँह खून से सन गया था. तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की. उसको एक दो मीटर आगे भी लाए हम, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उग्र थी. उन्होंने मेरे को भी ओवर पावर कर लिया. जब तक मैं खड़ा था तब तक सिचुएशन

0: Veteran actor Shabana Azmi also stood with students, saying the demonstration was peaceful and rooted in constitutional values. The movement itself has rapidly expanded. Students have been demanding accountability over the alleged NEET UG 2026 paper leak and examination irregularities. What began as a protest over the examination has now evolved into a larger debate on accountability, education, and the right to protest. With Bollywood's biggest names now entering the conversation, the movement has found an even louder voice. Bureau Report, NDTV.
1: Well, let's now tell you how the political battle over the NEET paper leak has now moved to the heart of the national capital, New Delhi, because the LOP, Rahul Gandhi, along with Congress and INDI bloc MPs, held a symbolic protest at Gandhi Smriti in support with the students. Well, carrying the national flag and the constitution and holding up mobile phone flashlights in a candlelight style vigil, the opposition said that it was paying tribute to students who lost their lives in the aftermath of the paper leak controversy and further reaffirmed its support for their demand for justice. The government, meanwhile, has accused the opposition of politicizing the issue and perhaps burying the core issue of the students, what they're demanding right now, even as protests, demonstrations continue at Jantar Mantar.
2: What's happening in solidarity with the students? We wanted to take the opposition MPs to India Gate, but then they refused. So then we wanted to take them to 30 January, Gandhiji's assassination spot. And now what they've done is they put this bus in front of us there, right? And they put the barricade and they put a bus on the side here, so we can't see it, we can't go. And they're doing a drama. Obviously, they're scared. We felt, all the MPs felt, that if the students are on the street, we should also be on the street.
3: आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है. महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा. आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं. तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं.
1: Joining me live is now Kanika Katyar. She's joining me live from Delhi. Kanika, aap wahan the jab LOP Rahul Gandhi aur Priyanka Gandhi unke ghar se unne ye march nikala Gandhi Smriti tak. Bataiye aapne kya kya dekha, kyunki ek side se humne dekha hai ki center ne kaha hai ki paper leak ke mudde pe hum sansad mein baat karenge, but dusri side hum dekh rahe hain ki opposition ko bas the education minister ka istifa chahiye.
4: बिल्कुल, साफ तौर पर राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, करीबन 120 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया. राहुल गांधी का जो आवास है सुनहरी बाग, वहां से लेकर करीबन जो है 2 किलोमीटर तक जो है गांधी स्मृति तक जो है ऑपोजिशन ने आज प्रोटेस्ट किया और बस में तमाम जो सांसद हैं वो पहुंचे थे. एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक ने आज करने की कोशिश की, जिसके पीछे जो है एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है. लगातार पेपर लीक को लेकर जो है ऑपोजिशन एक ही डिमांड कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो की एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन पहले होना चाहिए, उसके बाद जो है फर्दर डिस्कशन और बाकी चीजें होंगी. हालांकि गवर्नमेंट अग्री कर चुकी है इस बात पर कि वो डिस्कशन के लिए तैयार है. लगातार जो है सरकार ये बोल रही है कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही हाउस में चर्चा के लिए तैयार है. लेकिन ऑपोजिशन की सिंपल डिमांड है कि फिलहाल अभी उनको एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए और इसीलिए आज कांग्रेस और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के सांसद थे उन्होंने राहुल गांधी के आवास से लेकर जो है गांधी स्मृति तक प्रोटेस्ट भी किया. राहुल गांधी ने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशनल बुक जो है वो थमी हुई थी, इसके अलावा जो है नेशनल फ्लैग को कैरी किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है स्टूडेंट्स को, उन तमाम लोगों को, कि वो पेपर लीक में उन स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। और लगातार जो है इस मामले को लेकर जो है सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होगा, कांग्रेस किसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो करती रहेगी। आज जो प्रोटेस्ट हुआ इसमें लगातार जो है एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई, एक सिम्बॉलिक मैसेज देने की कोशिश की गई। और आने वाले समय में कहा जा रहा है, जो सोर्स बता रहे हैं, कि ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस
1: का हम समझ सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है। विल ऑफ कोर्स बी ट्रैकिंग दिस स्टोरी वेरी क्लोजली। थैंक्स वेरी मच Kanika फॉर शेयरिंग दिस क्रूशियल इनसाइट्स हियर विद अस। Let's now tell you more about how the center has once again appealed to the CJP, the Congress Janata Party, and student protesters to join the talks. Union Minister Dr. Jitendra Singh has said that the government has sent 4 formal proposals for discussions since yesterday afternoon and described the invitation as open and unconditional. He said that the government is ready to discuss all issues at any time and at any venue convenient to the protesters. According to Dr. Jitendra Singh, both the Union Health Minister J.P. Nadda and he himself, they both are prepared to participate in the discussions, adding that dialogue is the only way forward, and perhaps urging student representatives to come to the negotiating table. Meanwhile, the CJP has now refused to hold talks at a government office or at Nadda's residence. They're now seeking talks either at Jantar Mantar or a neutral venue.
5: सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इनविटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं, प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार है। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज।
6: अभी नहीं, हाँ हम तैयार हैं।
7: सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है, कहीं भी कोई भी लोकेशन पे?
6: हमारे रेसिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मुख्यालय,
8: जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने के ना। ठीक,
9: आप कोई ऐसी जगह सजेस्ट कर दो जहां ना आपका घर हो ना जंतर मंतर हो, कोई बीच की जगह सजेस्ट कर दो। तो अभी भी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि हम नड्डा जी के ऑफिस पे या घर पे मीटिंग कर सकते हैं।
1: Well, let's tell you more about all that is happening over the paper leak issue and how the Prime Minister Narendra Modi came out today and he perhaps assured the students and announced a major crackdown, promising fast-track courts and stringent punishment for those behind exam paper leaks, calling the future of students the government's top priority. The Prime Minister said that those trying to destroy the aspirations of India's youth will not be spared and directed authorities to take all required steps to protect students' interests. Well, the announcement has now triggered a sharp political face-off, with Rahul Gandhi, the LOP, accusing Prime Minister Modi of harming the future of India's youth, demanding the sacking of Education Minister Dharmendra Pradhan, also an apology to students and action against those accused of assaulting the demonstrators on Monday.
10: Today, PM has announced that fast-track process will be set rolled, and those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. Now, if this response is not come from the government of making sure the arrests are done in time, re-exam happen on time, and on time post the incident, an announcement of the results, and young people are now finding the institutions where they have to go for their higher education. All this is happening.
11: For this, what is this? False claims, false claims. Nobody believe in his words nowadays. Nobody believe in his words. This credibility of his words has been already disappeared. Nobody is following me. Good, no action from the government. First of all, he has to tell, remove the Dharmendra Pradhan from education ministry. Then he has to talk to the students.
12: Our concern is हमारे बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में। तो इसीलिए हमने एक तो पहले तो ये किया, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, जो भी इसमें जिम्मेदार थे ऑफिसर्स जो भी संबंधित लोग ऑल द 14 हैव बीन अरेस्टेड, वो सब अभी दे आर बिहाइंड द बार। एंड इससे पहले जो कानून था उसके कानून में प्रोविजन बहुत वीक था, प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट इट अमेंडेड इन 2024 जून। कांग्रेस पार्टी जब पावर में है करप्शन, जब अपोजिशन में है तब डिसरप्शन, दिस इज द कांग्रेस का नीति है।
13: सी मेयरली अनाउंसिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इज रियली नॉट सॉल्विंग अ सिस्टमिक प्रॉब्लम। देर आर सिस्टमिक रीजंस व्हाई दीज लीक्स आर हैपनिंग रेगुलरली, बिकॉज the commercial angle of these coaching centers, there is an incentive for them to show inflated results, and so they are willing to indulge in all kinds of unscrupulous practices by encouraging paper leaks and initiating paper leaks. And there are also fault lines within the system of the NTA and the agencies which run the examination. The paper leaks happening. This fast track court is only post fact, after an illegal act happens and they apprehend the perpetrators, they can take them to court.
14: Paper leak ke doshi the jinko pehle giraftar kiya gaya tha, aaj unko dand dene ke liye, is ghor apradh ke liye dand dene ke liye fast track courts ka gathan karne ki nirnay pradhanmantri modi ji ne liya hai. Iska hum swagat bhi karte hain, yuvaon ke hit mein liya hai aur जल्द से जल्द न्याय मिल पाए, दंड मिल पाए, उस दिशा में कदम है। मेरा केवल विपक्ष इतना कहना है, भागो मत, चर्चा में भाग लो, युवाओं के कंधों पर अपनी राजनीति ना करो, उनके आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेको, अगर हिम्मत है तो चर्चा में भाग लो।
15: ये सरकार समझ ही नहीं दे, सरकार कंप्लीटली कट ऑफ उन गरीबों से जो अपने बेटा बेटी के लिए नीट की तैयारी के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए खर्चा करती है, उनको आप एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं। स्पेशल कोर्ट क्या होता है, ये कौन सा जादू की छड़ी है? फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा उसमें? यूजीसी एनईटी का एग्जाम लीक हुआ, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी, हुआ ही नहीं। ये सब जो है ना आई वॉश है, आप जो जड़ है, जो तकलीफ है, उस पर आप तवज्जो नहीं ले रहे हैं।
1: Dharmendra Pradhan was once a student leader protesting on the streets of Bhubaneswar over an alleged question paper leak. And today, as the Union Education Minister of India, he faces students on the streets protesting allegations of another paper leak. From protester to the man at the center of the storm, this is the irony at the heart of Dharmendra Pradhan's political journey.
0: Nearly 3 decades ago, Dharmendra Pradhan was a student leader on the streets of Bhubaneswar, protesting an alleged question paper leak and demanding answers from the government of the day. Pradhan's political journey began on the streets of Bhubaneswar. In 1997, when Odisha was ruled by a Congress government led by then Chief Minister Janki Balla Patnaik, around 1,500 students gathered outside the state secretariat to protest an alleged examination paper leak. Among them was a young Pradhan. At the time, he was an ABVP leader and was already emerging as a prominent figure in student politics. By 1997, he was on the verge of formally joining the BJP. Prashant Raut was a junior of Dharmendra Pradhan at Utkal University.
16: I was a junior to him. 3 years junior to him. I was in that particular agitation, and Dharmendra Pradhanji led the agitation from front, and he led the agitation fairly nearly for a day, and that time police was very brutal, and for first time Odisha saw the rapid action force.
0: But student politics in Odisha in the 1990s was often anything but peaceful. Campus elections were marked by intense political rivalries. And according to Raut, Pradhan himself was once attacked during a campus election after it became apparent that he was likely to win.
16: He was in front and he was beaten, he was mercilessly beaten, and he was injured grievously. He was admitted in the hospital. He was being taken into the custody by the police. And he was, at that time, he was a hero at the Odisha student politics.
0: those years, in student politics, laid the foundation for Dharmendra Pradhan's political career. From the

0: सिर्फ क्या देख रहे हैं कि मोदी इस्तीफा दो धन में क्यों दे इस्तीफा, उसका रीजन बताएं आप लोग बैठ के यहाँ। रीजन ये है कि वहां पर सीटें नहीं है। रीजन ये है कि जो बच्चे मरे हैं वो इसलिए मरे हैं क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं दिन रात और क्लास के टॉपर होते हैं, पूरी लाइफ टॉप रहते हैं अपने क्लास में। लेकिन आज जो बच्चे एसएससी में चले गए उनके पास सैकड़ों ऑप्शन है लेकिन हमारे पास सिर्फ एक नीट। क्या कुछ ऐसे एग्जाम नहीं होने चाहिए जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ का सिलेबस हो? सारे एग्जाम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उनमें सिर्फ नीट छोड़ दे तो किसी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं आता है। क्या कुछ हमारे पास और ऑप्शन नहीं होने चाहिए?
1: आपको लगता है कि गवर्नमेंट तैयार है रिजर्वेशंस और जो मुद्दे आपने उठाया अभी उसको लेकर चर्चा करें, डिसीजन ले रिजर्वेशन को लेकर?
0: सब लोग कोई चर्चा कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो ये चिल्लाने से क्या ये चर्चा हो रही है? क्या इस पर चर्चा करोगी भाई? क्यों इतना सारा है? हर स्टेट को, हर कॉलेज को आप रिजर्व कर रखी है क्यों? जिसके पास मर्सिडीज है वो गरीब है और मेरे पापा किसान है मैं अमीर हूँ। मेरे पापा खेती में काम करते हैं मैं अमीर हूँ। जिसके पास मर्सिडीज अगर उसके आगे 80 लिख गया तो वो गरीब है। इस बात पर कौन बात कर रहा है यहाँ? मैं आधे घंटे से आया हूँ सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ।
2: बदतमीजी
0: क्यों हो रही है? गलत काम कर रहे हैं, यही तो गलत काम कर रहे हैं।
2: सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम?
0: इन सभी पॉइंट्स को उठाया जाए, गलत मुद्दों। हमें जो बच्चे बच गए हैं, जिन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए कम से कम उन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। उन बच्चों के न्याय की मांग कौन कर रहा है?
1: कल के वीडियो के बाद हर्ष आपको बहुत सपोर्ट मिला है, आपने जो बोला है वो सेगमेंट पूरा का पूरा अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स वायरल हो चुका है एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म से। उसके बाद क्या क्या कॉन्वर्सेशन शुरू हुए हैं? क्या लोग आपके पास आ रहे हैं बोल रहे हैं कि इसको लेकर एक मोर्चा खड़ा कर दो, इसको लेकर प्रोटेस्ट करो?
0: हाँ, लोग कह रहे हैं कि भाई आप इसको लेकर प्रोटेस्ट करो, रियल मुद्दों पर बात करें। हम हमारे पास सारे रियल मुद्दे होने चाहिए।
1: लेकिन ये भी एक मुद्दा है, ये आप नहीं मानते हैं जो यहाँ पे हो रहा है?
0: हाँ बिल्कुल, रिजाइन दें, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर एक बाप के दो बच्चे मर गए तो वो क्या चाहेगा? मेरे दो बच्चे सुरक्षित बचे रहे? वो ये नहीं चाहेगा कि इन दो बच्चों के पीछे पूरी जान फूंक देगा। वो चाहेगा मेरे दो बच्चे बच गए, पहले इनको देखूंगा मैं। उस पर बात करो, आप पॉइंट्स उठाओ। भाई अभी कौन आया था, कोई मुख्यमंत्री आई थी? भाई मुझे बोलने का मौका दो, प्रॉब्लम्स मेरी हैं। मुख्यमंत्री से मुझे क्या मतलब है, मोदी से मुझे क्या मतलब है, क्या मतलब है मुझे?
1: लोग,
0: मुझे
1: जो लोग
0: दिलाओ
1: हर्ष, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं इस मुद्दे को लेकर, उनका कहना है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो भी है, उनमें हिम्मत नहीं है इस मुद्दे को उठाकर थोड़ा डिसीजन मेकिंग करें।
0: प्रॉब्लम ये है ना गवर्नमेंट,
1: वो कहते हैं ये, क्या आप अग्री करते हैं उसको लेकर?
0: हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है प्रॉब्लम्स क्या है रियल।
1: उनको तो पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट को कैसे पता नहीं होगा?
0: तो आप सीटी डबल करो कैसे कर सकते हैं? सुनो, क्या एक बच्चा जो आज 4 साल बाद कॉलेज से निकलेगा कि नाइट में शिफ्ट में ड्यूटी करेगा, नाइट में भी ड्यूटी करेगा, तो क्या वो नाइट शिफ्ट के ड्यूटी में पढ़ नहीं सकता है? सारे कॉलेज अगर 2 शिफ्ट में कर दी जाएगा डायरेक्ट डबल सीट हो गई गवर्नमेंट की, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। सिर्फ हॉस्टल बनवाने उसी क्लास में, उसी बेंच में, उसी लाइब्रेरी में, उसी बॉडी पे वही बच्चा सुबह प्रैक्टिस कर रहा है, वही बच्चा शाम को कर रहा है, क्या डबल सीटें हो जाएंगी तुरंत? जो बच्चा आज के 4 साल बाद 24 घंटे की ड्यूटी देगा, 24 घंटे हॉस्पिटल में काम कर लेगा, वो क्या 4 साल पहले अपनी MBBS डिग्री कंप्लीट करने के लिए दिन और रात में नहीं पढ़ाई कर पाएगा?
1: तो आप क्या बोलेंगे जो डिसीजन मेकर्स हैं अभी, उनका ध्यान अभी जंतर मंतर पर है, जहां पर
0: इसीलिए तो जंतर मंतर
1: धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो को लेकर वो है डोमिनेंट नारा यहाँ पर नीट पेपर लीक को लेकर। आप एक नीट स्टूडेंट है, तो ये जो आप जो रेज कर रहे हैं वो मुद्दा, वो सामने कैसे आएगा? नहीं, आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। गवर्नमेंट को तो बिल्कुल पता है कि ये क्या है, ऑपोजिशन को भी पता है कि ये मुद्दा क्या है, ये तो सालों से पता है कि ये एग्जैक्टली रिजर्वेशन का मुद्दा क्या है। वो नहीं उठाएंगे तो आप क्या करेंगे फिर?
0: तो मुझे भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बट मैं तभी साथ दूंगा जब रियल मुद्दों पर बात होगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ही कि वो उसका बहुत छोटा पॉइंट है, हम इसको सबसे बड़ा पॉइंट बना रहे हैं और रियल मुद्दों को छोटा बना रहे हैं। रियल मुद्दा ये है कि बच्चों को सीटें मिले, गवर्नमेंट की डबल सीटें हो जाए, उसका सोल्यूशन क्या है?
1: तो आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? अगर आपका जो वीडियो है बहुत ज्यादा

0: वायरल हो चुका है क्योंकि समवेयर इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड, जो इंग्लिश में बोलते हैं इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड, लोग उससे रेजोनेट कर रहे हैं। तो अगर सरकार आपकी आवाज सुन रही है, अभी आप बोल रहे हैं कि अगर कोई सुनता नहीं है तो मैं मोर्चा खड़ा कर दूंगा, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन आपने पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, है ना, आपने प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, तो अब आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि एक तो अगर आपको रिजर्वेशन देना है, आप स्टेट वाइज दे रहे हैं, आप कॉलेज वाइज दे रहे हैं, कास्ट वाइज दे रहे हैं, गरीबों को रिजर्वेशन दो भाई। एक बच्चा जो जिसका पापा किसान है, दिन रात खेत में मेहनत कर रहा है, अगर वो जनरल कैटेगरी से, क्या उसका पापा क्या, उसको भी तो कॉलेज मिलना चाहिए। आप गवर्नमेंट की डबल सीटें करो। अगर आप बहुत सारे स्टेट में ऐसा है, जैसे एमपी में प्राइवेट सीटों पे, प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस पे करती है 50%। क्या ये ऑल इंडिया में नहीं हो सकता? ये काम ऑल इंडिया में हो सकता है, 50% प्राइवेट सीटों को गवर्नमेंट कर दिया जाए, ताकि उन बच्चों को भी, जो गरीब बच्चे भी हैं, जो वो भी उस कॉलेज में जा सके।
0: अभी अभी रिसेंटली वो UGC गाइडलाइन सामने आए थे, उसको लेकर काफी गुस्सा था पब्लिक में, उसको लेकर कुछ नहीं हुआ, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसको लेकर? आपको आपको क्या मैसेज आता है कि गवर्नमेंट का माइंडसेट, गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग किस दिशा में जा रही है?
1: गवर्नमेंट जो है रियल मुद्दों पर बात नहीं करती, वो बहकाती है। जैसे भाई साहब हमारे ये है कि हमारे ऊपर चढ़ जा रहा है, नीट का पेपर हमने दिया, इन्होंने दिया नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम पता नीट में, क्या प्रॉब्लम है जरा पूछिए आप।
2: नहीं, आप जैसे कह रहे थे कि बच्चों, गरीब किसान के बच्चों को या गरीब मजदूर के बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो चीज के लिए
1: किसी को नहीं, मतलब सबके साथ बराबर होना चाहिए, जो गरीब है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
2: और EWS इसके लिए सरकार ने बनाया तो है,
1: EWS हमें नहीं मिलता, हमारे लिए नहीं मिलता।
2: आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते नहीं हो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग
3: मुद्दा ही नहीं है ना यहां पे, मुद्दा इस्तीफा है ना
2: और पेपर है।
3: मैं बताता हूं, कितने साल से पेपर लीक हो रहा है।
2: रेस्पॉन्सिबल
3: धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि पहले की सरकार होती, पहले की सरकार में होती थी जब हमने आपको लाया ना।
1: हां बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: वही चीज कहोगे तो उसमें कोई अंतर नहीं रहा ना।
1: अब यही बात आप समझ नहीं रहे हो, एक सेकंड
3: मैं आपको बता रही हूं। आप कह रहे हो रिजर्वेशन के बारे में, एक टाइम तक ना, जो मैं बताता हूँ, एक टाइम को जब लोगों को ना कैसे कैसे हालत में रखते थे, उनको मिलना चाहिए भाई, प्रॉपर मिलना चाहिए। आप कभी, मैं बता,
2: अगर नीट का पेपर लीक हुआ है, अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो उस चीज के
3: उनके साथ कैसा भेदभाव होता है ना। कभी आप गांव में जाओ, आप गांव के नहीं हो, मैं गांव का हूँ, ठीक है, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है वो चीजें कैसे उनके साथ भेदभाव होता है, कैसे उनको नीचे बैठाया जाता है कि चाय आप वहाँ पियो या कप में पियो, ऐसे ऐसी चीजें होती है। हम बताओ, ऐसे क्या सरकार में वो है की ईगो पे आ रखा है की हम इस्तीफा नहीं दे सकते?
1: इस्तीफा दे, ये बताओ आप, ये मुद्दा छोटा मुद्दा है, इस्तीफा तो दे, वो छोटा मुद्दा है। आप ये बताओ, आपके गांव में बहुत सारे गरीब है, ठीक है, कितने 80 MBBS है आप बताओ?
3: बहुत सारे हैं भाई
1: आपके गांव में,
3: बहुत सारे हैं
1: आपके गांव में, 80
3: MBBS
1: है।
3: आप कभी,
1: मेरे गांव में एक भी नहीं है।
3: क्या चीज MBBS की बात,
1: एक भी 80 MBBS नहीं है
3: भाई, है हमारे गांव में बहुत है, हमने देखा भाई
0: भेदभाव।
3: और ऐसा नहीं है सर, एक मिनट में बोल, ऐसा नहीं है भाई, देखो अकाउंटेबिलिटी इसलिए मांगा जा रहा है ना, अकाउंटेबिलिटी सुनो, अकाउंटेबिलिटी इसलिए मांगा जा रहा है,
2: पता चलेगा कि सरकार ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है।
1: मैं कह रहा हूँ इस्तीफा दे,
0: ओके
3: भाई, मैं आपको बता, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाहिए?
0: लास्ट वर्ड हर्ष, हर्ष फाइनल वर्ड जो आप गवर्नमेंट को बोल, भाई एक सेकंड, लास्ट वर्ड आप गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पर?
1: मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो जो भी प्राइवेट सीटें हैं वो 50% गवर्नमेंट फीस पर पे करी जाए, और ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, स्टेट वाइज काउंसलिंग ना हो, ताकि हर स्टेट का अलग अलग रैंक ना उठे। तो 50% सीटें गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट करी जाए, और बाकी जो स्टेट वाइज काउंसलिंग होती है उसको बंद करके ऑल इंडिया काउंसलिंग करी जाए, ताकि हर बच्चे को, डिजर्विंग बच्चे को कॉलेज मिल सके।
0: ऑन NDTV वी डू नॉट शाय अवे from uncomfortable topics, uncomfortable conversations, because these are conversations that are very much flowing into the larger youth anger that you're seeing here on Jantar Mantar. Young Harsh Dubey, who has become a bit of a viral sensation since his appearance on my show last night, has struck an incredible chord with thousands, I would say millions of people all across the country. does the fact that he isn't here demand